बने रहिए एंड लेट्स स्टार्ट द सेलिब्रेशन। अगर आप स्पेन को फॉलो कर रहे थे, स्पेन को सेलिब्रेट कर रहे थे, स्पेन को सपोर्ट कर रहे थे, तो दूसरी बार चैंपियन बन चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकंड टाइम एवर दिस फीफा वर्ल्ड कप। आज अर्जेंटीना को हरा के उन्होंने फाइनल जीत लिया है। बचाओ क्या? सो यस, आप भी कहीं मत जाइए, अभी और भी इस बारे में बात होगी। सबसे पहले शुरुआत करते एक परमेश्वरा रफ्तार की आवाज में, एंजॉय करिए गाना, हम लिखेंगे और भी चटपटी खबरें।

मस्त गाना यार, बहुत ही हम गाते थे बैंड के साथ व्हेन आई वाज इन इंडिया। लग रहा है मुझे मेरे बैंड के साथ द वेराम्स के साथ यहाँ पे भी गाना चाहिए, एक बार ट्राई तो करना चाहिए। बट एक मैसेज मिला था मुझे लास्ट वीक रिगार्डिंग एक गाना है ना माशुका, जो कॉकटेल 2 का गाना है, तो किसी ने हाईली रिकमेंड किया है कि माशुका का जो गाना है वो उस मतलब ही कैन फील दैट यू नो इट माइट सूट माय वॉइस ऑन दैट। सो थैंक यू यार, थैंक यू आपके मैसेज के लिए और बताने के लिए और रिकमेंड के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली आई विल ट्राई यार, होपफुली, बट ऑब्वियसली उतना जस्टिस कर पाऊंगा या नहीं वो तो प्रैक्टिस के ऊपर ही होगा। सो यस, आई एम गोना ट्राई एंड आई विल लेट यू नो इफ आई मेड इट हैपन और नॉट। बट यस, होम सिक रेमेडीज के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप कुछ भी मैसेज मुझे भेज सकते हैं रिगार्डिंग एनीथिंग रिलेटेड टू होम सिकनेस, यानी कि कुछ ऐसी चीज मिस कर रहे हो आप तो मुझे बताइए। वेल, एक मैसेज आया है, एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। अरे बहुत ही बड़ा, ये तो पूरा मैसेज नहीं, ये तो ऐसे लिखा गया है। पढ़ता हूँ, कहाँ से पढ़ूँ? ओके, ये रहा। क्यूरा केतन भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ह्यूज शाउट आउट टू यू। Oh, nice. Your lunchbox show is literally the best and the most energetic part of the day as corporate workers here. And bro, the way you casually sing in between the show with your beautiful voice, I have become a massive fan. Oh, thank you bro, thank you. आपका नाम क्या है? आपने बताया नहीं, होपफुली नीचे लिखा हो। एक तो बहुत ही बड़ा मैसेज है यार। You hit those notes perfectly and it directly touches the heart. Anyways, किरण भाई, praise aside, I need to share a very serious issue with you today. Every single day, I leave my office at 5 p.m. and looking at the environment in Auckland completely blows my mind. The moment it hits 5, it literally feels like someone just pulled off the shutter down in the entire city. I'm from India and my flatmate is from Fiji and both of us just stare at each other's face after work because all shops and markets are already closed. Back in India, 5 p.m. is exactly when the real evening vibe begins, with the people rushing out of office to crowd the chat samosa stalls. There is noise and life everywhere. And my flatmate tells me that in Fiji, after 5 p.m., all the neighbors and friends sit together in the backyard for the long chats. Or they have a massive grog and kava session going on. Oh, nice. That's nice. But here in this freezing Auckland winter, it gets pitch black by 5 p.m. The roads are completely deserted and the wind is just freezing. आप पापा टोटो से हो, मेरे को एकदम नजर गई मेरी और आप मतलब obviously यार इतना तो डेड नहीं है वहाँ पे यार। But anyways, ये आपकी बात है तो obviously कहीं ना कहीं तो disappointment तो होगी। But it feels like city gave us peace but stole our lively earning. Ketan भाई, please give us some remedy for this homesickness. Right. Thank you यार। क्या नाम है इनका? प्रनेश इनका नाम है। और इन्होंने कहा है कि ये सारी उन्होंने दुख भरी जो बातें हैं वो बताई है। यहाँ पे सैड सॉन्ग तो नहीं चलाएंगे, बट इनका कंसर्न मेक सेंस यार। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पे इतना बुरा तो नहीं है हालत, लाइक कंपेयर टू मैं यू नो कंपेयर टू जो आपके शब्दों से यहाँ पे बयां होता है। इट लुक्स लाइक यू आर वेरी वेरी इनटू डीप, अनलेस आप कोई ऐसे सबब में रह रहे जो सचमुच कुछ नहीं है, लाइक यू नो देयर इज नथिंग। वहाँ पे तो काफ़ी मार्केट खुला रहता है। बट एनीवेज, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स मेरी सिंगिंग और शोज़ को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने तो यू नो ऑनेस्टली बताऊँ तो डेफिनेटली मेरा दिन तो बनाया है। और आपकी बात एकदम 100% सच है कि ऑकलैंड में रहने वाले हर इंडियन और फीजी भाई बहन का रोज़ का जो शाम का जो ये प्लान होता है वो बाहर जाने का बहुत ही कम रहता है, बिकॉज बाय द टाइम दे एंड अप यू नो वर्किंग वो मॉल्स नहीं जा सकते हैं, वो कहीं और नहीं जा सकते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी शॉप्स जो हैं वो बंद ही रहती है। पर हम देसी लोग हैं यार, हम चुपचाप इस खामोशी से हार नहीं सकते। आज के जो होम सिक रेमेडीज है ना वो थोड़ी अलग है। ऑकलैंड 5 बजे बंद हो जाता है तो आप दोनों, यानी कि आप और आपका जो फीजी दोस्त है, आई वुड लव टू हियर हिज नेम एज वेल, आप मुझे भेज सकते हैं। फ्लैट के दरवाज़ा खुद खोल दीजिए और बाकी दोस्तों को भी बुला लीजिए। अकेले बैठकर ऑफकोर्स फ़ोन स्क्रॉल मत करिए, किचन में जाओ, कड़क चाय चढ़ाओ और रोवा ऐप पर हम रेडियो चालू रखो ताकि मेरी आवाज़ और गाने आपके कमरे के सन्नाटों को दूर कर सके।
और वही इंडियन और फीजी इंडियन के पुराने किस्से भी जो है आपस में शेयर करो. ऑफ कोर्स वुड लव टू हियर, अगर कोई इंटरेस्टिंग ऐसा टॉपिक मिलता है तो प्लीज डू शेयर विद अस. बट जब बाहर का शहर सो जाता है ना, तो घर के अंदर अपना एक छोटा सा मिनी कंट्री बेस बसा लो. चलो प्रणेश भाई, आप और आपके फ्लैटमेट को बहुत सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, और आई होप कि कल या जब नेक्स्ट मैसेज आप भेजोगे तो यू माइट यू फाइंड समथिंग वेरी गुड वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. बट थैंक यू यार, थैंक यू फॉर मैसेजिंग मी. बहुत ही लंबा मैसेज था बट ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ही एंटरटेनिंग और बहुत ही अच्छा लगा सुन के. सो थैंक यू सो मच. ये थोड़ी देर में हम आपके लिए गाना चलाएंगे एक बहुत ही मस्त चिनर चिनर. Let's go. Lunchbox with Ketan. Mujhe pasand hai ladka.

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: हम सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा ट्विटर, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा ट्विटर।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा ट्विटर। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
5: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
6: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland.
7: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.
8: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sin-binning. And you need to know about it.
10: Join our tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join our tribe!
11: Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits.
12: Lunchbox with Ketan.
13: Heera ladka hai. Telescope leke dhoondega na to bhi isse better ladka nahi milega tujhe.
12: Hum. Office shout out.
14: ऑफिस शाउटआउट के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप मुझे जल्दी से मैसेज भेज दीजिए कि एग्जैक्टली अभी आप क्या खा रहे हैं, क्या खाने वाले हैं, कहां से ऑर्डर किया है अगर आपने बाहर से मंगाया है तो, और अगर घर से आया है खाना वाइल यू बीन वर्किंग तो क्या बना है आज। तो यस, 5599 इज द नंबर जहां पे आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं। पर अभी कुछ मैसेजेस आए हैं वो पढ़ लेते हैं। एक ने लिखा है, लव योर सिंगिंग, लिसनिंग फ्रॉम फ्लैटबश, थैंक यू सो मच। अभी शो सुनती है, शो सुनिए हमारा अंटिल 3, बहुत ही खूबसूरत शो हम प्रिपेयर करते हैं यहाँ पे, एंड यू नो काफ़ी जो इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक हम पहुँचा सकें। दूसरा मैसेज आया है, वर्किंग फ्रॉम ऑफिस टुडे, बॉट बटर चिकन एंड राइस फॉर लंच, माई फेवरेट कुजीन इज इंडियन, निखिल न्यू मार्केट, इन्होंने भेजा है मुझे मैसेज। वर्क फ्रॉम होम टुडे, माय हस्बैंड मेड फ्राइड राइस फॉर लंच, माय माय फेवरेट कुजिन इज चाइनीज, नाइस, थैंक यू। आनिया ने भेजा है, लंच ब्रेक राइट नाउ, मॉम पैक्ड चिकन रैप, नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद मैंने चिकन रैप ऐसे खाया नहीं कभी, बट आई एम प्रीटी श्योर बहुत ही टेस्टी होगा, बहुत ही यमी होगा। राकेश कहते हैं पापोकुरा से, ऑन साइट टुडे होममेड फिश करी एंड रोटी पैक्ड बाय माय मॉम, दैट्स सो कूल राकेश भाई, मेनी कंग्रेचुलेशन फॉर दिस यमी यमी फूड टू योरसेल्फ। कभी मौका मिले तो हमें भी बुला दिया जो करे बट थैंक यू सो मच, आप बस बने रहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि क्या नाम था इनका, प्रनेश, Let me quickly confirm. Pranesh, जी हाँ, Pranesh भाई, if you are still listening, this song is for you. यहाँ पे मैं चलाता हूँ, जो कि आईपी सिंह, जरिता गांधी और असनीर कौर की तरफ से है. एक और मैसेज आया है, लंच साग एंड रोटी. अंतरप्रीत ने ये मैसेज लिखा है, साग एंड रोटी, कौन सी साग है ब्रो, डू लेट मी नो यार. उसके बाद केम छो केतन भाई, लंच इज फुल गुजराती मेन्यू, दाल राइस रोटी एंड सब्जी, माय यमी फूड. क्या बात है, थैंक यू यार. एक और मैसेज आया है, अच्छा तो वही है, सॉरी. बट यस, लेट्स प्ले दिस सॉन्ग चुनरी चुनरी, लेट्स गो.
11: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू लंच बॉक्स। वेल, आज वर्ल्ड कप तो जीत चुकी है स्पेन, सो मेनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल द फैंस ऑफ स्पेन, या फिर जो सपोर्ट कर रहे थे या फिर जो लोग देख रहे थे, मेनी कंग्रेचुलेशन। आई नो आज की तारीख के दिन आपकी जस नींद है वो तो शायद पूरी नहीं हुई होगी, बट एक हिस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड भी है आज के दिन। डू यू नो व्हाट इज दैट? वेल, 20 जुलाई को यानी कि आज के दिन 2023 में न्यूजीलैंड की फुटबॉल फर्न्स ने फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में नॉर्वे को भी हराया था, जो कि एक हिस्ट्री थी। यानी कि नॉर्वे को 1-0 से हराकर एक हिस्ट्री क्रिएट की थी, और ये न्यूजीलैंड के किसी भी सीनियर मेंस या वुमेन्स टीम की वर्ल्ड कप फाइनल में पहली जीत थी। हेना विल्किंसन ने विनिंग गोल स्कोर किया और ऑकलैंड के ईडन पार्क में रिकॉर्ड क्राउड ने मैच भी देखा। बाद में ये टीम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन ये जीत न्यूजीलैंड फुटबॉल के लिए एक काफी हिस्टोरिक मोमेंट माना जाता है। सो यस, हाउ मेनी लिसनर ओवर हियर हैव विटनेस दिस रिकॉर्ड बाय न्यूजीलैंड की टीम, फुटबॉल फर्न्स, बताइए मुझे 5599 पे टेक्स्ट भेज के आप बता सकते हैं। एक मैसेज आया यार, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द सिंगिंग? डेफिनेटली, विच इज ग्रेट, थैंक यू सो मच। हेलो केतन, जस्ट अ सजेशन, सिंस यू आर इन बैंड, व्हाई डोंट यू गाइस ऑर्गेनाइज अ गिग इन वेलिंगटन? वी वुड लव फॉर समथिंग लाइक दिस कम आवर वे, सिंस वी हार्डली गेट एनी कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस विजिटिंग वेलिंगटन। ओह वाओ, दैट्स रियली गुड, थैंक यू सो मच ब्रो, आई एम डेफिनेटली गोना पास इट टू माय मेट्स ओवर हियर। बट कूल, एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत गाना क्यूटी पाई हिमेश रेशमिया की आवाज में।

0: विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम।
3: लेडीज एंड जेंटलमैन,
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ कहानियाँ होती है रॉ, इमोशंस होते हैं रियल और कॉन्वर्सेशंस होते हैं बिना मास्क के।
5: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ थे।
4: अनफिल्टर्ड विद सैंडी एंड रिस्पी ऑन रोवा, स्पॉटिफाई और एनीवेयर यू गेट योर पॉडकास्ट।
6: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
7: Sorry about that.
6: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true. Kogan Mobile. True Aussie value. Terms and conditions apply.
8: Rebel's end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now. Only at Rebel Sport. See your life T's and C's.
9: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
10: Right now your team could be winning, sprinting, pitching, kicking, sin binning, and you need to know about it.
11: Join our tribe.
10: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
11: join our tribe.
12: Since 1991, Continuous Group continuously make our gutters last longer. Our continuous spouting comes with 33% more protective coating for superior durability. For a limited time, you'll also receive the latest FlowMate leaf protection system, valued at up to $550, absolutely free. Designed for performance, made for longevity, tailored to you. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
0: Lunchbox with Keithan.
1: ऐसा बजाऊंगा ना कि तेरे कानों में रोज मेरी आवाज गूंजेगी।
2: हम चटनी शॉट्स।
13: चलिए फटाफट से अभी की लेटेस्ट खबर पढ़ लेते हैं। आज यानी कि कुछ ही देर पहले एक न्यूज आई है जिसमें लिखा है कि ऑकलैंड के 1.66 बिलियन सेंट्रल इंटरसेप्टर प्रोजेक्ट्स ऑफिशियली फुली ऑपरेशनल हो चुकी है। ये न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें 16.2 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड टनल हर्ने बे से मैंग्रे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट टास्क बनी है। वैसे इस टनल का जो मेन पर्पस है वो है हैवी रेन के टाइम वेस्ट वाटर ओवरफ्लो को रोकना और ऑकलैंड के बीचेस, रिवर्स और हार्बर्स को साफ रखना। पहले बारिश के दौरान अनट्रीटेड वेस्ट वाटर पानी के

साथ मिलकर समंदर और नदियों में चले जाते थे, जिसकी वजह से पोल्यूशन और हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाता था। अब इस प्रोजेक्ट के ऑपरेशनल होने से वेस्ट वाटर ओवरफ्लो जो है लगभग 80% तक कम हो चुका है, या फिर उम्मीद है, अभी हाल फिलहाल तो उम्मीद ही है, हुआ नहीं है। और इससे वाटर क्वालिटी भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। एनवायरमेंटल के तरफ से अगर देखें तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए भी सिटी का वेस्ट वाटर सिस्टम ज़्यादा कैपेबल बन सकता है। और ये प्रोजेक्ट ऑकलैंड के क्लीन वाटर और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन माना जा रहा है। दिल से

0: Bollywood.
1: World's best. हमारी कोई branch नहीं है. Throwback.
2: वेल इस आर का सवाल मेरे पास रेडी है बिकॉज आज वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है. अब सवाल ये है कि अब बचे हुए दिनों में क्या करोगे, बचे दिन मतलब आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या करेंगे. बट यस, इसके लिए आपके पास बहुत ही टाइम होगा ओवर द वीकेंड सोचने के लिए. बट अभी जो मेरा सवाल है वो ये है कि फीफा वर्ल्ड कप में अभी तक का सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड होल्ड कर रखा है कि सबसे ज़्यादा गोल किसके नाम पर है. आई मीन हु इज दैट वन प्लेयर जिसने अभी तक जितने भी वर्ल्ड कप्स हुए हैं फीफा के उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गोल जिसने दागे हैं वो कौन सा खिलाड़ी है. 5555 नंबर जहाँ पे आप मुझे जवाब भेज दीजिए.

0: चेतन
1: हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगी ना तो भी इससे बड़े लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
0: मार्च 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
2: रुजबी टिकट्स बुक हो गए
0: तो फिर देर किस बात की, बाली बुला रहा है।
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी,
0: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन,
2: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: वेदर के हाल चल जान लेते हैं। 15 डिग्रीज आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 8 डिग्रीज आज का मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, 90% चांस है बारिश के, 5.7 mm रिकॉर्ड होगा आज और सनसेट होगा 5:28 PM पे।

0: किरण नमस्ते सस्तिकाल सलाम अलैकुम, आपका फिर से स्वागत करते हैं आज के इस लंच बॉक्स शो में। वेल यस, आप सभी का स्वागत करते हैं और बने रहिए बिकॉज इस आर में भी काफी बातें होगी, काफी दमदार बातें होगी। सो यस, बने रहिए बिकॉज आज तो सेलिब्रेशन का माहौल है बिकॉज स्पेन जीत चुकी है। सो हाउ मेनी ओवर हियर हाउ मेनी ओवर हियर have supported, have actually supported Spain. जी हाँ, अगर if you are one of them, do let me know. मैंने honestly Argentina को support किया था, not दिल से, but yeah, because I don't watch football a lot, but of course knowledge सभी की रखनी चाहिए, and I know that football is the is highest, you know, viewership है world की। बट यस, काफ़ी सवाल भी उठे थे यहाँ पे, उसके बारे में बाद में बात होगी। बट यस, अगर आप उनमें से एक हैं दैट हु सपोर्टेड स्पेन, मुझे बताइए आप 5599 पे। इस आर में वैसे आपको बॉलीवुड की भी खबरें मिलेगी, साथ में आपको अभी लंच टाइम रेंट लाइन के लिए भी मौका दिया जाएगा टू कॉल मी, और कुछ ऐसी रेंट वाली बातें हों तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। 5599 इज द नंबर।
1: बचाओ क्या,

0: लंच बॉक्स विद केतन।
1: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
0: इसके पीछे
2: हम
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja।
3: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, एंजॉय करते रहे आप। वेस्ट साइड है ना, वेस्ट साइड ऑफ ऑकलैंड है ये।
6: Weekdays 6 to 10 a.m.
7: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
8: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
9: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
10: Now's the time to book your next tour with House of Travel. Save $500 per couple on Globus small group tours to Japan, Vietnam, South Africa and more. See the very best of every destination without the stress. Talk to our team today, only at House of Travel. TNCs apply.
11: TradeDepot.co.nz. Trade Depot home appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dia heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply.
12: TradeDepot.co.nz.
13: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
14: क्यों, क्या हुआ?
13: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 लॉजिक जी, दैट्स 0800-564-424.
0: Lunchbox with Ketan.
15: मुझे पसंद है लड़का।
0: हम। Lunchtime Rant Line.
16: Lunchtime Rant Line के सेगमेंट में आपका स्वागत है। आप जल्दी से फोन कीजिए मेरे को 0800-004-866 पे और बताइए मुझे कुछ ऐसी घटना घटित हुई हो आपके पास इन रिसेंट डेज, स्पेशली ओवर द वीकेंड, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। वैसे मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ, रश ड्राइविंग जिसको बोलते हैं, इतनी गंदी ड्राइविंग। लिटरली आई वाज अबाउट टू मीट द एक्सीडेंट, बट आई वाज लिटरली वाज लकी इनफ कि मैं उस सिचुएशन में नहीं आया। बेसिकली आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम वन ऑफ द शो जहाँ मेरी परफॉर्मेंस हुई थी और मैं आई वाज कमिंग बैक इन द सिटी, लाइक ऑब्वियसली वाया सिटी। मोटरवे ज़्यादा दूर नहीं था एग्जिट लेना, बट देन सडनली इफ यू नोटिस दैट पानेल से जब हम मोटरवे पकड़ते हैं तो वहाँ पे एक दो डिवीजन आता है जो कि एक साउथ की तरफ जाता है और एक वेस्ट की तरफ जाता है। एंड आई वाज ऑलरेडी इन द करेक्ट लेन, बट देयर वाज वन गाय ऑन द लेफ्ट लेन, ही ओवरटुक, ओवरस्पीडेड, क्योंकि मैं खुद ही 80 पे था, ऑन 80 जोन पे उसने ओवरटेक किया और उसने लिटरली क्रॉस करते हुए ही वेंट टू द यू नो जो वो बीच में जो क्रॉसिंग्स आती ना, दैट यू कैन नॉट पार्क, यू कैन ओनली पार्क देयर इफ योर कार इज नॉट वेल और या फिर कोई दिक्कत है। तो वहाँ से होते हुए उसने ओवर स्पीड करते हुए वेस्ट वाले रास्ते पे गया और जो मेरी फटके हाथ में आई ना, ऑनेस्टली इट वॉज लाइक नो नो नो एंड देन लकी यू नो मतलब हर एक चीज़ कंट्रोल पे थी मेरे, तो इस वजह से मैंने जल्दी जितना हो सका जल्दी से मैंने थोड़ा सा ब्रेक दबाया. ऑफ कोर्स यू नो पीछे भी देखा कोई और तो था नहीं उस टाइम, बिकॉज इट वाज लेट नाइट आई थिंक 12 और समथिंग, बिकॉज हमें फ्री होते होते आई थिंक 1 बज गई थी रात की, तब इतना ट्रैफिक नहीं था. बट द वे हाउ ही क्रॉस्ड ओवर इट वॉज लिटरली लाइक आई वॉज ब्लेस्ड इनफ कि मैं आपके सामने आज यहाँ पे अच्छे से बात कर रहा हूँ, वरना शायद आपको भी खबर मिलती कि मैं कहीं एडमिट हूँ या ऐसा कुछ. बहुत ही गंदी, लाइक लिटरली आई वॉज सो क्लोज. और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स थे वो दूसरी गाड़ी में थे ऑफकोर्स, तो उन्होंने पीछे से होते हुए देखा, दे लिटरली कॉल्ड एंड देन सेड लाइक ब्रो आर यू ओके. सो यस आई सेड यस आई एम ओके. तो ये मेरे साथ हुआ है. डू यू हैव एनीथिंग टू शेयर, मुझे कॉल कर सकते हैं 0800-004-866 पे. फ़ोन उठाइए. If you're driving, just make sure आप safely car park करें and then you call me. और अगर आपके passenger seat में अगर कोई है तो आप उससे call करवा सकते हैं, या फिर आप अगर car से मुझे call कर सकते हैं तो वो भी that is also okay. But yes, 0800-004-866 पे आप मुझे call करिए और share कर सकते हैं. Message भी भेज सकते हैं आप 5599 पे regarding anything you want to share regarding the रेंट लाइन. वैसे एक सवाल किया था मैंने कि सबसे ज्यादा गोल किसने दागे हैं फीफा वर्ल्ड कप में, जवाब मिले हैं मोस्टली सबके मेसी. ब्रो आई थिंक यू आर नॉट फॉलोइंग द फीफा वर्ल्ड कप. इसी साल मेसी को पीछे छोड़ दिया है. मेसी के नो डाउट बहुत ही अच्छे स्कोर्स हैं, 21 गोल्स है, बट उन्हें इसी साल के वर्ल्ड कप में किलियान एमबापे ने जो कि फ्रांस की तरफ से खेलते हैं उन्होंने पीछे छोड़ दिया है. यानी कि उनके नाम पे अब 22 गोल्स हो चुके हैं, 22 गोल्स एंड ही इज वेरी यंग यार, मतलब इतना वो नहीं है. वाओ दैट इज क्रेजी यार, क्रेजी. बट यस थैंक यू सो मच आपके पार्ट लेने के लिए. हम और भी बातें करेंगे. जस्ट टू रिमाइंड यू कि एक पॉडकास्ट आया है, आप जल्दी से जाइए और चेकआउट कर सकते हैं. मुझे या तो आप कॉल करके बता सकते हैं, सॉरी आप मुझे टेक्स्ट भेज सकते हैं ड्राइव, ताकि आपको एक ऐसे पॉडकास्ट के बारे में बात पता चले, एक इन्फॉर्मेशन मिले जहां पे शनिल लाल जो कि LGBTQ के राइट्स रेसिज्म और रिप्रेजेंटेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से उन्होंने बात की है. तो इसको सुनने के लिए आप मुझे ड्राइव लिख के 5599 पे भेज सकते हैं. बहुत ही अनफिल्टर्ड बातें करी हैं यू नो एंड व्हाट पीपल थिंक ऑफ देम, क्या किस नाम से चिढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत ही दिल से उन्होंने बात की है. उन्होंने काफ़ी सैड भी फील किया दैट यू नो दिस इज़ व्हाट पीपल सी अस, और जो कि एकदम ही गलत है. यू नो पीपल शुड गिव रिस्पेक्ट टू सच पीपल एज वेल. तो आप ये पॉडकास्ट डेफिनेटली आपको देखना चाहिए. एंड देन ऑफकोर्स मेरा गाना 2.0 सफाई 2.0 इज़ ऑलरेडी डूइंग ग्रेट. आप जाइए और देखिए. आई थिंक टुडे ही मैंने देखा था तो 40,000 प्लस व्यूज़ तो हो गए विद इन आई थिंक 8 डेज, जो कि क्रेजी यार, क्रेजी मतलब मेरे लिए ऑफकोर्स क्रेजी यार. एंड ऑफकोर्स थैंक यू सो मच फॉर द प्यार आप मुझे देते हैं. आप जल्दी से जाइए यूट्यूब पे और सफायर केतन के नाम से सर्च करिए, यू विल गेट द लिंक, यू विल सी द टॉप एक सफायर का होगा सफायर 2.0, उसे आप देख सकते हैं. उसमें गाने के जो बोल हैं वो मनप्रीत भाई ने लिखे हैं, मनप्रीत जो कि पापा टोए टोए.
2: लंच के मंच पे टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: चलिए बात करते हैं अभी की लेटेस्ट खबर. आज सुबह ऑकलैंड में दो अलग अलग रोड क्रैश की वजह से पीक ट्रैफिक के दौरान काफी डिलेज हुए थे. पहले एक्सीडेंट स्टेट हाईवे 1 पर कॉन्सोलेशन ड्राइव और ट्रिस्ट्रैम एवेन्यू के बीच हुआ था, जहां तीन गाड़ियां टकरा गई और एक साउथ बाउंड लेन टेम्पररीली बंद करनी पड़ी. दूसरा क्रैश सदर्न वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न मोटरवे के ओनेहंगा एरिया में नेल्सन स्ट्रीट ऑन रैंप के पास हुआ, जिसमें दो व्हीकल शामिल थे. दोनों एक्सीडेंट्स में किसी भी तरह की इंजरी रिपोर्ट नहीं हुई. इमरजेंसी सर्विस ने जल्दी रिस्पांस दिया और क्रैश को क्लियर भी किया गया, जिसके बाद सभी लेन्स दोबारा खोल दी गई है. NZTA के मुताबिक ट्रैफिक धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, लेकिन मॉर्निंग कम्यूटर्स को कुछ देर तक हैवी कंजेशन और डिलेज का सामना करना पड़ रहा है.

0: देगी ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे।
1: Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ से किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत तो
3: आए आए बताओगे यार।
1: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $5.99 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients, free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
6: Rebel's end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now. Only at Rebel Sport. See your life T's and C's.
7: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं। पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना, बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस, ऑन साइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस, और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑन साइट क्रेमेटोरियम, और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा। मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए।
8: Air New Zealand's Discover the World sale is on now, with flights to Aussie, the islands, Asia, USA and Canada. Sale ends midnight 24 July 2026. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
9: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
10: Join the Tribe!
9: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe, your destination for sport. Download the app now and
10: join the Tribe!
11: Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
11: इसके पीछे?
1: हम।
11: Lunch के मंच पे।
13: वेल बॉलीवुड की बात कर लेते हैं। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही हिस्टोरिक बात है फॉर ऑल द कार्तिक आर्यन फैंस। जी हाँ, एंड ऑफ कोर्स कार्तिक आर्यन के लिए भी, बिकॉज 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड में कार्तिक आर्यन ने चंदू चैंपियन के लिए पहला नेशनल अवार्ड जीत लिया है। मनमुट्टी के साथ यानी कि बेस्ट एक्टर अवार्ड शेयर किया है उन्होंने। यामी गौतम धर को आर्टिकल 370 में उनकी दमदार परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिले हैं। इसे फिल्म ने बेस्ट फीचर फिल्म को नेशनल अवार्ड भी जीता है और अपने नाम किया है, जिससे ये सेरेमनी की सबसे बड़ी विनर बनी है। वैसे इसके अलावा श्रीकांत को बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, जबकि धनुष को कैप्टन मिलर के लिए स्पेशल मेंशन भी दिया गया है। 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड ने 2024 में सर्टिफाइड फिल्मों को सम्मानित किया और इंडियन सिनेमा की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस और फिल्म मेकिंग को सेलिब्रेट भी किया है। वाओ, दैट्स सो गुड यार। वेल, आपको क्या लगता है, लाइक यू नो, कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको सचमुच में यानी मिला नहीं अभी तक, लेकिन दैट पर्सन रियली डिजर्व टू बी विनिंग द फिल्म फेयर अवार्ड ऑफ 2026? जी हाँ, 2026 के हिसाब से आपको क्या लगता है, अभी तक जितनी फिल्में आई हैं उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस किसकी रही है, कौन से इंडियन एक्टर की रही है जिसे नेशनल अवार्ड इंडिया का बॉलीवुड के लिए जीतना चाहिए? 5599 इज द नंबर। आई पर्सनली फील एज पर व्हाट आई हैव सीन द फिल्म, मुझे लगता है रणवीर सिंह को मिलना चाहिए। What do you think? रणवीर सिंह को, हाँ, क्योंकि उसके अलावा मैंने कोई मेजर फिल्म देखी नहीं है, सो यस, आई फील दैट रणवीर सिंह को मिलना चाहिए। What do you guys think?
11: दिल

0: μας κουνζίκι. Throwback.
1: Welcome back. You are listening to Lunchbox. Well, yes, just to remind you, Auckland, आप सभी ready हो जाइए एक बहुत ही बढ़िया शाम एक music, dance और celebration के लिए. Auckland बहुत ही बढ़िया one of the most awaited cultural celebration आने वाला है. Garba night with Raj Gadvi. Well, yes, Garba with sensational Raj Gadvi live होने जा रहा है on 1st of August महात्मा गांधी सेंटर में, जिसे लेके आ रहे हैं Lotus Productions, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता एंड प्रांची ग्रुप आप सभी के लिए लेके आए हैं Garba Night with the sensational Raj Gadvi live. महात्मा गांधी सेंटर ऑकलैंड में होने वाला है. सो यस, मेक श्योर कि आप टाइम से पहुंच जाएं, बट बिफोर दैट टाइम से टिकट भी ले लीजिए. टिकट्स आर सेलिंग वेरी वेरी फास्ट और जल्द ही हाउसफुल हो सकता है. eventstickets.co.nz इज द वेबसाइट जहां से आपको टिकट लेने होंगे. कुछ सवाल जवाब अगर आप करना चाहें तो स्वप्निल शाह को कॉल करिए 0224394736 पर. बट यस, हमारे लिसनर्स के लिए क्या स्पेशल है यहाँ पे? Well, आपके पास एक मौका है डबल पास जीतने का. कैसे? सीधी सट बात है भाई, फोन उठाइए, टेक्स्ट लिखिए, आरजी, बोले तो राज गढ़वी का इनिशियल है, आरजी लिखिए और अपने नाम के साथ 5599 पे आप मुझे टेक्स्ट भेज दीजिए ताकि आप इस ड्रॉ में शामिल हो जाएं. एंड यू कुड विन 1 double pass फॉर दिस अमेजिंग शो जो कि होने वाला है 1st of August को महात्मा गांधी सेंटर में, गरबा विथ द सेंसेशनल राज गढ़वी लाइव.

0: Kera namaste, welcome back. You are listening to Lunchbox. My name is Ketan. You are listening to us from Hum 104.2 FM. Ke zariye. Roa app ke zariye bhi aap sun rahe honge. And yes, 87.7 bhi hai somewhere. City mein. City ki taraf agar aap hain, toh wahan pe aap hume sun sakte hain uske zariye. But yes, thodi der mein ek game aap ke liye main leke aaya hoon to get entertained. Aur aap se bhi main puchunga. Basically, Sandy ko maine bulaya hai thodi der mein. वो आएंगी स्टूडियो में और उनसे मेरा सवाल ये रहेगा कि मैं उनको हर एक बॉलीवुड मूवीज के जो नाम है, टाइटल है, उसका अपोजिट मैं बताने वाला हूँ और उनको वही चीज गेस करनी है. डे नाइट ऐसा यूनिक डे है तो उसको दिन बता दिया, नाइट है तो रात बता दिया, ऐसा नहीं. डे है तो उनको उन्हें उल्टा करके जो सही करेक्ट टाइटल है मूवी का वो बताना है. तो यस, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसी में आपसे भी मैं सवाल करूंगा. सो यस, आप बने रहिए, कहीं मत जाइए. 5599 से नंबर जहां पे आप भी मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखा सकते हैं. बट यस, लेट्स स्टार्ट विद ठान लिया सुखविंदर सिंह की आवाज में.
1: बचाओ क्या
2: ऊंचे रहे जो तेरे कद से इरादे

0: Welcome back. Sunny, how are you?
1: Good, Ketan, कैसे हो तुम?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? फिर से पूछ लेता हूँ.
1: हाँ, अच्छा गया, सब सही है. तुम मुझे कोई सवाल पूछने के लिए यहाँ पे लेके आए हो?
0: हाँ, सवाल मेरा ये है, स्पेन वाला मैच आपने एंजॉय किया?
1: क्या ही कह सकती हूँ मैं. दिल अर्जेंटीना के पास था तो या थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो जरूर है.
0: स्पेन लेके चला गया.
1: अभी लेके गया कब स्पेन तो, बट आई विल से डिजर्विंग.
0: इज इट?
1: या वेल डिजर्विंग, बिकॉज जिस वजह से स्पेन ने पूरा वर्ल्ड कप खेला है, काफी डिजर्विंग टीम थी वो. अर्जेंटीना ने काफी जगह पे यही किया है, उन्होंने यू नो सही से इतने मैचेस उन्होंने नहीं खेले. एंड में आके कई बार वो जाग जाते थे, वो सब हुआ था उनके साथ. बहुत सारे मैचेस में,
0: राइट,
1: सेकंड हाफ में जब वो सब चीजें,
0: का भी कुछ वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी कुछ ऐसे सीन हुआ था.
1: ओके,
0: वो काफी मतलब इन फेमस है अर्जेंटीना फॉर सच थिंग्स, कि वो जैसे मतलब बोले ना बाय हुक या क्रूक,
1: क्रिकेट के साउथ अफ्रीका है वो,
0: नहीं क्रिकेट के ऑस्ट्रेलिया है. साउथ अफ्रीका तो क्यूट है यार.
1: साउथ अफ्रीका चोकर्स है ना, जैसे
0: वो चोकर्स है, बट वो कहते हैं ना बाय हुक या क्रूक जीतना है, मतलब जीतना है, तो ऐसा काफी लोग बोलते हैं.
1: yeah.
0: और काफी मैंने कमेंट्स भी देखे आज जो पोस्ट डाले अपन ने. तो उसमें भी लोग बोल रहे थे कि दैट ग्लैड दैट स्पेन वॉन द वर्ल्ड कप.
1: या बीच में एक जगह पे किया था मेसी ने कुछ, आई थिंक फॉल्ट के बारे में उसने इशारा, कुछ हुआ नहीं था, बट देन ही वाज लुकिंग एट रेफरी कि शायद कुछ है. बढ़िया, वो चलता रहता है
0: स्पेन का.
1: तो बताओ, हाँ स्पेन ले गया अब कब तो. कितने मिलियंस लेके गया वो?
0: एक्चुअली बताओ ना, 50 USD, जो कि 85-86 न्यूजीलैंड डॉलर होते हैं स्पेन की झोली में.
1: वाओ.
0: बट डू यू नो न्यूजीलैंड जो है ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई, बट फिर भी मोटी रकम लेके आ रही है न्यूजीलैंड.
1: न्यूजीलैंड को कितने मिले?
0: 9 USD, 9 million USD, दैट इज 15.5.
1: वाओ, सही है यार, सबको अब ट्राई करना चाहिए फुटबॉल में जाने के लिए, हर एक कंट्री को.
0: हाँ, सबसे पहले इंडिया को करवाओ भाई.
1: इंडिया में टैलेंट बहुत है फुटबॉल को लेके, लेकिन
0: इंडिया को इसलिए नहीं करवाओ,
1: नहीं हो पाती.
0: मैं इंडिया को इसलिए करवाओ कि भाई तुम कर क्या रहे हो. इतनी पॉपुलेशन है भाई, घर से बाहर निकलो, टीवी बंद करो, मतलब टीवी चलाओ, बाहर आओ. एनीवेज, मेन रीजन टू ब्रिंग यू ओवर हियर वाज टू आस्क यू क्वेश्चन. एंड मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ ओवरव्यू, जो मैंने ऑफ कोर्स लिसनर को पहले बता दिया, दैट मैं आपको ना नाम दूंगा टाइटल मूवी के. ठीक है, टास्क ये रहेगा कि वो जो नाम होंगे वो होंगे उल्टे,
1: ओके,
0: अपोजिट. तो आपको गेस करना है कि उसका अपोजिट क्या होगा, विच विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द टाइटल ऑफ द फिल्म.
1: कोई एग्जाम्पल?
0: जैसे मैंने यार वो एग्जाम्पल वो नहीं दे सकता कि वो उसमें मैंने इंक्लूड किया है. तो अगर मैंने बता दिया अभी तो
1: नहीं, मूवी का एग्जांपल मत दो, ऐसा नॉर्मल लाइफ की एग्जांपल दो. फॉर एग्जांपल,
0: जैसे फॉर एग्जांपल चलो मैं लंच बॉक्स का बताता हूँ. बॉक्स का मेरे को उल्टा नहीं पता, बट लंच का उल्टा क्या हुआ? अदर इज डिनर,
1: डिनर
0: है ना, डिनर बॉक्स लाइक दैट. तो मैं ऐसा कुछ करके आपको बताऊंगा उसका उल्टा,
1: ऑपोजिट वर्ड बोलना है.
0: तो मैं जो बताऊंगा वो गलत होगा, बट उसको सीधा करके दैट विल बी द करेक्ट आंसर.
1: ओके, गॉट इट, गॉट इट. लेट्स सी, रेडी?
0: चलो सबसे पहले यस एग्जिट.
1: हाँ,
0: यस एग्जिट,
1: एग्जिट,
0: यस एग्जिट, दोनों को उल्टा करो.
1: नो एंट्री.
0: अरे क्या बात है,
1: नाइस नाइस. ओके,
0: तो आप जीत चुके हैं दूसरा सवाल. ये इजी है
1: ये. okay.
0: औरत,
1: मर्द.
0: नमक ज्यादा,
1: चीनी कम.
0: ओए होए होए, गजब यार, गजब. राइट, sad old year,
1: sad
0: old year,
1: happy new, और तुमने एंड में क्या बोला?
0: हाँ, उसका पता नहीं मेरे को.
1: year ही है.
0: उसका उल्टा मेरे को पता नहीं.
1: happy new year.
0: हाँ, happy new year. nice, ये भी easy है. black,
1: white.
0: sorry, मैंने जो
1: तुमने उल्टा बोलना था, व्हाइट बोलना था तुम्हें,
0: मैंने
1: मुझे ब्लैक बोलना था.
0: हाँ, मुझे मुझे उल्टा बोल दिया.
1: कोई बात नहीं.
0: राइट, अगला वेरा.
1: एक लिसनर के लिए पूछते हैं ना,
0: लिसनर के लिए पूछेंगे.
1: उनके लिए
0: मत कहो, मत कहो नफरत है.
1: मत कहो नफरत है, ऐसा कहो ना प्यार
0: है. गजब यार, गुड बाय,
1: वेलकम.
0: अरे क्या बात है, क्या बात है. एक और पूछता हूं मैं, बहुत ही बढ़िया है. टीचर ऑफ द डे,
1: स्टूडेंट ऑफ द ईयर.
0: नाइस नाइस नाइस. शांति,
1: शांति का उल्टा क्या होता है, अशांति.
0: वो एक्चुअली टेक्निकली सही है, बट मूवी मूवी कौन सी होगी?
1: शांति का उल्टा अशांति.
0: चलिए ये तो आपको नहीं पता तो मैं लोगों से पूछता हूँ.
1: हाँ, बेस्ट है.
0: लिसनर्स बताइए मुझे शांति का उल्टा क्या होगा, नॉट इन हिंदी वे बट ऐसी कौन सी फिल्म है जो ऑलमोस्ट क्लोज है, क्लोजर टू शांति,
1: लेकिन शांति का उल्टा है वो मूवी.
0: हाँ मतलब नॉट लिटरली बट मूवी का नाम इज वेरी क्लोज टू शांति का अपोजिट.
1: ओके सो 0800 हम पर कॉल करो, केतन को बताओ या फिर मैसेज करके बताओ 5599 पर. शांति का ऑपोजिट है और मूवी का नाम है
0: राइट.
1: वो क्या हो सकता है,
0: क्या हो सकता है? अभी और पूछता हूँ मैं.
1: अशांति नहीं हो रहा
0: है, अशांति तो बिल्कुल नहीं है,
1: अशांति नहीं है.
0: शांति का आया क्रांति.
1: क्रांति.
0: अच्छा सॉरी, इनका नाम तो नहीं है ना? नहीं बेटा. हेलो.
2: हेलो जी. अशांति का ऑपोजिट होगा धमाल.
1: धमाल
0: काइंड ऑफ, काइंड ऑफ, काइंड ऑफ.
1: Okay.
0: Actually, I'll take it as answer. हाँ, I'll take it okay. as answer.
1: तुम्हारे पास कौन सा answer था?
0: हंगामा.
1: हाँ ये भी है, हंगामा धमाल right? दोनों आते हैं इसमें.
0: चलिए आप फोन पे हैं तो आपसे एक और सवाल कर लेता हूँ. डरपोक का उल्टा कौन सी फिल्म होगी?
2: डरपोक
0: लेटेस्ट
2: वाला.
0: अरे मतलब नई वाली पुरानी वाली?
1: मुझे तो बहादुर भी आ रहा था इसमें.
0: बहादुर भी है, बहादुर भी एक्चुअली. That is cool. माफी का उल्टा क्या होगा?
1: माफी का उल्टा और हिंदी में, मतलब माफी अगर इसने हिंदी बोला है ना तो हिंदी में ही आंसर होगा वो.
0: हाँ एक्चुअली टेक्निकली यस. ये एक्चुअली पता है क्या है, इंटरेस्टिंग पता क्या है, इसका जवाब तो मेरे को भी नहीं पता.
1: माफी का नहीं पता तुम्हें? सजा सजा हुआ ना
0: इसका? माफी मतलब आपने माफ कर दिया.
1: हाँ तो इसका उल्टा क्या हुआ? माफी का उल्टा क्या होता है यार?
0: काफी लोगों का
2: नॉट फॉरगिव.
1: नॉट हाँ, लेकिन लेकिन हिंदी में माफी का उल्टा वर्ड क्या होता है?
0: मूवी मूवी मूवी से रिलेटेड.
1: लेकिन तभी मूवी लेके आएंगे ना हम, रुको तो सही.
0: किसी का मैसेज आया
1: यार, माफी का उल्टा ही नहीं मिल रहा है.
0: वॉर, मेरे ख्याल से वॉर किसी और का होगा, किसी और का जवाब दिया होगा. शांति का वॉर.
1: ओ शांति का वॉर,
0: वो भी सही है. पागलपंती.
1: या बट माफी का उल्टा वर्ड क्या होता है?
0: एक ने जवाब दिया है.
1: क्या है जवाब?
0: बट आई डोंट नो. गुना.
1: माफी का
2: गाइस
0: कह सकते हैं.
1: क्राइम है ना वो तो.
0: हाँ तो
2: क्राइम.
0: हाँ एक्चुअली वो तो एक सब्जेक्ट हो गया. माफी इज लाइक डिसीजन.
1: माफी इज लाइक फॉरगिवनेस.
0: हाँ वो डिसीजन लिया आपने, डिसीजन लिया है
1: तो माफी का उल्टा नहीं समझ में आ रहा है यार.
0: एक्शन है वो. मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ पे बस मैं ही यहाँ थोड़ा फिसल गया था, दैट्स व्हाई आई आस्क यू. बट आपको भी लग रहा है कुछ समझ में आ रहा है?
2: थोड़ा हो रहा है,
0: थोड़ा हो रहा है.
1: नहीं हो रहा है.
0: चलो एक में फोन उठा लेते तब तक. आप ट्राई कर दीजिए और हमें जैसे आंसर मिलता है आप 5599 पे भेज दीजिए हमें.
2: ओके
0: ऑलराइट थैंक यू.
1: मंडे के दिन क्या क्या करवा रहे हैं ये.
0: एक और फोन उठाया. अरे फोन ही कट गया इनका तो. फोन आया, फोन ही कट गया. वेल जिससे भी ट्राई किया था एक बार फिर से आप कॉल कर सकते हैं. बट यस क्वाइट इंटरेस्टिंग राइट.
1: माफी का अभी तक नहीं मिला गाइस, सो सोचिए.
0: मेरे को हाँ
1: मेरे, और मैसेज कीजिए 5599
0: पे. आप मुझे बताइए कि क्या हो सकता है इसका जवाब. माफी का उल्टा यानी कि वो मूवी से कनेक्टेड होगा.
1: किल तो होता नहीं.
0: किल विल ये सब तो एक्शन हुए ना यार. ये दिस इज नॉट डिसीजन.
1: माफी इज इमोशन.
0: हाँ और ये बाकी सारा तो ओ बदला.
1: या
0: बदला इज द राइट आंसर.
1: बदला इज द राइट आंसर. यस
0: दैट इज करेक्ट. करेक्ट
1: राइट राइट यू गॉट इट. या एक्चुअली बदला इज द राइट आंसर.
0: बट कूल यार थैंक यू सो मच. है काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट था. हम ऐसे ही और भी लेके आएंगे. आप बस सुनते रहिए. धन्यवाद. आपको भी. Lunchbox with Ketan. हीरा लड़का है, टेलीस्कोप लेके ढूंढेगा ना तो भी इससे बेटर लड़का नहीं मिलेगा तुझे. वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं।
1: इसके पीछे
2: हम
3: स्किप या रीप्ले टॉप हिट ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स बिल्ड योर ड्रीम्स।

आप उन्हें एक्सपीरियंस करेंगे द ट्रस्ट एरिना ऑकलैंड में। वेल यस ऑफ कोर्स ये जो मैजिक है उनकी तरफ से आने वाला है, उसे एक्सपीरियंस करिए विद टाइमलेस हिट्स, कुछ एक से बढ़कर एक कवालीज, कुछ सोलफुल सूफियान अंदाज और ऑफ कोर्स तरह तरह के डिफरेंट जॉनर के गाने जो उन्होंने अलग अलग देशों के लिए गाए थे। बट यस जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शन एंड शहजादा प्रोडक्शन आप सभी के लिए लेके आए हैं द ट्रस्ट एरिना ऑकलैंड में होने वाले द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान कमिंग टू ऑकलैंड फॉर वन अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ म्यूजिक। 25th ऑफ जुलाई को ही होने वाला है, टिकट अभी भी आपके पास मौका है, बहुत ही कम टाइम बचा, जल्दी से जाइए और टिकट खरीद लीजिए dryTickets.com पे जाके। ड्राई सूखा टिकट dryTickets.com पर जाके इसके टिकट ले लीजिए।

वेलकम बैक। चलिए आपको स्पोर्ट्स की नजरें, स्पोर्ट्स की खबरें बता देते हैं। सबसे पहले क्रिकेट से फैंटास्टिक न्यूज। ब्लैक कैप्स ने वेस्ट इंडीज को एक विकेट थ्रिलिंग में हराकर ओडीआई सीरीज अपने नाम कर ली है। मैच लास्ट ओवर तक गया और न्यूजीलैंड ने प्रेशर में भी शानदार कंपोजर दिखाते हुए सीरीज को अपने नाम कर दिया। उधर दूसरी तरफ इंग्लैंड में इंडियन क्रिकेट टीम से अपडेट है। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्ट में लॉर्ड्स टेस्ट से हारने के बाद कैप्टन शुभम गिल ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट को लेकर काफी सवाल पूछे थे। गिल ने कहा कि टीम का पूरा फोकस करंट सीरीज पर था, जो कि कल इंडिया हार चुकी है 2-1 से। बट यस, एक काफी प्रोमिनेंट जवाब मिला है। जवाब तो क्या है, अभी तो देखो रूमर्स ही था, ये कोई सच्चाई थी या नहीं थी वो तो पता नहीं है। बट ये रूमर आ रहा था दैट रोहित शर्मा का शायद कल जो मैच हुआ था वो आखिरी था। बट 138 रन की अच्छी पारी खेली है उन्होंने, 130 यानी कि शतक मारा उन्होंने। सो नाउ अभी हाल फिलहाल हो सकता है जवाब हो उनके पास दैट नो यू डोंट नीड टू गेट रिटायर्ड सो सून। बट एक फीफा वर्ल्ड कप की तरफ से भी ड्रामेटिक अपडेट आपके लिए लेके आया हूँ। अर्जेंटीना पे जीत के बाद मैच खत्म होते ही प्लेयर्स के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट जो है वो देखने को मिला। एक अर्जेंटीना प्लेयर ने अपोजिशन के प्लेयर के शॉव कर दिया, जी हाँ, जिसके बाद ऑफिशियल के बीच काफ़ी बचाव का भी इंसिडेंट हुआ है कि एक जो प्लेयर थे अर्जेंटीना के उन्होंने पुश कर दिया था किसी खिलाड़ी को। सो वो काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट पे बदल गया था।

0: अब वो अभी काफी लोग डिस्ग्रेस भी है. सो यस, उसके बारे में आप ऑनलाइन जाके पता कर सकते हैं किस बारे में, या फिर बस कनेक्टेड रहिए, बिकॉज सैंडी विल बी शोइंग यू, सैंडी विल बी शेयरिंग दैट न्यूज टू यू वेरी वेरी श्योर. बट यस, आप बने रहिए, अभी बहुत ही एक लाजवाब बात और बतानी है रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजिया.
1: लंच बॉक्स विद केतन.
2: मुझे पसंद है लड़का.
3: 80s के रेट्रो गाने.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. What happens to your business once the sun goes down? If your signage fades into the dark, so do your opportunities. Speedy Signs designs illuminated signs and LED lettering that keep your brand visible long after closing time. When customers can see you clearly, they are more likely to stop, call, or come back. Stay bright, stay visible. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी.
3: हाँ, मॉर्गेज बनना भी मुश्किल हो रहा है. सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें.
2: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए. मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए. अब रेंट भी आ रहा है.
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा. NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट. फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
4: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
5: Flooring Extra. Adore your floor.
6: Super birthday deals are coming to you at the speed of light. Watch this. I'm here. Now I'm here.
7: Now I'm here.
6: Back here now.
7: Here I am.
6: Super birthday deals. On now at Pack and Save. Now I'm back here.
8: When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Henderson in just 35 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
9: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09277-6644. T's and C's apply.
10: Non-stop Bollywood.
11: जो भी करते हैं शिद्दत के साथ करते
10: हैं. हम playing Bollywood's biggest hits. Lunchbox with Ketan.
12: इसके पीछे ना तीन चार लड़कियां पड़ी हुई हैं.
10: इसके पीछे
11: हम.
10: Tech Talk.
13: टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं. फ्यूचर में स्मार्टफोन्स और भी स्मार्ट और पावरफुल बनने वाले हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले कई सालों में AI पावर्ड स्मार्टफोन्स, स्मार्ट कैमरास ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट्स, प्लेस और टेक्स्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. एडवांस बायोमेट्रिक सिक्योरिटी जैसे अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट्स और फेस रिकग्निशन फोन्स को और भी सिक्योर बनाएंगे. साथ ही ग्राफीनी और नैनोटेक बैटरीज की वजह से फोन्स बहुत ही फास्ट चार्ज होने लगेंगे और बैटरी लाइफ भी काफ़ी इम्प्रूव होने वाली है. इसके अलावा फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेज भी, प्रेशर सेंसिटिव टच स्क्रीन्स और सिम फ्री ई सिम टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन्स को डिज़ाइन और यूजर इंटरफेस बदल देंगे. AI वॉइस असिस्टेंस इतना एडवांस हो सकता है कि बिना ऐप खोले ही कई काम सिर्फ वॉइस कमांड से ही हो जाएंगे, यानी कि यू विल बी लिविंग लाइक अ आयरन मैन. फ्यूचर स्मार्टफोन्स हेल्थ मॉनिटरिंग और मेडिकल डायग्नोसिस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, जिसमें जैसे हेल्थ केयर और डेली लाइफ दोनों और कन्वीनियंट बन जाएंगी. वाह यार, मतलब ऐसा हुआ तो बेस्ट है. बट आई एम एक्चुअली वेरी कीन टू ट्राई अगर फ्यूचर में ट्रांसपेरेंट फोन्स आते हैं तो. मतलब जस्ट इमेजिन यार, ट्रांसपेरेंट फोन, मतलब आप कहीं पर भी रखो, किसी को पता नहीं पड़ेगा. Which is of course scary for sure, but just imagine, मतलब transparent phone में आप selfie लोगे कैसा लगेगा? मतलब transparent होगा या दिखेगा? Good question यार, good question. वैसे आप मुझे बताइए, इन सब में जो सबसे you know एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आप सच में बहुत ज्यादा वेट कर रहे हो फ्यूचर को, जो आपको पता है कि क्या है वो मुझे बताइए। मेरे हिसाब से पता है क्या, मेरे हिसाब से आई एम एक्चुअली वेटिंग जब हर एक इंसान के पास खुद का अपना प्राइवेट फ्लाइंग कार होगी। यानी कि जो ट्रैफिक है बाहर ऑकलैंड में जो हम इस टाइम पे फेस करते हैं बिफोर 9 एंड इन बिटवीन 3 to 6, वो शायद क्या पता रोड पे ख़त्म हो जाए एंड देन बाद में पता पड़ा सिर्फ स्काई में ही है ट्रैफिक। बट यस, वो उसके लिए मैं काफ़ी कीन हूँ यार, वो काफ़ी कीन है। बट यस, थैंक यू सो मच, आप बने रहिए कॉफ़ी ब्रेक में। थोड़ी देर में ज्वाइन हो जाएंगी सैंडी जो आपका स्वागत करेंगे वहाँ पे, एंड यस शी विल डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू लिटिल अपडेट अबाउट कि भाई क्या फाइट हुई थी आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। जी हाँ, तो आप बस बने रहिए, सुनते रहिए अभी से हम रोवा के जरिए भी आप चाहे तो हमें सुन सकते हैं। जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए अपने फ़ोन ऐप पे, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे। बट चलिए, कल मिलते हैं सेम टाइम 12 से 3, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।

0: Streaming on Rover.
1: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
0: Check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
2: Good afternoon, I'm Bridget Hasty with the latest at 3. The Green Party is pledging to set up a publicly owned energy company. Kiwi Power would be funded through a so-called super rich tax with the aim of reducing power bills and speeding up renewable energy transition. Here's co-leader Chloe Swarbrick.
3: What Kiwi Power will do is solve that immediate concern around the dry air problem and provide that certainty that industry so desperately needs.
2: The government says its action to stop a Whangarei cement plant from closing is an exceptional case. It's granted Golden Bay Cement up to $60 million to keep operating after learning that Fletcher Building was considering closing the facility. Minister Nicola Willis says the factory plays a vital role in the country's economic supply chain. The escalation in hostilities between Iran and the United States has seen another surge in oil prices. Brent crude is now over $90 a barrel. A New Zealand honour has been given to the man who helped identify victims of the Mount Erebus plane disaster. Thomas McCabe was sent from the US Navy to photograph remains at the crash site, working 14-hour days in temperatures of minus 40 degrees. He's now accepted a special service medal at our embassy in Washington, D.C., after proving to be a hard man to track down. To sport, Kiwi Ryan Fox is coming to grips with becoming a major golf champion, winning the Open Championship by one shot. It's a dream come true, a dream he didn't really think possible until the last couple of years. And to football updates brought to you by Hisense, a disappointing day for Argentine superstar Lionel Messi. Spain won the World Cup final 1-0, and Messi also missed out on the golden ball as the tournament's best player. That was Spanish midfielder Rodri.
0: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Weather update. Brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
4: मौसम के हालचाल मेडसब रिस्क के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.6 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 7 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है. मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है, बारिश होने के चांसेस हो सकते हैं. सनसेट आज का 5:28 पर.
0: द बीट ऑफ बॉलीवुड
5: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
0: कॉफी ब्रेक विद सैंडी.
4: 3:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कॉफी ब्रेक आपके लिए शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलॉन्ग विद सैंडी और अभी से लेके 4 बजे तक मेरा और आपका साथ यहाँ पे कॉफी ब्रेक में रहने वाला है. सो इट इज 20th of July. अगर आज आपका बर्थडे है, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू. अगर आज आपकी एनिवर्सरी है, अ वेरी वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. सो आपका डे कैसा जा रहा है, आपका वीकेंड कैसा गया, ओवर द वीकेंड कोई स्पेसिफिकली कुछ डिफरेंट आपने किया वो भी हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं. रिलैक्स किया, जस्ट चिल किया, अपना खुद के साथ टाइम स्पेंड किया वो भी बता सकते हैं. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, यू कैन शेयर दैट एज वेल. सो हाउ वॉज योर वीकेंड? सो आज रिचार्ज हैं या फिर हैंग ओवर में हैं? वर्ल्ड कप के बारे में तो क्या ही बात करनी है, क्या ही और बात करें या रह किया गया है. अर्जेंटीना से बहुत होप्स थी मेरी कि अगर फाइनल तक पहुंचे हैं तो कुछ तो करके जाएंगे, ये लेके ही जाएंगे अभी. एंड आई सी गोल्डन बूट की ओर कि अगर मैसी थोड़े और 2 गोल्स कर लेता तो मे बी गोल्डन बूट ले जाता समथिंग. बट या डिसअपॉइंटिंग हो गया वो भी स्पेन. लेकिन मैं बोलती हूँ कि मच डिज़र्विंग यार, जिस वे से स्पेन ने थ्रू आउट द वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं वो डिज़र्व करते थे ये टाइटल लेके जाना. एनीवेज के बारे में बाद में और भी बातें करेंगे. आपकी टीम कौन सी थी, आपने किस टीम को सपोर्ट किया? एंड प्राइजेस तो बहुत बड़े बड़े मिले यार, मतलब मिलियंस इतने जो प्राइजेस मिले हैं हर एक टीम को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस वर्ल्ड कप में, दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड वन. फीफा वर्ल्ड कप इसीलिए दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड कप जो है ये माना जाता है.

0: Andy. 3:16 हो चुके हैं, कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं। एंड राहत फतेह अली खान का शो जो है इसी वीकेंड पे होने वाला है 25 जुलाई को। सो अपनी टिकट्स अगर आपने अभी तक नहीं खरीदी है, इट्स गोना बी अ वेरी नाइस इवनिंग ट्रीट फॉर यू गाइस। 25 जुलाई विच इज सैटरडे इवनिंग ट्रस्ट अरीना में ये शो होने वाला है। जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिबरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस इस इवेंट को लेके आ रहे हैं। एंड राहत फतेह अली खान इनका शो अगर आपने आज तक अटेंड नहीं किया है, यू मस्ट एक्सपीरियंस दिस शो लाइव। एंड अगर आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया है, यू नो द मैजिक। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, दिस टाइम टोटल 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स होने वाले हैं शोज में, इस शो में। सो इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट वाइब ऑफ द शो ऑल टुगेदर। एंड आजकल वैसे भी कोई भी शो देखने जाओ तो वाइब हर किसी को पसंद आनी चाहिए कि भाई वहाँ पे बैठ के कितना मज़ा आ रहा है, ये हर कोई लुक फॉरवर्ड करता है। सो समथिंग लाइक दैट ऑल्सो फॉर राहत फतेह अली खान शो। सो ज़रूर पहुँचेगा अगर आपने टिकट्स अभी तक नहीं खरीदी है। dryTickets.com इज़ अ वेबसाइट जहाँ पे टिकट्स आपको मिल जाएगी। एंड वहाँ पे जाके आपको सिंपल राहत फतेह अली खान सर्च करना है एंड जस्ट बुक योर टिकट्स।
1: Bollywood's most wanted.
2: गुंडी खड़ जाओ या सीधा अंदर आओ।
3: मैं लाऊं अपना A game.
1: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

3:25 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. एंड आपको बता दें कि ओवर द वीकेंड वैसे नेशनल अवार्ड्स भी हुए हैं. 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स एक्चुअली में हुए हैं, जहाँ पे बॉलीवुड ने कुछ हेडलाइन कैटेगरीज में विन ज़रूर हासिल की है, लेकिन साउथ इंडियन सिनेमा इन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया इन दीज अवार्ड्स. बेस्ट फीचर फिल्म को, वैसे जो मेजर विनर्स है इसमें, बेस्ट फीचर फिल्म को मिला है आर्टिकल 370 इस मूवी को, जो कि हिंदी मूवी है. बेस्ट डायरेक्टर में राजकुमार पेरियासामी इनको मिला है तमिल मूवी अमारन के लिए. बेस्ट एक्टर के जॉइंट विनर्स हैं, एक तो कार्तिक आर्यन फॉर चंदू चैम्पियन, चलो इस मूवी को कहीं पे तो अप्रिशिएट किया गया. एंड सेकंड विनर इज़ ममूटी, जो एक्टर है, मलयालम मूवी है इनकी ब्रह्मा युगम, इसके लिए. बेस्ट एक्ट्रेस यामी गौतम को मिला है आर्टिकल 370 के लिए. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में संजय मिश्रा को अवार्ड मिला. देन बेस्ट एडिटिंग, जो कि तमिल मूवी है जिसको एज अ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है, अमारन इस मूवी को मिला है. देन बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर को, स्कोर के लिए भी सेम मूवी को मिला है, टू जी वी प्रकाश कुमार. नाउ व्हाई साउथ इंडियन सिनेमा स्टोल द शो, बिकॉज तमिल फिल्म जो अमारन है वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट विनर्स, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर, एडिटिंग, बैकग्राउंड स्कोर, ये सब कुछ किया. सो साउथ इंडियन मूवीज़ जो है ये एक्चुअली में हैविली रिप्रेजेंट करती है क्राफ्ट कैटेगरीज को. सो जिसमें एक्चुअली में देखा जाए तो साउथ सिनेमा की एक इंडस्ट्री रेपुटेशन भी है टेक्निकल एक्सीलेंस में एंड इवन स्टोरी टेलिंग में, जिसमें अभी तक बॉलीवुड उनको बीट नहीं कर पाया है. हिंदी सिनेमा अभी तक उनको बीट नहीं कर पाया है. बॉलीवुड की भी खैर ये बिग विन ज़रूर थी, बट इसमें ऑब्वियसली साउथ सिनेमा जो है ये काफ़ी लेके गया है. और भी बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जो है इनको अवार्ड्स मिले हैं, बट दीज वर फ्यू मेजर विनर्स.

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. Keep calm because Punjabi swag is on.
2: ਮੰਗੀਏ ਤੇ

each during the heavy rain. So, iski cost $1.66 billion hai. Iski length jo rahegi takriban 6.2 kilometers. And jo central interceptor hai, ye as a giant underground wastewater motorway hai basically. So, jab heavy rainfall hoti hai, to Auckland ka jo older combined wastewater and stormwater system hai, it can overflow. Jisse untreated sewage jo hai, ye waterways and beach mein jate hai. Ye jo naya tunnel hai, ये क्या कर रहा है कि इस नए टनल के जरिए टेम्पररी ये स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट करता है ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ वेस्ट वाटर टू मैंगरी फॉर ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ अलाउंग इट टू स्पिल इनटू द एनवायरनमेंट. तो बेसिकली वो जो पानी है उसका ट्रीटमेंट होगा. इसमें इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स है कि जब ये फुली कनेक्ट हो जाएगा तो वाटर केयर जो है ये एक्सपेक्ट करते हैं प्रोजेक्ट टू रिड्यूस वेट वेदर वेस्ट वाटर ओवरफ्लो बाय अराउंड 80%. वाटर क्वालिटी जो है बीच पे इम्प्रूव हो जाएगी अराउंड वाइटमाटा हार्बर जिसमें सेंट मैरीज बे पॉइंट भी आता है, पॉइंट शेव आता है एंड नियर बाय जो कोस्टल एरियाज हैं वो भी आते हैं. सो दिस मेक ऑकलैंड्स वेस्ट वाटर नेटवर्क मोर रेजिलेंट फॉर द नेक्स्ट 100 years. सो इट इज़ न्यूजीलैंड लार्जेस्ट वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बेसिकली. ये एक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट हम कह सकते हैं. So it passes 15 meters beneath the Manukau Harbour at its deepest crossing. So yes, ये एकदम fully operational हो चुका है. लेकिन इस बार वैसे देखा जाए तो बारिश सर्दियों में बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है as compared to previous years. इस बार weather थोड़ा dry रहा है even in winters.

347 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं. कॉफी ब्रेक फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. हमारा लेटेस्ट एपिसोड जो है अनफिल्टर्ड का सुनना ना भूलेगा. इट्स रियली गुड एपिसोड जो कि मस्ट लिसन एपिसोड है. सो हमने इस बार शनि लाल के साथ बात की है अबाउट ब्रेकिंग बैरियर्स. शनि लाल जो है जो कि अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं एज ट्रांसजेंडर नॉन बाइनरी हिजड़ा हम हिंदी लैंग्वेज में बोल देते हैं. न्यूजीलैंड में ये जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर भी है, एलजीबीटीक्यू एक्टिविस्ट भी है ये, एंड बहुत सारी कम्युनिटीज़ को लेके भी अपनी आवाज़ ही उठाते हैं. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर फाउंडिंग दी कन्वर्शन थेरेपी एक्शन ग्रुप जो कि इन्होंने सक्सेसफुली लीड किया था. एक 5 साल की मूवमेंट थी टू बैन द कन्वर्शन थेरेपी एंड फाइनली ये कन्वर्शन थेरेपी बैन हुई थी इन 2022 इन न्यूजीलैंड. उससे पहले यहाँ पे कन्वर्जन थेरेपी हुआ करती थी. नाउ सवाल उठता है कि कन्वर्जन थेरेपी है क्या, मतलब आपको कन्वर्जन से जो समझ में आता है वो किसी को कन्वर्ट करना, यू नो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को कन्वर्ट करना, क्योंकि ऐसी थिंकिंग थी कि ये नॉर्मल थिंकिंग नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती थी जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम टॉर्चर भी कहते हैं. सो लेकिन वहाँ पे इसे थेरेपी का नाम दिया जाता था. सो एनीवे यंग न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर भी ये बन चुके हैं इन 2023. सो ये पॉडकास्ट जो हमने इनके साथ किया है इट्स क्वाइट अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट. सो आप इसे ज़रूर सुनेगा एंड इस पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको समझ में आएगी जो वाइल्ड ग्रोइंग अप हमें नहीं पता थी, बिकॉज उस समय पर हमें कोई सिखाने वाला नहीं था. और जो क्या होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इन्फ्लुएंस ना बॉलीवुड का होता है. मूवीज़ में हमें जो चीज़ दिखाई जाती है हम उस चीज़ को बहुत ही डेडिकेटेड वे से समझते हैं और आगे लेके चलते हैं. मूवीज़ के ज़रिए हमने नॉलेज बहुत ली है. वैसे इस पॉडकास्ट में जो की हाइलाइट्स है वो है बैन ऑन कन्वर्जन थेरेपी. कन्वर्जन थेरेपी होता क्या है उसके बारे में, डीकंस्ट्रक्टिंग सम मिथ्स, फॉर एग्जांपल वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, मिस इन्फॉर्मेशन सराउंडिंग ट्रांसजेंडर्स आइडेंटिटी, प्यूबर्टी ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या होते हैं इसके बारे में शनि लाल ने समझाया, एंड काफ़ी चीज़ों को पब्लिक में अपोज करना, चाहे वो डेस्टिनी चर्च है, चाहे नेविगेटिंग फोबियाज है, या फिर एड्रेसिंग द इंटरसेक्शन ऑफ रेसिज्म या क्यूर आइडेंटिटी को लेके. सो ये सब चीज़ें हमने इसमें बात की है. ऑल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें बात की जिसमें मैंने और उसबे ने इनसे पूछा कि अगर एक कॉमन मैन को हेल्प करनी है एंड और इस पर्सन को एबीसी इस पर्सन का नाम है और ये जो एबीसी पर्सन है इसको हेल्प करनी है लेकिन इसको आउट एंड अबाउट ओपनली जाके हेल्प नहीं करनी है तो वो अपने वे से कैसे हेल्प कर सकता है. तो इसका बहुत अच्छी वे से इन्होंने वहाँ पे आंसर दिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल वे से आंसर दिया है. सो वो भी आप जाके ज़रूर सुनेगा. यहाँ पे सब कुछ इसलिए नहीं सुना सकते बिकॉज देन पॉडकास्ट में जाके आप क्या सुनेंगे. वन एक चीज़ जो मैंने आपके लिए कर दी है, जब आप पॉडकास्ट के ऊपर क्लिक करोगे ना तो मैंने वहाँ पे चैप्टर्स बना दिए हैं, वहाँ पे मैंने ऐसे सेगमेंट्स बना दिए हैं, सो दैट यू कैन रीड कि इस सेगमेंट में किस चीज़ के बारे में बात की गई है. यू कैन क्लिक ऑन दैट सेगमेंट एंड वो वाला पार्ट आप जाके सुन सकते हैं. सो आपको ड्राइव लिख के भेजना है 5599 पर, ऑटो रिप्लाई में ये पॉडकास्ट का जो लिंक है आपको मिल जाएगा. अदरवाइज जरूर वहाँ पे जस्ट सर्च अनफिल्टर विद सैंडी एंड रुस्बे, तब भी ये पॉडकास्ट आपको मिल जाएगा. स्पॉटिफाई पे मिल जाएगा, अमेज़न पे, एप्पल म्यूजिक, इट्स एवरीवेयर.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: मौसम के हालचाल मेड सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 13.6 डिग्रीज है और आज को ओवरनाइट 7 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है। वैसे मौसम आज का थोड़ा सा क्लाउडी भी रहने वाला है, इवनिंग में बारिश के चांसेस रहेंगे।

0: Sleepy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
1: Super Se Upar. Brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited. The Drive Show with Sandy and Rizbe.
2: Masti karenge, mauj kaatenge, garda paad denge.
3: चार बज के तीन मिनट हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. कैसे हैं आप और आपका डे कैसा जा रहा है? ड्राइव शो आपके शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. इट इज 20th of July. वेल, आज का दिन जो है ये काफ़ी लोगों के लिए बहुत मायने रखता है. इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर में. इस टॉपिक पे भी आएंगे. आज का ट्रेंड मेकर्स बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है गाइस. ट्रेंड मेकर्स में आज एक मूवी है आपके लिए. सो बेसिकली आज ट्रेंड मेकर्स में मूवी ऑफ द डे है, जो मुझे लगता है कि ये जो मूवी है ना, ये 20th July के ऊपर बेस्ट सूटेड है. अगर आज के डेट में अराउंड द वर्ल्ड अगर कुछ हो रहा है एंड तो आज के दिन में ये जो मूवी है इसके डायलॉग्स आप सुनने वाले हैं और ये जो मूवी है इसके ही गाने सिर्फ आज आप सुनने वाले हैं बिटवीन 6 to 7. सो दिस विल बी योर ट्रेंड मेकर्स टूडे. मैं आपको हिंट देती हूँ एंड यू कैन ट्राई टू गेस कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, किस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ. ये जो मूवी है ना, इस मूवी में रेडियो भी है. रेडियो का मेजर रोल है इस मूवी में. नो, दिस मूवी इज़ नॉट मुन्ना भाई. पहले क्लियर कर दूँ. सो ये जो मूवी है, इस मूवी में रेडियो का ना बहुत ही बड़ा रोल है. क्लासिक मूवी है ये. इट्स अ क्लासिक मूवी एंड काफ़ी लोग इसको मस्ट वॉच मूवी कहते हैं. इसमें जो एक्टर्स है, एक एक्टर नहीं है इसमें, एक्चुअली में 5 एक्टर्स है. एक्ट्रेस दो ही थी एंड नॉट ज़्यादा मेन स्ट्रीम वाली एक्ट्रेसेस आई विल से, बट एक्टर्स तो डेफिनेटली वन एक्टर इज 100% बिग एक्टर इसमें. लेकिन ये जो मूवी है एक अलग ही मार्क छोड़ के गई थी. आज के दिन पे ये मूवी, अगर ये 20s 2000s की मूवी है ये, लेकिन आज के टाइम पे ये मूवी रिलीज़ नहीं हो पाती. ये एक अनदर हिंट है आपके लिए. किस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ? ये मूवी के डायलॉग्स और गाने आज आप सुनने वाले हैं बिटवीन 6 to 7. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है इस मूवी में और रेडियो एक मेजर रोल प्ले करता है इस मूवी में. बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि थोड़े बेपरवाह होते हैं पहले, लेकिन कैसे बेपरवाह से वो कैसे कुछ ज़्यादा ही परवाह करना शुरू कर देते हैं सिस्टम की. सो गेस कीजिए किस मूवी के बारे में बात कर रही हूँ. 5599 इज अ नंबर. बट फॉर नाउ शुरुआत करते हैं केतन कुमावत के सुपर गाने के साथ, जिसे आप एक्चुअली में बहुत ही प्यार दे रहे हैं.
4: Yeah.

with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं.

0: anywhere you get your podcast.
1: Professional Financials hai saath aapke. Loan aur insurance ek chhat ke niche. No broker charge, bas trusted advice. Har deal banaye perfect right.
2: Refinance ke liye compare kare different banks. Loan process so simple and frank.
1: Business finance ya income protection ho, har step par guidance perfect ho. Sab kuch milega yahi. Apna future secure banaye.
2: Professional Financial Solutions. Your future, our priority. Call 09846-9934 or search PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: When CityRail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From Panmure, you'll be able to go from instant noodles for one in the library to...
6: Hey, hey! Noodles with friends on Karanga Hape Road!
5: In just 23 minutes.
6: Auckland Transport and CityRail Link. More connections that'll take you from a night in to a night out.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: What if your next holiday wasn't just a holiday?
9: But the adventure everyone talks about.
8: Imagine chasing waterfalls.
9: Wandering lush rice terraces.
8: Catching unforgettable sunsets.
9: And relaxing at iconic beach clubs.
8: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk.
9: Discovering incredible temples.
8: Tasting world-famous street food.
9: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
10: Celebrate your favorite big screen icons with pocket-sized pals and oodles of fun. Featuring a blockbuster cast of 40 characters, get one free Disney Ushi with every $30 you spend. Now playing at Woolworths. T's and C's apply while stocks last.
11: Are you ready to go home?
12: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
0: Super Se Ooper, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
13: 4:17 हो चुके हैं. ड्राइव शो फिलहाल आप यहाँ पर सुन रहे हैं. वैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ है यहाँ पे न्यूजीलैंड में, वाइकाटो में एक्चुअली में, पर्सनलाइज नंबर प्लेट को लेके. सो पर्सनलाइज नंबर प्लेट को लेके क्या हुआ है कि एक वुमेन, इसने फाइंड आउट किया, इसने डिस्कवर किया एक्चुअली में कि वो समहाउ किसी स्ट्रेंजर कार को रजिस्टर हो चुकी है. सो हुआ क्या, शुरू से कहानी ऐसी है, अगर आपने ये कहानी कहीं पे नहीं पढ़ी अभी तक, तो दिस लेडी, इसने पर्सनलाइज प्लेट खरीदी इन 1996. उसको हमेशा से इसने ओन करके रखा, लेकिन अराउंड 10 इयर्स अगो उसने अपनी गाड़ी से इसको रिमूव कर दिया और अपने गैराज वॉल में लगा लिया इसको. सो व्हेन शी कंसीडर्ड सेलिंग देम इन द लेट 2025 लास्ट ईयर में, उसने ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन चेक की तो शी वॉज शॉक्ड कि जो प्लेट कॉम्बिनेशन है ये किसी और गाड़ी को रजिस्टर हो चुका है जो वो खुद ओन नहीं करती है. उसके बाद 8 महीने की इसकी बैटल थी. इसने कॉन्टैक्ट किया कीवी प्लेट्स को, जिन्होंने कंफर्म किया कि शी वॉज स्टिल द लीगल एंटाइटलमेंट होल्डर फॉर द प्लेट. फिर NZTA ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया. पुलिस को पहले लगा कि ये एक सिविल डिस्प्यूट है. NZTA ने इवन सेंट सर्टिफिकेशन ऑफिसर्स टू लोकेट द कार जो इसको ऑन कर रही है, लेकिन एक्चुअली में वो गाड़ी उनको मिली नहीं. सो बेसिकली क्या हुआ कि जब उनको फिजिकली एक गाड़ी नहीं मिली जिसको वो इंस्पेक्ट कर सकते थे, दिस है दे डिडंट हैव इनफ एविडेंस टू फोर्स द सरेंडर ऑफ द प्लेट्स. नहीं तो होता है ना कि अगर आपको वो मिल जाती है तो. सो प्राइवेसी लॉस के कारण ये जो लेडी है ये उस व्हीकल ओनर की जो डिटेल्स है वो भी फाइंड आउट नहीं कर पा रही थी, ताकि उसको डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल में वो लेके जाए, तो वो भी नहीं हो पा रहा था. देन शी फाइल्ड पुलिस में 105 जो नॉन एमरजेंसी नंबर है वहाँ पे एक रिपोर्ट फाइल किया. देन NZTA ने एग्री किया कि वो इन्वेस्टिगेशन शेयर करेंगे पुलिस के साथ एंड फॉर्मली रिक्वेस्टेड दे एक्ट ऑन इट्स बिहाफ. देन फोन कॉल हुई पुलिस टू द पर्सन जो इस गाड़ी की प्लेट को डिस्प्ले कर रहे थे एंड बहुत सारी चीज़ें हुई एंड देन इवेंचुअली शी गॉट द नंबर प्लेट बैक. NZTA ने एक्चुअली में बोला है कि कोई सिस्टम एरर नहीं थी बट देर वॉज एक्चुअली अ लूप होल सो जिसके कारण ये जो नंबर प्लेट है किसी और को चले गई. सो अगर आपने अपने घर पे ना कोई सदियों से बहुत टाइम से एक्चुअली में कोई नंबर प्लेट रखी हुई है ना कि ये आप किसी दिन बेचेंगे किसी और को इसको सेल करेंगे इट्स हाई टाइम जाके उसके रजिस्ट्रेशन चेक करो सबसे पहले कि वो ऑलरेडी किसी गाड़ी को रजिस्ट्रेशन तो नहीं जा चुकी है. बिकॉज अगर ये सिस्टम में लूप होल के कारण इस बंदी की रजिस्ट्रेशन कहीं और चले गई थी तो इसका मतलब है कि दे आर चांसेस कि और एरर्स भी और नंबर प्लेट्स में भी हो सकती है जो इस समय पर इनएक्टिव है. सो अगर आपके पास है तो मेक श्योर यू डेफिनेटली चेक अबाउट इट. वैसे आपने कभी ऐसा सोचा है कि अपने नाम की या फिर एक पर्सनलाइज नंबर प्लेट आप लेंगे या आपने खरीद के रखी है? शेयर कर सकते हैं 5599 पर कि अगर आपको खुद की नंबर प्लेट एक दिन लेनी है तो वो क्या होगी. डू यू फैंसी नंबर प्लेट्स ऐसे पर्सनलाइज नंबर प्लेट्स अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसके बारे में भी शेयर कर सकते हैं कॉल करके या फिर मैसेज करके 5599 पर.
0: Bollywood's most wanted.
14: सीधा अंदर आऊं मैं लाऊं अपना ए गेम.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

429 at the moment यहाँ पे हो चुके हैं. You're humming along with Sandy right now and यहाँ पे ड्राइव शो फिलहाल आप सुन रहे हैं. वैसे कुछ कॉम्पिटिशन्स भी है आपके लिए, कुछ इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी है. जैसे कि ये एक इवेंट आपके सुपर सिटी में बहुत ही जल्दी होने वाला है 1 अगस्त को, गरबा नाइट विथ राज गढ़वी. लोटस प्रोडक्शन श्री इवेंट न्यूजीलैंड विनय मेहता प्रांची ग्रुप आपके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर लेके आ रहे हैं, गरबा विद राज गढ़वी. आप लाइव एक्सपीरियंस कर सकते हैं 1 अगस्त को महात्मा गांधी सेंटर में. टिकट्स बहुत ही जल्दी जा रही है, सो मेक श्योर कि आप अपने टिकट्स भी जल्दी से बुक कर रहे हैं. सो अपने टिकट सिक्योर कीजिए फ्रॉम द वेबसाइट events.tickets.co.nz. इन्फॉर्मेशन के लिए स्वप्निल से बात कर सकते हैं ऑन 0224394736. इट्स 0224394736.

0: ऊपर से ऊपर brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
1: 437 at the moment हो चुके हैं ड्राइव शो में सुपर से ऊपर फिलहाल आप यहाँ पे सुन रहे हैं. मंडे है तो आज ब्रेन एक्सरसाइज तो जरूर बनती है. वीकेंड के बाद ना हमारा मंडे बड़ा स्लो जाता है, सो व्हाई नॉट ब्रेन को थोड़ा जगाया जाए. एंड anyway, आज ट्रेंड मेकर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी आपके लिए आने वाली है. काफ़ी लोगों ने सही आंसर गेस कर लिया है कि कौन सी मूवी आने वाली है. बट फॉर नाउ ब्रेन जगाने के लिए एक सवाल है आपके पास. आपको मिसिंग डॉलर ढूंढना है. सो अगर आप एवरी डे कैश के साथ डील करते हैं, मनी के साथ डील करते हैं, जहाँ अगर आप ग्रॉसरी करते हैं वहाँ पे डील करते हैं, या आप अकाउंटेंट है, या आपका बिजनेस है, कहीं पर भी अगर आप कैश के साथ डील करते हैं, तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है. सवाल ये है कि कहानी है तीन दोस्तों की. तो ये जो तीन दोस्त हैं ये एक होटल के रूम में जाते हैं, और जो होटल का रूम है मतलब ये लॉन्ग ड्राइव पर निकले थे, रस्ते में रुक जाते हैं कि चलो कहीं पर हमें अरेस्ट करना है. सो ये जो रूम है सिर्फ $30 का है, वेरी चीप. $30 का वो एक रूम है जो तीनों सोचते हैं कि चलो हम ये डिवाइड करके पैसे ना डिवाइड करके ये रूम खरीद लेते हैं, मतलब रेंट कर लेते हैं. सो तीनों जो हैं $10 ईच पे करते हैं. $30 हो गए, तीन दोस्त हैं, $10 दिए सबने, $30 में वो जो रूम है उसका रेंट भर दिया उन्होंने. वो अपने रूम में चले गए. बाद में होटल मैनेजर जो है ये एक्चुअली में बहुत ही ऑनेस्ट वाला है. सो उसे अपनी मिस्टेक रियलाइज़ होती है. उसको ध्यान में आता है कि अरे यार अभी तो डिस्काउंट चल रहा था, ये जो रूम है ये सिर्फ $25 का था, ये $30 का नहीं था, उसे तो मिस्टेक हो गई. तो वो बेल बॉय को बुलाता है, उसको $5 देता है, जो गेस्ट है उनको वापस कर दो. एंड वो जो बेल बॉय है उसके सामने उन्होंने पेमेंट की होती है, हर किसी ने $10 ईच निकाले होते हैं. सो वो जो है होटल मैनेजर उसको $5 देता है कि जाके उनको रिटर्न कर दो. जब वो जा रहा होता है वो सोचता है यार मैं उनको $5 दूंगा, वो आपस में डिवाइड तो कर नहीं पाएंगे, बेकार का झगड़ा हो जाएगा, तो मैं $2 अपने पास रख लेता हूँ, $3 उनको वापस दे देता हूँ, ताकि वो $3 $1 ईच वो आपस में डिवाइड कर ले. तो वो जाता है उनको दे देता है $3. सो अभी क्या हो रहा है कि ईच पर्सन ओरिजिनली पेड $10, ईच पर्सन गॉट $1 बैक. तो ईच पर्सन ने कितना पे किया, $9, बिकॉज 10 - 1 = 9, $1 उनको वापस मिल गया. एंड 9 जो है इंटू 3 बनता है $27. बेसिकली इन्होंने $27 पे किए. एंड जो बेल बॉय है उसके पास है $2, तो 27 + 2 बनता है 29. अब मिस्ट्री ये है कि वो $1 कहाँ गया. तो एक मिसिंग डॉलर कहाँ गया, ये आज आपको सॉल्व करना है. सोचिए, मैसेज भी कर सकते हैं, थोड़ी देर में कॉल करके भी कर सकते हैं. 5599 इज़ अ नंबर जहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं. तो होटल रूम के लिए तीनों फ्रेंड्स ने $30 दिए, $10 ईच दिए, अपने रूम में चले गए. मैनेजर को रियलाइज़ हुआ तो कमरा तो सिर्फ $25 का था, बेल बॉय को बुला के वो देते हैं $5 कि जाके उनको वापस करके आओ. वो जा रहा होता है, सोचता है कि यार तीन लोग $5 को कैसे डिवाइड करेंगे, $2 अपने पास रख लेता है और $3 उनको वापस दे देता है. $3 वो तीनों फ्रेंड आपस में डिवाइड कर लेते हैं. ओरिजिनली उन्होंने $10 दिए थे, 10 में से $1 उनको वापस मिल गया. सो ओरिजिनली उन्होंने $9 दिए थे, ठीक है, 9 × 3 बन गया $27. $2 बेल बॉय ने रखे हैं $29. वो $1 कहाँ गया, ये आपको कैलकुलेट करना है. एंड लेट्स सी कितने लोग वो $1 को फाइंड कर पाते हैं. 5599 इज़ द नंबर.

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: 4:52 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। सोनू निगम की आवाज में ये गाना आप थ्रो बैक में यहाँ पे सुन रहे थे, जहाँ पे 2000s के गाने आप सुनते हैं। वैसे मैंने सवाल पूछा था आपसे, एक पहेली पूछी थी एंड काफ़ी लोगों ने इसके सही आंसर दे ही दिए हैं, तो क्यों ना पहले हम टीचर से ही बात करें। हाय परविंदर, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: बढ़िया बढ़िया। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ पहेली जिन्होंने मिस की है, ठीक है? सो सवाल आज का ये था गाइस कि तीन दोस्त होटल रूम में जाते हैं, रूम का खर्चा है $30। सो $10 ईच पे करते हैं, फिर होटल के मैनेजर को रियलाइज़ होता है हिला डिस्काउंट था, ये तो $25 का है। बेल बॉय को $5 देते हैं क्या जाके रिटर्न करने के लिए। बेल बॉय सोचता है कि यार $5 कैसे डिवाइड करेंगे, झगड़ा हो जाएगा। दो अपने पास रखता है, तीन उनको देता है, तीनों के पास एक एक एक वापस गया। 10-1, $9 ईच हो गया, सो 9 × 3 = 27। $2 है बेल बॉय के पास, तो $29 बनते हैं। $1 कहाँ गया बताओ परविंदर, $1 कहाँ गया?
1: अगर मैं आपको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूँगी,
0: हाँ,
1: तो आप जो 27 में 2 ऐड कर रहे हो वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको अमाउंट 25 करनी है ना कि 30। तो यू विल टेक अवे टू मेक इट 25, नॉट टू ऐड टू मेक इट 30।
0: कैसे करोगी?
1: 25 नॉट 30, 27 माइनस 2 25।
0: 27 माइनस 2, हाँ, तो बेसिकली वहाँ पे माइनस करना है, वहाँ पे ऐड नहीं करना,
1: माइनस करना, ऐड नहीं करना।
0: हाँ, ये
1: एक्चुअली मुझे आती है।
0: हाँ, ये एक्चुअली में बहुत ही पजल ट्रिक है, एंड कई बार वो होता है ना कि मिसिंग डॉलर जो है वो जस्ट वहीं पे कहीं पे हाइड होता है, सो देयर वाज नेवर एक्चुअली अ मिसिंग डॉलर। हाँ सही है। बेसिकली मैं समझा दूँ गाइस, होटल के हो गए $25, बेल बॉय के पास है
1: एक।
0: हाँ
1: मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ।
0: हाँ बोलो।
1: मेबी यू विल नॉट लाइक इट, इतनी अच्छी मैं टीचर हूँ, अगर किसी को ट्यूशन आना है तो आ जाना।
0: हमें बताना परविंदर से आपको ट्यूशन पढ़नी है, हम आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे। अबे ऐसे खुले हम परविंदर अपना नंबर नहीं बोलती है ना?
1: नहीं मैं बोल भी दूंगी।
0: नहीं नहीं रहने दो बहन, ऐसा सही नहीं है।
1: साइंस के, केमिस्ट्री के, बायो के, फिजिक्स के, किसी का भी ट्यूशन चाहिए, मैथ्स का, प्लीज कॉन्टेक्ट।
0: दिस एक्चुअली वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को एक्चुअली में बच्चों को हेल्प की जरूरत है इन साइंस ये सब में, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, विल गिव यू द नंबर ऑफ परविंदर। सही है ना?
1: थैंक यू,
0: ऑल गुड।
1: और भी ऐसे साइंस मैथ्स के सवाल पूछे आप।
0: अच्छा ठीक है, लेके आऊंगी मैं, नेक्स्ट टाइम मैं साइंस का लेके आऊंगी। ठीक है,
1: ठीक है, बिल्कुल,
0: चलो सही है, बाय बाय
1: बाय बाय।
0: सो ओरिजिनल $30 आर अकाउंटेड फॉर, $25 हो गए होटल के, $2 हो गए बेल बॉय के, और $3 जो गेस्ट को गए, 25 + 2 + 3 कितने हुए, $30। सही है, काफ़ी लोगों ने प्रॉपर कैलकुलेट करके भेजा है, रिया ने भी अच्छे से कैलकुलेट किया है, परमजीत ने भी अच्छे से कैलकुलेट किया है, इनका नाम है दिव्या ने अच्छे से कैलकुलेट किया है, जॉर्डन ने अच्छे से कैलकुलेट करके भेजा, मतलब मैथ है काफ़ी लोगों की तेज़।

0: صح وش رايك صح؟
1: Super say Uber, brought to you by Reliance Ventilation Systems Limited.
2: Hum, accurate traffic.
3: Spend a day in Mission Bay. Food, flicks, fun.
4: Showers overnight for Auckland, a low of 7 on the northern. We've got reports of delays just north of the Harbour Bridge affecting northbound traffic. It's building on the northwest and west from Waterview to Te Atatū. On the southern, it's slow northbound from Penrose Road to Green Lane and very heavy southbound East Tamaki Road to Orams Road. Southwestern is heavy from Puhunui Road to the southern, from the city to the airport, taking half an hour.
3: New arrivals, familiar favourites, iconic waterfront location, missionbay.co.nz.
5: Dibba khul gaya.
6: Bharat bhai, tiffin khul gaya chhe.
7: Sanjana ka dibba khul gaya.
8: Jab Kashish Spices se khana banega, to saare office ki nazar mein rahega. Phir yahi to hoga.
7: Dibba khul gaya.
8: Haldi, mirchi, garam masala, Kashish masale, achhe wale. Buy any Kashish product and be in the draw to win up to $10,000 worth of cash prizes, gold coins and gift vouchers. Terms and conditions apply.
9: Smart Pay
10: is now.
9: Shift 4, Dakota.nz. Global commerce, local service.
10: Waiting weeks for your FPOS setup? That's lost revenue. Shift 4 gets your business up and running and taking payments in under a week. Tailor your setup from day one with flexible plans and customizable options that can bring business costs down. Make the shift today.
9: Shift 4.
11: Shine Dental has a fresh new look with more space and the same caring team. New patients ke liye ultrasonic scale and polish from $99 or one tooth acrylic denture sirf $599 mein. Plus free dental examinations for new and existing patients. Free wins and ACC codes or under 18s ke liye free treatment. Visit Shine Dental at 574 Great South Road, Manukau. Book today on 09-277-6644. T's and C's apply.
12: 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
1: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
13: Good evening, I'm Bridget Hasty with the latest at 5. The Prime Minister is defending the government's move to prop up a Northland cement plant. Golden Bay Cement is being granted up to $60 million to continue manufacturing as it battles rising costs. Christopher Luxon says it's a brutally pragmatic decision.
14: To say, hey listen, we are not prepared to lose cement making capability here in this country because we need to build national security and national resilience and we can't rely on those global supply chains.
13: The Resource Management Act reforms will move forward without existing decision-making deals between iwi and councils. It follows recommendations from the Environment Committee. Minister Chris Bishop says starting over with new agreements is the cleanest thing to do.
15: There was 8 of them when we came in and they weren't utilised at all. If you look at them on average, less than 1 per year was being negotiated.
13: Police say they've dealt a serious blow to the Comanchero gang's South Island operations. 29 people have now been convicted through Operation Avon, a multi-million dollar drug bust. Included is the Comanchero's entire Christchurch chapter. Wellington Zoo has cancelled all little penguin close-up encounters due to bird flu precautions. It's also not accepting any injured birds. To sport, Ryan Fox hopes his triumph at the Open Championship has a positive effect on New Zealand golf, adding to the momentum growth in recreational golf. Fox is the fourth Kiwi to secure a golf major. And to football updates brought to you by Hisense, it wasn't a classic World Cup final, Spain beating Argentina 1-0. The official FIFA stats registered Argentina as having 2 attempts at a goal in extra time. The term attempt is being used loosely.
2: Sports News.
1: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Draw Skill. The beat of Bollywood.
16: World's best, hamari koi branch nahi hai.
1: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
17: मौसम के हालचाल मेट सर्विस के अनुसार इस समय टेम्परेचर बाहर का 12.4 डिग्रीज और आज को ओवरनाइट 7 डिग्रीज टेम्परेचर रहने वाला है थोड़ा सा क्लाउडी आज का रहने ही वाला वेदर सनसेट आज का 5:28 पर
0: Live Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manugo and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now.
5: Power Drive at 5.
1: Brought to you by Focus Kitchens. Quality kitchens with modernized, customized designs for your dream kitchen. Drive Show with Sandy and Rusby.
18: मस्ती करेंगे, मौज काटेंगे, गर्दा पार देंगे.
17: 5:03 हो चुके हैं. अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू. पावर ड्राइव 5 आपके लिए यहाँ पे शुरू हो चुका है. यू हमिंग अलोंग विद सैंडी राइट नाउ. सुबह से जो इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है अराउंड द वर्ल्ड, जो हो रहा है यहाँ पे हमारे आसपास, जो हो रहा है, स्पेन विंस वर्ल्ड कप. अगर आपको अभी तक नहीं पता है, अर्जेंटीना फैन का दिल जो है टूट चुका है. एंड मेसी फैंस का बेसिकली कह सकते हैं कि दिल जो है टूटे टूटे हो चुका है. स्पेन, आई थिंक मच डिजर्विंग ये विन थी उनके लिए. ऑल्सो अनदर न्यूज़ जो आज आई वो थी अबाउट टोंगन वेमेन रेस्क्यूड फ्रॉम चाइना आफ्टर अरेंज मैरिज स्कीम. सो या फेलो टोंगन्स जो है इन्होंने एक्चुअली में इस मैरिज स्कीम में उनको फंसाया था. सो या उसको रेस्क्यू किया गया. एंड बैक टू सुपर सिटी जो एक न्यूज़ आई है, द ग्रीन्स इन्होंने लॉन्च किया है इलेक्शन एनर्जी पॉलिसी को, प्रॉमिसिंग टू हेल्प कट पावर बिल्स एंड एस्टैब्लिश कीवी पावर, एक पब्लिकली ओन्ड कंपनी टू डिलीवर ये रिन्यू एनर्जी के लिए, विच इट सेज कि जो मार्केट है इज फेल टू बिल्ड. सो इलेक्शन ईयर प्लेज है फ्रॉम द पार्टी की एक अलग ही थिंक जो है, एक अलग ही मुद्दा क्रिएट करने वाली है. वेल और भी ढेर सारा कुछ हो रहा है जिसके बारे में यहाँ पे हम बातें करते रहेंगे. जो इवेंट्स हो रहे हैं इसके बारे में भी बात करेंगे. राहत फतेह अली खान इसी सैटरडे को परफॉर्म करने वाले हैं रिमेंबर महात्मा गांधी सेंटर में 1 अगस्त को. सो टिकट्स बहुत ही जल्दी जा रही है, अपनी टिकट अभी से बुक करवा लीजिए. इवेंट्स सॉरी सो नॉट महात्मा गांधी सेंटर में इनका इवेंट नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट था. राहत फतेह अली खान इसी सैटरडे को ट्रस्ट अरीना में परफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ पे वो पहले भी परफॉर्म कर चुके हैं. टिकट्स आप ले सकते हैं फ्रॉम dryTickets.com. वहाँ पे अगर आप जाके सर्च करते हैं राहत फतेह अली खान तो आपको टिकट्स की इन्फॉर्मेशन मिलेगी. दिस इवेंट इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शंस. रिमेंबर इसी शनिवार को राहत फतेह अली खान आपकी सुपर सिटी में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं.
19: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: देसी और नॉट सो देसी।
1: सो देसी और नॉट सो देसी में होता क्या है, आपसे हम एक सवाल पूछते हैं या फिर एक बिहेवियर या हैबिट बताते हैं और आपको बताना होता है या फिर अपना ओपिनियन शेयर करना होता है यहाँ पे कॉल करके कि ये देसी बिहेवियर है या फिर नॉट सो देसी बिहेवियर है, यानी कि बाकी लोग भी ऐसा करते हैं। सो आज का जो बिहेवियर है वो ये है कि कई फैमिलीज में ना घर पे कुछ क्रॉकरीज कह सकते हैं, खाने पीने के बर्तन या फिर कुछ ग्लासेस जो है ये इन्होंने रखे होते हैं, ये तभी निकालने हैं जब कोई स्पेशल आएगा घर पे या फिर जब कोई गेस्ट आएगा घर पे। सो इज़ इट अ देसी बिहेवियर और इज़ इट नॉट सो देसी बिहेवियर, और क्या ये आपके घर में होता है ऐसा कि यू नो स्पेसिफिकली कुछ ऐसे बर्तन हैं जो तभी निकलेंगे जब आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं, तभी निकल रहे हैं। मतलब वाइल ग्रोइंग अप तो बहुत हुआ, मैंने ये देखा है। सो आप कॉल करके यहाँ पे बता सकते हैं 0800 00 हम पर 0800 00 4866 पर कि इज़ इट अ देसी बिहेवियर, ऐसा मतलब साउथ एशियन कम्युनिटी ज़्यादा करती है या फिर जिसे हम वेस्टर्न कहते हैं वो कंट्रीज़ भी ऐसा करती है, कि आपने कभी उनको करते देखा है, आपने कभी किया है तो वो एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि अगर कोई स्पेशल आपके घर पे आएगा वो जो बर्तन है ना वो तभी निकलने हैं, और वो कौन से बर्तन होते थे जो तभी निकलते थे जो आपके घर में जब कोई स्पेशल मेहमान आता था, वो चीज़ बर्तन को लेके भी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है कि आपके घर में कोई बैठने की जगह है तो यहाँ पे तो सिर्फ जो गेस्ट लोग जब आएंगे वही यहाँ पे बैठेंगे, आपको वहाँ पे ज़्यादा बैठना फुल टाइम पास करना ज़्यादा अलाउड नहीं होता था। सो बताइएगा यहाँ पे कॉल करके 0800 00 हम पर 0800 00 4866 पर। मैंने तो ये अभी नहीं मैंने एक्सपीरियंस किया, लेकिन वाइल ग्रोइंग अप मैंने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है कि घर पे कुछ ऐसे बर्तन होते थे, वो क्या कहते हैं यार, वो वाइट कलर के जो बर्तन होते हैं, नॉट द प्लास्टिक वन, वो जो हैवी वाले होते हैं, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, चाइनीज़ बर्तन नहीं यार, वो कौन से बर्तन होते हैं वो जो एकदम वाइट कलर के होते हैं और बहुत ही हैवी होते हैं, मतलब जैसे अगर वो गिर जाए नीचे तो बेसिकली वो टूट ही जाएंगे, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो सिर्फ गेस्ट के लिए निकलते थे। हाय गुड इवनिंग।
2: हाय सैंडी।
1: हाय
2: सत
1: श्री अकाल। क्या नाम है?
2: ओमकार जी।
1: अच्छा ओम, कैसे हैं आप?
2: फर्स्ट क्लास, आप बताओ।
1: बढ़िया बढ़िया। या वो बर्तन को क्या बोलते हैं, वो जो व्हाइट कलर के होते हैं और बहुत ही भारी होते
2: हैं,
1: चाइना बाउन? हाँ हाँ हाँ, चाइनीज बर्तन कह रही थी, फिर मेरे माइंड में आया कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, बट एनीवे।
2: और अगर वो अगर गलती से अपने हाथ में लगे तो मम्मी बोलती थी अरे तुम्हारे लिए नहीं है वो,
1: हाँ
2: मेहमान आएंगे तब निकालेंगे।
1: मतलब इमेजिन करो ना, वो बर्तन तो सिर्फ गेस्ट के लिए होते थे, और मेरे को लगता है ना कि आजकल वो टाइम शायद नहीं रह गया चाइना बाउन का, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि अभी वो खरीदते है कि नहीं,
2: वो मतलब उसमें और थोड़ा सा लग्जरी आइटम्स भी आ गए ना उसके साथ, तो मुझे हाँ, लेकिन यू नो सैंडी अब यहाँ तो हम उसी टाइप के बर्तन में, मतलब बर्तन में खाते हैं, हिंदुस्तान में अभी भी स्टील का बर्तन जो अपना हेवी होता है वो उसमें खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ तो अभी हम रेगुलरली उसमें ही खाना खाते हैं, तो वो जो ना यार वो बात नहीं, वो जो हम बोलते थे ना कि वो बात अब नहीं रही, वो टाइप हो गया एक्चुअली।
1: हाँ यहाँ पे आके मेरे को लगता है वो नहीं रह चुका है, बिकॉज यहाँ पे अपना वो गेस्ट कल्चर भी नहीं है ना इतना ज्यादा, मतलब कम होता है गेस्ट कल्चर की, कोई आया उसके लिए स्पेशल निकालो, और हम थोड़ा वो माइक्रोवेव फ्रेंडली बर्तन पे भी आ चुके हैं कि
2: परफेक्ट
1: जो माइक्रोवेव में चले जाए।
2: हाँ अभी वो जो है हो गए ना, वो जो ग्लासेस जो होते हैं ना, जो आई डोंट नो मेरी वाइफ को मालूम है, मैं तो अभी गाड़ी चला रहा हूँ, लेकिन हाँ। वो जो हो गई जिसमें अभी आइसक्रीम जो खाते हैं ना, जो स्पेशल हाँ। जो ग्लास के बर्तन होते हैं, बहुत बहुत डिसेंट उसका डिजाइन होता है एकदम ऐसे यूरोपियन, तो वो थोड़ा सा लग्जरी अभी भी हमारे घर में है,
1: वो वेरी नाइस रखा हुआ है हमने, वेरी नाइस। एक्चुअली मेरे घर पे अभी भी स्टील के बर्तन है, हम लोग स्टील के बर्तन में मतलब ग्लासेस भी है, वो इंडिया से लेके आए हुए हैं, ग्लासेस भी है, वो जो कटोरी है प्लेट है वो है,
2: करेक्ट,
1: तो वो सही रहता है। अगर मतलब
2: आपको एक बात बताऊं,
1: हाँ बताओ,
2: जैसे आपने बोला वो जो लस्सी का जो ग्लास होता है, अगर पंजाबी कल्चर के बारे में बोला जाए तो वो जो एक ग्लास होता है, जो पटियाला ग्लास बोलते हैं लस्सी वाला,
1: वो लस्सी ग्लास, हाँ पटियाला वाला अलग है, पटियाला वाला अलग है।
2: अच्छा, ओ सॉरी माय बैड।
1: देखो हर एक ड्रिंक के लिए अलग अलग ग्लास होते हैं ना।
2: अच्छा सॉरी माय बैड,
1: कोई बात नहीं,
2: नॉलेज थोड़ा सा कम है। लेकिन वो जो ग्लास जो होता है ना, थोड़ा सा येलोइश थोड़ा सा होता है, जो अभी कुछ कुछ होटल्स में,
1: या पीतल के कह रहे हो आप क्या?
2: हाँ पीतल वाले, लाइट वाले जो होते
1: हैं। हाँ हाँ हाँ, ब्रॉन्ज, वो भी सही, या वो भी मेरे को लगता है कल्चर अभी कम हो चुका है। ब्रॉन्ज के बर्तन पहले बहुत ज्यादा थे, होते थे घर पे, बट अभी वो शो पीस आइटम बन चुके हैं।
2: शो पीस आइटम,
1: सही है, नाइस यार, थैंक यू।
2: हां जी, बात करके एज यूजुअल,
1: या सेम हियर, हैव अ वेरी गुड इवनिंग,
2: एब्सोल्युटली, आपको भी, बाय बाय
1: जी, बाय बाय। सेरेमिक वेयर बोलते हैं, हाँ यार वही बोन चाइना वाला, वही सेम था, बोन चाइना भी बोल देते हैं, सेरेमिक वेयर भी बोल देते हैं, डिपेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट। एंड बिनेफो ने भी लिख के भेजा है, बोन चाइना ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक क्रिस्टल वेयर कम फॉर यूज़। अच्छा बिनेफो, नवरोज, बर्थडे, रिलीजियस सेरेमनीज के टाइम पे क्रिस्टल वेयर्स, क्या बात है, ये एक्चुअली मैं यूज़ करती है। काफ़ी लोगों का मैंने देखा है पैशन भी होता है कि अपने किचन के लिए ना डिफरेंट ऐसा ब्यूटीफुल से वेयर जो है, मतलब ग्लास वेयर जो है, क्रिस्टल वेयर, या फिर कहीं पे गए शॉपिंग करने के लिए उनको अच्छा सा कोई टी पॉट दिखाई दिया, चाहे यूज़ नहीं करना है लेकिन लेके रखना है, तो वो काफ़ी लोगों का पैशन भी मैंने देखा है कि होता है। उसके बारे में भी खैर शेयर कर सकते हैं 5599 पर।

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टो प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम। Accurate traffic.
6: Elite Bathroomware's midwinter Reno sale.
7: Showers overnight for Auckland, a low of 7 on the northern. We've got reports of delays just north of the Harbour Bridge affecting northbound traffic. It's building on the northwest and west from Waterview to Te Atatū. On the southern, it's slow northbound from Penrose Road to Green Lane and very heavy southbound East Tamaki Road to Orams Road. Southwestern is heavy from Puhunui Road to the southern, from the city to the airport, taking half an hour.
6: Elite Bathroomware's midwinter Reno sale on now finishes Sunday, Allens Road, East Tamaki.
8: Danny didn't think he needed a DVS system.
9: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
8: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
9: Nah, only one room. It was just too noisy.
8: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
10: The

5:26 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुके हैं, 20th जुलाई इट इज़। एंड इंडिया में तो आज बहुत ही बड़ा जो प्रोटेस्ट मार्च है ये एक्चुअली में होने वाली है। सो अगर आपको अपडेट नहीं है तो सोनम वांगचुक को वैसे दिल्ली पुलिस वहाँ से उठा के हॉस्पिटल में ले गई थी। एंड इट वॉज़ वेरी अजीब सा माहौल कि you know, अगर आपको वैसे भी हॉस्पिटलाइज करना है तो एक नॉर्मल वे भी होता है किसी भी पर्सन को वहाँ से स्ट्रेचर में रखने का और लेके जाने के लिए। बट जिस वे से उन्होंने वाइट शीट्स के साथ पूरा का पूरा सीन कवर कर दिया एंड सिविल यूनिफॉर्म में गए, तो अराउंड द वर्ल्ड डेफिनेटली क्वेश्चंस इस चीज़ के ऊपर ज़रूर उठ रहे हैं। बट जो स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं, स्टूडेंट्स से भी ज़्यादा जो पेरेंट्स वहाँ पे हैं जिनके बच्चों ने अपनी जान ली है बिकॉज ऑफ द पेपर लीकेज, वो हार नहीं मान रहे हैं। मैंने कल ही एक्चुअली में एक वीडियो देखी है, वन ऑफ द फादर जिसके बेटे ने अपनी जान ली है, उसने ये बोला है कि एक महीना एग्जैक्टली हुआ है उसके बच्चे को गए कल, एंड वो अभी भी घर पे बाकी रस्में नहीं कर रहा है बिकॉज जब तक ये यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता है तो अपने बच्चे के लिए घर पे रस्में करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एंड इसके अराउंड यू नो बहुत सारे डिबेट्स है, बहुत सारे डिस्कशंस है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेके मुझे लगता है किसी भी इंसान को लेके डिबेट्स डिस्कशंस अलग बात होती है। बट एक वाइडर एंगल से एक न्यूट्रल पर्सन होके आप जब बाहर से एक चीज़ को देखते हैं कि एक पेरेंट अपने बच्चे की जस्टिस के लिए वहाँ पे फाइट कर रहे हैं एंड स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो आप कुछ डिफरेंट पिक्चर वहाँ पर देखते हैं। आई विल से हैट्स ऑफ टू जेन ज़ी यार, मतलब जिस वे से ये जो जनरेशन है चेंज लेके आने की कोशिश कर रही है इन देयर एजुकेशन, इन देयर फ्यूचर, वो चीज़ बहुत सही है। मतलब हमारी जनरेशन जो या हमसे पहली जनरेशन ने डिफरेंट टाइम देखा है, एंड मिलेनियल्स तो मुझे लगता है कि बहुत ही स्टक जनरेशन है, ना इधर के ना उधर के हैं, हर चीज़ को हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। एंड काफ़ी लोग सिस्टम से तंग आके या बाकी चीज़ों से या कोई भी रीज़न से कंट्री से निकल जाते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर, बट दिस जनरेशन जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है वो वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, वो वहीं पे उनके अंदर पेट्रियोटिज्म सबसे ज़्यादा है आवल से, बिकॉज वो अपनी कंट्री को अपने देश को नहीं छोड़ना चाहते, उसी को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं कि कोई सवाल ना उठाए। एंड दिस इज़ अ रीज़न कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सब प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। मतलब सवाल डिबेट्स कितनी भी हो सकती है, बट जो रियलिटी है इट रिमेन्स ओवर देयर। सो आज जो है वहाँ पे बहुत ही बड़ी प्रोटेस्ट जो है ये होने वाली है। सो सोनम वांगचुक को तो वहाँ से ले गए, बट देन 3 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी देयर जो कि 20 डेज उनको हो चुके हैं फास्टिंग करते हुए, उनकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। 3 स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ पर हैं एंड बाकी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखा है अराउंड डिफरेंट स्टेट्स जो है वहाँ पे पहुँचे हैं, फार्मर्स वहाँ पे पहुँचे हैं बिकॉज फार्मर्स उनको सपोर्ट देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनको थोड़ा यू नो मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को वहाँ पे। सो जो मेन एंकर है, जो डिमांड है वहाँ पे स्टूडेंट्स की, वो है अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट। जो हुआ, जो लीकेज हुआ, जो पेपर लीकेज हुई है वहाँ पे, पेपर लीक वहाँ पे हुए जिसकी वजह से काफ़ी लोगों, काफ़ी बच्चे जो सालों से मेहनत कर रहे थे उनकी मेहनत पे पानी गया है। एंड इट्स नॉट अबाउट वन पेपर लीक, इट्स अबाउट द मल्टीपल पेपर लीक्स। एजुकेशन मिनिस्टर जो है धर्मेंद्र प्रधान, उसका रेजिग्नेशन उनको चाहिए, रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन सिस्टम उनको चाहिए, एंड कंपनसेशन या सपोर्ट फॉर द फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स who died by taking their own life. So, इस सब के चलते, which is about 20 students. So, yeah, ये जो मार्च है, जो protesters है, they want कि law makers जो है उनका concern सुने, because आज जो parliament है इंडिया की, वहाँ पर आज पहला session होने वाला है, monsoon session जिसे कहते हैं, और इसीलिए वो वहाँ तक जाना चाहते हैं अपनी आवाज़ को रेज़ करने के लिए, बिकॉज अभी तक वो जंतर मंतर जो कि एक डेजिग्नेटेड साइट है प्रोटेस्ट करने के लिए इन इंडिया, इन कैपिटल ऑफ इंडिया, इन दिल्ली, वहाँ अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं पहुँच पाया है, तो इसीलिए वो जा रहे हैं जहाँ पर सब ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं अपनी आवाज़ रेज़ करने के लिए कि शायद आवाज़ नहीं पहुँची है। तो ये सब हो रहा है, मैनी यंग पीपल आर आउट देयर, मैनी किड्स आर आउट देयर, आई विल से बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ पर।
एक मैंने वीडियो देखी, एक स्टॉल बना हुआ है जहाँ पे छोटे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ और वो लेटर लिख रहे हैं, दे हैंड राइटिंग अ लेटर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको अपनी बात अपना फ्यूचर समझाने के लिए. सो ऐसी चीज़ें भी वहाँ पे देखी है. दो दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे एक एडवाइजरी नोटिस जो है ये उन्होंने ऑलरेडी कल डाल दिया है कि कोई भी जो प्रोटेस्ट करने आएगा उनके ऊपर एक्शन हो सकता है. अब एक्शन क्या होगा नहीं पता है, इसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट्स है. बट या लेट्स सी, मैं इस समय कह सकती हूँ कि दुनिया भर की निगाहें, चाहे इंडियन मीडिया इतना कवर नहीं कर रहा है लेकिन दुनिया भर की जो इंडिपेंडेंट मीडिया है वो उसको डेफिनेटली कवर कर रहा है. एंड दुनिया भर की निगाहें इस समय पर जो इंडिया पे इस जनरेशन का, जेन जी का प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर नजरें हैं.

एंड बाय द वे बता दो, आज क्योंकि ऐसा दिन है तो ट्रेंड मेकर्स में एक ऐसी मूवी है आपके लिए। ये मूवी तो आज के टाइम पर रिलीज नहीं हो पाती, इस मूवी के ऊपर तो डेफिनेटली बैन हो जाता। बट इस मूवी को बनाया है जो कि CBFC के हेड है प्रसून जोशी ने। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। ये मूवी के गाने और डायलॉग्स आपके लिए प्ले होने वाले हैं बिटवीन 6 to 7।

0: 5:44 एट द मोमेंट यहाँ पे हो चुकी है। जैस्मिन सैंडलेस की आवाज में ये गाना आप यहाँ पे सुन रहे थे। वेल, लोकल न्यूज पे भी आएंगे, लेकिन उधर जो प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का शुरू हो चुका है, लाठी चार्ज भी एक्चुअली में शुरू हो चुका है। सो पुलिस इज डूइंग लाठी चार्ज फुल ऑन अभी, इसकी वीडियोज एंड काफी जगह पे मोबाइल डाटा जो है इसको शट डाउन कर दिया गया है। नाउ कमिंग बैक टू सुपर सिटी, जहाँ पे डाटा और लाइट शट डाउन बहुत ही रेयर होती है, क्रिएटिव न्यूजीलैंड यहाँ पे कट कर रहा है 1/3 ऑफ वर्कफोर्स। सो क्या हो रहा है, क्रिएटिव न्यूजीलैंड जो है ये प्रपोज कर रहे हैं एक मेजर रीस्ट्रक्चर यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ जॉब्स जो है ये रिमूव होने वाली हैं। अराउंड 1/3 ऑफ इट्स वर्कफोर्स जो है उसमें से जो कट्स है ये लगने वाले हैं, बिकॉज वो ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं एंड चेंज करना चाहते हैं कि जैसे आर्ट फंडिंग जो है ये कैसे डिलीवर होती है न्यूजीलैंड में। सो क्रिएटिव एनजेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कह रहे हैं कि इनका मॉडल जो है ये शिफ्ट होने वाला है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है फॉर आर्ट डेवलपमेंट एंड फंडिंग डिसीजन जो है टू रीजनल पार्टनर्स। सो सिंप्लीफाई करेंगे कि हाउ आर्टिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको सपोर्ट मिले, फोकस करेंगे डिफरेंट ऑपरेटिंग मॉडल्स के ऊपर एंड रिड्यूस करेंगे कॉस्ट को ड्यू टू फाइनेंशियल प्रेशर्स। काफ़ी रोल इसमें जो है ये अफेक्ट होने वाले हैं। सो हु वर्क डायरेक्टली विद आर्टिस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस एरियाज लाइक माउरी एंड पैसिफिक आर्ट, इसमें आता है म्यूजिक, थिएटर, डांस, विजुअल आर्ट, लिटरेचर, ये सब कुछ इसमें आता है। सो इसकी कुछ जॉब्स जो है ये कट डाउन होने वाली है। तकरीबन अगर देखा जाए तो वर्कफोर्स में 85% है, सो उस हिसाब से तकरीबन 23 जॉब्स विल बी कट डाउन।
1: अरे राम, माशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्या बात है, आप तशरीफ ले गए, मुलाकात हो गई आपसे।

0: Happy Head Sleep Easy Queen Beds from only $7.99. On sale now. Let's go!
1: 3, 2, 1. Trend Makers.
2: ट्रेंड मेकर्स आपके लिए शुरू हो चुका है और आज के ट्रेंड मेकर्स में ये जो मूवी है, ये मूवी आज अगर रिलीज़ होने लगती तो बहुत सारी इस मूवी के ऊपर शायद बंदिशें आ जाती एंड नहीं रिलीज़ हो पाती। आई एम टॉकिंग अबाउट रंग दे बसंती जो कि 2006 में रिलीज़ हुई थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये मूवी है, प्रसून जोशी की लिखी हुई एक्चुअली में ये मूवी है। सो रंग दे बसंती के बारे में बातें करते हैं। तो जो मूवी है, मूवी ना नरेशन है, मूवी एक नज़र से है जिसका नाम है सू। एक यंग ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है जिसके ग्रैंडफादर जो थे ये जेल वार्डन होते हैं ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। तो उनकी डायरी पढ़ने के बाद उसको फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर मूवी बनानी है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड राजगुरु के ऊपर। तो इसीलिए वो इंडिया आती है, दिल्ली में आती है एंड मुलाकात करती है कुछ लोगों से ताकि उसकी मूवी में वो कुछ पार्ट जो है ये प्ले कर सकें। सो बेसिकली ये कॉन्टेक्स्ट है मूवी का कि ये मूवी का नाम रंग दे बसंती क्यों है। इट्स आई थिंक ब्यूटीफुल मेड मूवी, जिसमें जिस वे से इस मूवी में पैरेलल स्टोरीज दिखाई गई थी वो उस समय पर भी अप्लाई होती थी और आज के टाइम पर भी अप्लाई होती है। वेल, मूवी को बनाने के बहुत सारे डिफरेंट रीजंस भी रहे। मूवी की जो स्टार कास्ट थी ये तो बहुत ही कमाल की थी। इसमें अतुल कुलकर्णी, सिद्धार्थ नारायण, आमिर खान, शर्मन जोशी, आर माधवन, इन सब ने काम किया था। एंड अतुल कुलकर्णी जो कि खुद ही बहुत ही अच्छे एक एक्टर हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू में आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ रंग दे बसंती एक बात इन्होंने शेयर की थी जो मैं आपके लिए यहाँ पर प्ले करती हूँ।
3: राकेश जी ने एक बात कही थी कि ये फिल्म अब हमारी नहीं रही, ये ऑडियंस की हो गई। और जब तक फिल्म्स ऑडियंस की नहीं हो जाती हैं तब तक वो 10 साल तक जिंदा नहीं रहती हैं। रंग दे बसंती इन अ ट्रू सेंस इज ऑडियंसेस फिल्म, बेसिकली इट बिकेम ऑडियंसेस फिल्म। ऑडियंस हैज केप्ट इट अलाइव फॉर 10 ईयर्स। इसका जब पहला स्क्रीनिंग हुआ था और जब वो ख़त्म हुआ प्रसाद लैब में, हम लोग बाहर आए तो मैंने कुनू से एक बात कही थी कि मुझे नहीं पता ये फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ कहीं भी ये फिल्म चलेगी जिस किसी भी हॉल में, तो उस हॉल के बाहर मैं सीना तान के खड़ा रह सकता हूँ, कह सकता हूँ कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूँ। आई विल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस फिल्म। वक्त कहते हैं कि चीज़ों को या तो जिंदा रखता है या तो मार देता है। वक्त को हमें, रंग दे बसंती की टीम को सिर्फ यही कहना है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
2: वेल, ये तो अतुल कुलकर्णी ने इस मूवी के बारे में बोला। और भी ढेर सारा कुछ है इस मूवी के बारे में कि इस मूवी को बनाया क्यों गया था, रियल रीज़न इस मूवी को बनाने का क्या था एंड सम अदर फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट द मूवी आपके लिए इस आवर में रहने वाला है। स्टे ट्यून्ड।

0: रंग दे बसंती ये मूवी आज ट्रेंड मेकर्स में मूवी ऑफ द डे है आपके लिए। रंग दे बसंती के बारे में बातें करते हैं तो वैसे रियल रीज़न इस मूवी को क्यों बनाया गया था राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने शेयर भी किया था, एंड ये थोड़ा सा बिट मैं आपको इसके बारे में सुनाती भी हूँ कि वाई ही फेल्ट कि ये जो मूवी है ये ऑडियंस के सामने ज़रूर आनी चाहिए। क्यों इस मूवी को मतलब आउट ऑफ ये नहीं था कि एकदम वो उठे और सोचा कि भाई इस मूवी को बनाते हैं, देयर वाज अनदर रीजन टू मेक दिस मूवी।
1: देयर वाज नो अदर वे ऑफ टेलिंग दिस स्टोरी,
2: राइट।
1: मतलब दिस केम अबाउट एज द बेस्ट वे। इट्स नॉट दैट ओ लेट्स डू दिस, ओ इट्स मेड सच अ साउंडिंग सो गुड। इट सी देयर आर two lines in the film. One of the armed revolution of India, which started with Ram Prasad Bismillah Shahullah Khan. They passed the baton to Chandrasekhar Azad, who then joined strengths with Bhagat Singh, Rajguru, Sukhdev, Durga Bhabhi. So always used to make me wonder what made Bhagat Singh put down his pen. He was a journo,
2: yeah,
1: and pick up a gun. And all these are youngsters, college-going boys. Average age they walked to the gallows was 23 and a half. So there's a storyline going on. There's another storyline going on in 2006, which is Delhi University boys, their aspirations.
2: Cynical boys.
1: Yeah. Like us.
2: Yeah.
1: Not just cynical. They there was nothing wrong in going to America or...
2: Yeah.
1: Or escaping life, yeah. It was just like, and I based a lot of them on my clothes.
0: अगर देखा जाए तो बहुत सारी similarities आज के time पर भी है जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा बोल रहे हैं। इसमें इन्होंने बताया कि you know जो real reason था, इन्होंने एक informal survey किया था with young people in Delhi and Mumbai, asking them if they recognize the faces of Indian prominent freedom fighters, and he was shocked to find out कि काफी लोग जो है काफ़ी नाम काफ़ी लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं। सो उनको रियलाइजेशन हुआ कि जो ट्रू पेट्रियटिज्म है उन लोगों के लिए जिन्होंने कंट्री के लिए फ़ाइट किया, वो तो कहीं शिफ्ट ही होता जा रहा है। एंड ही स्पेंड रफली 7 years रिसर्चिंग एंड डिवेलपिंग द स्क्रिप्ट। ही ओरिजिनली टॉयड द आइडियाज़ अबाउट गैराज वर्कर्स, स्ट्रेट हिस्टोरिकल बायोपिक, बट इवेंचुअली इमर्ज्ड देम इनटू द ब्रिज बिल्डिंग नरेटिव, जहाँ पे स्टूडेंट सीख रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एंड इवेंचुअली अपने लाइफ में उनकी थ्योरीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो वहाँ से ये जो मूवी थी ये बनी। तो मूवी का एक डायलॉग सुनते हैं, देन मूवी का एक गाना सुनते हैं। डायलॉग जबसू जो कि एक फिल्म मेकर है, उसको रियलाइज़ होता है कि मुझे किसको इस मूवी में कास्ट करना है।
3: भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, दुर्गा भाभी, अशफाक उल्लाह खान जैसे सब मेरे आगे बैठे थे।
4: कहाँ हो गई थी आप?
3: तुम लोग मेरी फिल्म में एक्टिंग करोगे?
4: या
3: तुम लोग मेरी फिल्म में एक्टिंग करोगे? यू गाइस आर परफेक्ट।
5: तुम लोग हंस रहे हो भाई, मैं इसकी फिल्म का हीरो हूँ। हाँ, एक्टिंग में तो एकदम चैंपियन है। हाँ, दिन भर नाटक जो करते रहते
3: हैं। I'm serious, okay? तुम चारों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान और राजगुरु के रोल के लिए अच्छे रहोगे और सानिया होगी मेरी दुर्गा भाभी।
6: ये तो हिंदी बोलती है यार।
4: अरे यार छोड़ो, ये देशभक्ति भक्ति की बातें बहुत बोरिंग लगती है।
3: बोरिंग? इन लोगों ने जान दी थी आजादी के लिए, तुम्हारे देश की।
7: कैसी आजादी? सुख हालत देखिए इस देश की। कोई नहीं मानता है इस बकवास को।
5: एक मिनट करन, मैं मानता हूँ। मुझे विश्वास है इस देश पर, देशभक्ति पर, वरना मैं अपने देश के लिए क्यों लड़ता।
7: I don't know.

0: हम भी यहाँ।
1: Let's go! 3, 2, 1. Trend Makers.
2: 80s के रेट्रो गाने।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
2: When customers are harder to win, visibility matters more than ever. If your signage is tired, unclear, or outdated, you're making it easy for people to walk on by. Speedy Signs helps businesses clean up their look with beautiful, professional signage that demands attention. From illuminated storefronts to full fleet graphics, they make sure people can see you, trust you, and remember you. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz and grow your business faster.
3: Discover the magic at Go Bananas Child Care, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Child Care is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Child Care Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
1: Available at selected branches. T's and C's apply.
4: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो
5: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स नोटरी पब्लिक बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स
6: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी लीजेस सब डिविजन इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाएं, रिश्तों को और करीब लाएं। कशिश प्रीमियम बासमती राइस ईट बेटर लिव बेटर फ्रॉम मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन टू www.kashishfood.co.nz अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स

0: easy queen beds from only $7.99 on sale now.
1: Is the movie of the day aaj trend makers mein. Movie ke baare mein baat karte hain to Aamir Khan pehli choice nahi the is movie ke. Shahrukh Khan, Hrithik Roshan, Arjun Rampal इन्हें पहले select किया गया था but then Aamir Khan को जब सेलेक्ट किया ही वॉज बिट हेजिडेंट दो बिकॉज ही वॉज इन हिज अर्लीज 40s एंड 25 साल के कॉलेज स्टूडेंट का रोल करना उन्हें सही नहीं लग रहा था देन ही लॉस्ट 10 kgs एंड देन उनको एक्चुअली में सही लगा ये रोल करने के लिए ऑल्सो ये जो मूवी है इस मूवी का रियल लाइफ इम्पैक्ट भी हुआ जो मूवी की कोर थीम थी कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो है ये कैंडल लाइट विजिल करते हैं सो उस समय पर शॉर्टली आफ्टर द रिलीज जो नेशन वाइड पब्लिक थी एंड जो मीडिया आउटरेज था ओवर जेसिका लाल मर्डर केस हैवी इंस्पिरेशन था फ्रॉम द इमोशनल फ्रेमवर्क ऑफ रंग दे बसंती जो सिटीजन्स थे इस मूवी से इंस्पायर्ड होके एक्चुअल जस्टिस के लिए आगे गए थे स्ट्रीट पे गए थे उस समय पर कॉन्ट्रोवर्सीज भी काफ़ी सारी हुई थी इसको लेके लेकिन फिलहाल इस मूवी का एक डायलॉग सुनते हैं जो कि एक्चुअली में काफ़ी फेमस हुआ था तो ये डायलॉग सुनते हैं देन इस मूवी का आपके लिए गाना भी है
2: हम सबके पास कुछ ना कुछ है बस पहचान ही की देर है
3: हाँ जैसे हमारी क्रांतिकारी उनके लिए देश की आजादी जान से ज्यादा प्यारी थी
4: दुनिया में जानवान देने लायक कुछ नहीं है हमें कुछ नहीं है
2: करेक्ट सिवाय उमराव जाके बस एक बार रिपीट
5: बस यार बहुत हो गया
2: ठीक है मेरी माँ करण दूर से कमेंट्री देना बहुत आसान होता है दूसरों को गालियां देना और भी आसान अगर तुम्हें इतना प्रॉब्लम है तो तुम बदलो ना इस देश को ये तुम्हारा भी देश है पॉलिटिक्स ज्वाइन करो पुलिस या आईएएस में भर्ती हो जाओ बदलो चीजों को लेकिन तुम नहीं करोगे और मैं बताऊं क्यों क्योंकि घर की सफाई में हाथ गंदे कौन करे है? अगर इतनी हिम्मत है तो आगे बढ़ो ना बदलो इस देश का फ्यूचर
6: कुछ नहीं बदलेगा यार ऐसे ही होता है ऐसे ही होता रहेगा इधर तुम शुरुआत करो वहां तुम्हारा दी एंड हो जाएगा
2: करेक्ट बस अलग होगा तो तुम्हारा दी एंड द स्टाइल
5: टीचर रिलैक्स
2: ओए आई एम रिलैक्स यार मैंने चढ़ी थोड़ी है उछले सू से क्यों सू मैं पीती है देखा डायरेक्टर द वर्ड फाइनल कनेक्ट
1: सो डायलॉग्स लगता है कि आज के दिन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है एनीवे सो इस मूवी का ये गाना सुनेगा और हर टाइम अगर आप इस मूवी को भूल चुके हैं तो एक बार फिर से इस मूवी को रिविजिट करने के लिए

मूवी ऑफ द डे आज रंग दे बसंती। इस मूवी के डायलॉग्स एंड कुछ गाने आप यहाँ पे सुन रहे हैं। इस मूवी में अतुल कुलकर्णी का जो रोल था लक्ष्मण का था, वो लक्ष्मण का रोल जो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज लक्ष्मण का जो उसमें करेक्टर दिखाया गया था वो एक ये करेक्टर था जिसको किसी और रिलीजन के साथ मिक्सअप नहीं होना है, सिर्फ उसको अपने आप को ही मानना है। लेकिन जब वो बिस्मिल का रोल करता है फ्रीडम फाइटर का इस मूवी की कहानी में, तो उस समय पे उसको बहुत सारी चीज़ों की रियलाइजेशन होती है एंड देन वो एक प्राउड इंडियन बनता है। इस मूवी में ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो थे ये बहुत अच्छे वे से दिखाए गए थे। मूवी को लेके ऑस्कर एंड बैफ्टा रिकॉग्निशन भी मिली थी। इट वाज अ मैसिव कमर्शियल सक्सेस एंड बिकेम इंडियाज ऑफिशियल एंट्री टू द एकेडमी अवार्ड्स। सो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में इस मूवी को अवार्ड भी हुआ था, इसमें नॉमिनेशन भी हुई थी। इसका जो साउंड ट्रैक था वो तो मास्टरपीस था। A.R. रहमान स्पेंट नियरली 3 years क्राफ्टिंग द म्यूजिक फॉर दिस मूवी, मिक्सिंग रॉक, सूफी, फोक एलिमेंट्स, अनफॉरगेटेबल कल्चर एंथम जो थे वो इन्होंने इस मूवी के लिए बनाए, जैसे कि ये गाना जो अभी आप सुनने वाले हैं।

simultaneously एक हिंदी वर्जन और एक इंग्लिश वर्जन जो कि एम करेगा इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर. सो द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द टाइटल पेंटेड येलो वॉज मेरा रंग दे बसंती चोला, मतलब इसका वो लिटरल ट्रांसलेशन था पेंटेड येलो. वो उन्होंने इंग्लिश टाइटल बनाया था एंड उस समय पर उन्होंने सोचा कि इस वे से इस मूवी को बनाएंगे, बट देन ड्यूअल लैंग्वेज प्लान जो था ये इवेंचुअली स्क्रैप हो गया था, देन सिर्फ रंग दे बसंती बना. इस मूवी में साइकोलॉजिकल कैमरा ट्रिक्स भी यूज़ किए गए. मेहरा एंड उनके जो सिनेमाटोग्राफर थे विनोद प्रधान, दे यूज अ सटल साइकोलॉजिकल ट्रिक विद देयर लेंस टू मिरर द करेक्टर्स मेंटल स्टेट. जैसे कि जो फर्स्ट थॉट एंगल एक होता है जहाँ पे ग्रुप को एक साथ दिखाते हैं, एंड देन एम्फोसाइज उन्होंने किया टू देयर ओपन केयर फ्री कॉलेज लाइफ एंड द स्पेस अराउंड देम. देन मिडल थर्ड एक एंगल है जहाँ पे उन्होंने स्टोरी को टाइटन किया. देन फाइनल शॉट विच ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ऑन पोर्ट्रेट टेलीफोटो लेंसेज के ऊपर किया, जहाँ पे उन्होंने कैरेक्टर्स को आइसोलेट किया विजुअली और कैप्चर किए उनके माउंटिंग पैरानोए, उनके जो ट्रेजिक फेट है एक्चुअली में उनको उन्होंने किया. जो क्लाइमेक्स है इस मूवी का, इट वॉज एक्चुअली अ लास्ट मिनट. इवन आफ्टर एडिटिंग द फाइनल कट इन दिसंबर फॉर अ जैन रिलीज, मेहरा को लगा कि जो एंडिंग है वो एक यूनिवर्सल इमोशन जो पंक्चुएशन मार्क है ना उसको लैक कर रही है. 48 आवर के रश में ही सेंट कैमरा क्रूज टू 7 to 8 मेजर इंडियन सिटीज, दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता और भी बहुत सारे. वहाँ पे रियल कॉलेज स्टूडेंट्स का जो रिएक्शन था टू द रेडियो ब्रॉडकास्ट वो उन्होंने रिकॉर्ड किया, जिससे मूवी जो थी एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मॉन्टाज में लगी एंड में क्लाइमेक्स में. सो आमिर खान वॉज गेटिंग मैरिड द सेम वीकेंड एंड ही टोल्ड मेहरा, डोंट कम टू माई वेडिंग, स्टे एंड फिनिश द मूवी. सो इसीलिए 48 आवर के रश में वो जो दिखाते हैं ना एंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स माइक पे बोल रहे हैं, दैट वॉज 48 आवर के रश में जो उन्होंने शूटिंग की थी इस मूवी को लेकर.

0: रंग दे बसंती मूवी के डायलॉग्स एंड गाने आज आप यहाँ पे सुन रहे हैं ट्रेंड मेकर्स में। वेल, मूवी का जो क्लाइमेक्स सीन था रेडियो स्टेशन का, ये भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। एक्चुअली में इसके डायलॉग्स आज भी काफी ज्यादा ट्रेंड करते हैं।
1: मेरा नाम दलजीत सिंह है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की।
0: ये डायलॉग बहुत सारी जगह पे एक्चुअली में आज भी यूज किया जाता है। रंग दे बसंती ये मूवी एक ऐसी बनाई राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, जो उन्हें उस समय पर नहीं लगा कि ये मूवी क्लासिक बनेगी, सालों बाद भी इस मूवी को याद रखा जाएगा, डिफरेंट सिनेरियोज़ में इस मूवी को रिलेट किया जाएगा। उन्होंने उस समय पर ये सब कुछ नहीं सोचा था, बट यस, ये सब कुछ हुआ इस मूवी के साथ। आज भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में इस मूवी के बारे में बातें की जाती है। आज इंडिया में जितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेके भी इस मूवी को बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिलेट किया जा रहा है। एंड दैट्स हाउ आई गॉट दिस मूवी फॉर यू टुडे, बिकॉज इट वाज एवरीवेयर ऑन सोशल मीडिया कि दिस इज़ टुडेज। उस समय रंग दे बसंती के ये करेक्टर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने आवाज़ पहुँचाने के लिए डिफरेंट मीडियम यूज़ किया, और आज भी सेम चीज़ हो रही है। इसी नोट पे आपको यहाँ पे टाटा बाय बाय कहती हूँ। जाने से पहले आई विल जस्ट से वन थिंग कि कई बार क्या होता है कि हमारी जो परसेप्शंस है चीज़ों को लेके, हम एक चीज़ हमने हमेशा से सुनी होती है, उस वे से हम परसेप्शन जो है लेके चलते हैं कि ये गलत है, ये सही है, दिस इज़ रॉन्ग दिस इज़ राइट, यही लेके चलते हैं। एंड मे बी उसको वाइडर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी रिसेंट लास्ट ईयर में कितनी वॉर हुई है, इस साल में वॉर जो हुई है शुरू से लेके कितना नुकसान बहुत सारी कंट्रीज़ में हुआ है, उसके बारे में भी हम खुल के बात करते हैं। एंड कभी कभी जिस जगह से हम कनेक्टेड होते हैं वहाँ के ग्रे शेड के बारे में बात करने से हम पता नहीं क्यों कई बार हेजिटेट कर जाते हैं। हम कोई किसी को जज नहीं कर रहे हैं, इट्स ओके, अपनी फैमिली में भी जो होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे आपस में बात करते हैं, तो आपस में ही एक फैमिली जब आपस में डिस्कस करती है तभी वो एक सोल्यूशन लेके आती है, उसके बारे में और प्रोग्रेसिव होती है। एंड जब एक कंट्री से लोग होते हैं, जब आपस में डिस्कशन ही नहीं करेंगे, ग्रे शेड को कारपेट के नीचे नहीं करेंगे, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, तो कभी भी प्रोग्रेसिव वे से काम नहीं हो पाएगा। सो कभी कभी वो चीज़ों को थोड़ा बड़े होके सोचना चाहिए, चीज़ों को डिफरेंट वे से भी सोचना चाहिए। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप समझते हैं। एनीवे, इसी नोट पे आपको टाटा बाय बाय कहती हूँ, और मेरी आपसे कल मुलाकात होने वाली है 3 बजे कॉफ़ी ब्रेक में। बाय।

0: खींचे खींचे हुए रहते हो। जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है, हमें भुला दो, हमें भुला दो, मगर ये तो याद ही होगा, नई सड़क पे पुराना मकान किसका है।
1: Happy hour on hum. Keep calm because Punjabi swag is on.
2: Hey, maajiye, mubatti hai. Pehle dinon tere utte akh rakhiye, tere bina area ch aur kudi da na dil mangiye.

0: dir.
1: Streaming on Rover.
2: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
3: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर लें।
2: घर बेचने से पहले NZPMI के पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
3: पर डेवलपमेंट के पैसे
2: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4 NZPMI.

0: Happy Hour on Hum.
1: पतंग संग उड़ गया बचपन, झनक झनक मन, डगर सुहानी रे, लड़कपन आया अब तो कसत मसके क्या मस्तानी रे, अरे क्या हाय जवानी की होती है यही निशानी रे।

0: बेसन, अरे मथुरा के पेड़े, रेवड़ी में रखवाली चाट तरी बांकी लाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाऊं।

0: भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: First impressions happen before customers walk through the door. If your signage looks faded or hard to read, people assume more than you think. Speedy Signs creates sharp, professional shopfront signage that makes your business look open, confident, and ready for business. Sometimes the quickest way to lift foot traffic is simply to upgrade your signage. Call 0800 Speedy or visit speedysigns.co.nz today and grow your business faster. That's 0800 Speedy or speedysigns.co.nz.
2: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज़ द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एंडवेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस provider.
3: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
4: अच्छा
3: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
4: मिसेस सिंह
5: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
6: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 0928130 और विजिट focuskitchens.co.in
7: Right now, your team could be winning. Sprinting, pitching, kicking, sin-binning. And you need to know about it.
8: Join the Tribe!
7: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and
8: Join the Tribe!
9: Time check. Hum News, brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
10: Good evening to you with the latest at 8. I'm Jeff Ryan. Prime Minister Christopher Luxon says intervening with $60 million to head off the potential closure of the Golden Bay cement factory in Northland is a pragmatic move to keep cement production in New Zealand. Fletcher Building says it would likely have been forced to close the plant by 2030. Energy advocates hope New Zealand First's election promise will help rebuild the sector. John Carnegie from Energy Resources Aotearoa says regulatory and commercial conditions have been harsh since the exploration ban. And Andy Burnham will become Britain's seventh Prime Minister in a decade overnight, recent history suggesting he'll have little time to make his mark. In sport, Kiwi Ryan Fox coming to grips with becoming a major golf champion, winning the Open Championship by a shot. It's a dream come true, a dream he didn't really think possible until the last couple of years. And in football updates brought to you by Hisense, is the World Cup final the end of the international line for superstar Lionel Messi? Argentina didn't have a single shot on goal in the first 90 minutes, the first time any team has failed to do so in a World Cup final.
11: Sports News.
9: Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
12: World's best, hamari koi branch nahi hai.
9: Hum. Night Cafe on Hum.
12: Aagya.
9: You're listening to Avineet.
13: मंडे 28 जुलाई का ये सफर है, मैं हूँ अभी आपके साथ में, जबकि ये है नाइट कैफे। लेकर आया हूँ अभी से लेकर 12 तक आपके साथ में रहूँगा, और टाइम टाइम की ही बात है क्योंकि आज सुबह सुबह आप निकल पड़े थे घर से बिल्कुल अपने नौकरी के लिए, और अब आप घर पर हो और समय ही है जो आपको एक बार फिर सुकून से नाइट कैफे सुनने के लिए अलाउ करता है। तो टाइम को लेकर, समय को लेकर बस इतना ही कहना है, टाइम इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि जो इंसान टाइम का सही इस्तेमाल करता है वही सफल बन जाता है। इसी के साथ मैं अभी आपका स्वागत करता हूँ इनटू नाइट कैफे। लेकर आया हूँ ढेर सारे ऐसे प्यारे प्यारे गीत जो आपके साथ में शेयर करूँगा। कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, गपशप भी है, जो बारी बारी से आपके साथ में करता रहूँगा। याद रहे यह नाइट कैफे मंडे का प्रोग्राम है, नो लॉजिक मंडे। ऐसे में बिल्कुल हरा भरा प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे, साथ मिलकर इसे इंजॉय करेंगे।

0: स्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: दिस टाइम आई वांट फुल फ्रीडम

0: हम पर यह है नाइट कैफे, और आपको बता दूं द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान, द मैजिकल राहत फतेह अली खान ओकलैंड आ रहे हैं आपके लिए परफॉर्म करने के लिए, जहां पर ये मैजिक क्रिएट करेंगे ऑन स्टेज। और ये सभी कुछ मौका आपके पास में रहेगा जहां पर आप इनके गाए हुए कव्वालियों को साथ में सूफी गानों को सुन सकेंगे। एक ऐसी आवाज़ जो जब भी निकलती है आपके दिल को छू जाती है। तो इन्हें देखने का पूरा मौका आपके पास में है एट द ट्रस्ट अरीना ओकलैंड, 25 जुलाई इसी वीक ये परफॉर्म करने वाले हैं। इनको ला रहे हैं जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस और साथ में शेजादा प्रोडक्शन। और टिकट्स के लिए आप dryticketsdotcom जाकर अपने टिकट्स ले सकते हैं।
1: नाइट कैफे ऑन हम, द बीट ऑफ बॉलीवुड,
2: वर्ल्ड्स बेस्ट, हमारी गुड ब्रांड्स भी
1: है। नाइट कैफे ऑन हम,
0: नाइट कैफे में यह है नो लॉजिक मंडे, और नो लॉजिक मंडे लेकर मैं हूं अभी आपके साथ में। जबकि आज सुबह सुबह वर्ल्ड कप फिक्स्चर का जो फाइनल है ये हुआ, ऐसे में आपको बता दें कुछ नो लॉजिक न्यूज़। जी हां, क्योंकि पेरू में ऐसा एक रिपोर्ट सामने आया है कि जहां पर लोग काफ़ी ऐसे ऐसे नामों से प्रभावित हुए हैं, इंस्पायर्ड हुए, जो वर्ल्ड कप के कुछ स्टार प्लेयर्स हैं इनसे। तो यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशंस हुई हैं अभी हाल ही में, तो काफ़ी न्यूबॉर्न बेबी का नाम हालैंड दिया गया है, जो कि इंस्पायर्ड है एलिंग हालैंड से। तो है ना ये कुछ वियर्ड न्यूज़, जहाँ पर कुछ पेरू के सिविल सर्विस के अधिकारी ने बताया कि कुछ लगभग 30,000 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, जहाँ पर ब्राज़ील के नेमार, साथ में पोर्टुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और साथ में अर्जेंटीना के लायनल मेसी के नाम पर ये अपने अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं। अजीब दुनिया और अजीब लोग।

0: FM.
1: Unfiltered with Sandy and Rusby. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका

0: You're listening to Avineet.
1: नाइट कैफे में घड़ी इशारा कर रही है कि रात के इस जस्ट आफ्टर नाइन, ऐसे में आपका स्वागत करते हैं इस हवा पर और मंडे नो लॉजिक का जो सेगमेंट है लेकर आए हुए हैं। आपको बता दें कि कम्युनिटी न्यूज़ में न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहा है टू द फोर्थ न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट जो रहेगा 22nd और 23rd अगस्त को एट बेकनहेड स्काउट्स हॉल। और जितने भी खिलाड़ी हैं, आपकी इंटरेस्ट है इस गेम में, स्किल लेवल कोई भी हो, कहीं किसी भी जगह हो, आपको इनक्रेज किया जा रहा है कि आप पार्टिसिपेट करें। और रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए आप न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन फेसबुक पेज पर जा सकते हैं या फिर NZCI के प्रेसिडेंट पंकज मोंगा को 021-090-850-67 पर कॉल कर सकते हैं।

ऑन दी एयरवेव्स ऑफ हम आप सुन रहे हैं नाइट कैफे और मैं हूं अभी आपका साथी, जबकि ये है नो लॉजिक मंडे। और इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में आपके साथ में अक्सर वियर्ड एंड स्ट्रेंज न्यूज़ आपके साथ में शेयर करते रहते हैं। आप इस बात को मानेंगे कि जो थंडरस्टॉर्म्स है आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है अपने टर्म से, किसी भी जगह पर यह आ सकती है। लेकिन एक ऐसी थंडरस्टॉर्म है जिसको नाम दिया गया है हेक्टर द कॉन्वेक्टर, क्योंकि हर शाम 3 बजे बिल्कुल एक अपॉइंटमेंट की तरह ये आ जाता है ऑन टीवी आइलैंड्स। टीवी आइलैंड्स एक ऐसी जगह है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, ऑफशोर एक आइलैंड है, जहां पर हेक्टर हर शाम 3 बजे ठीक पहुँच जाता है। और सितंबर से लेकर मार्च तक हेक्टर अराइव्स एट 3 PM बिल्कुल गरजते हुए। और ये इतना फेमिलियर साइट है कि इसको अब एक नाम भी दे दिया गया है, हेक्टर द कॉन्वेक्टर। तो जहाँ पर अनप्रेडिक्टेबल होती है थंडरस्टॉर्म्स, वहीं पर हेक्टर बिल्कुल टाइम से सितंबर थ्रू टू मार्च शाम को 3 बजे पहुँच जाता है।

0: Non-stop Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits. The Breakfast Show with VJ and Pooja.
2: बुरी प्लानिंग से आए हैं. शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे.
3: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर.
4: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप. West side है ना, west side of Auckland है ये. I have lots of fun basically with the cold weather.
3: क्या? कौन है?
4: Hunua और Waitakere.
3: अच्छा, Hunua west में.
4: किधर है Hunua?
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja.

0: Living.
1: Weekdays, 6 to 10 a.m.
2: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
3: क्यों, क्या हुआ?
2: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424.
4: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant, and so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in

0: अब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो।
1: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
2: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
3: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
4: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
3: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: हम
3: नाइट कैफे ऑन हम।
5: हम पर आप सुन रहे हैं नाइट कैफे विद अवि और यह है नो लॉजिक मंडे 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं। आपको बता दे राज गढ़वी आ रहे हैं लाइव इन ओकलैंड और ये आकर परफॉर्म करने वाले हैं आपके लिए गरबा नाइट, जहां पर आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। आप डेट्स मार्क कर लीजिए, 1st of August को ये महात्मा गांधी सेंटर पर परफॉर्म करेंगे, जिसके लिए टिकट्स बिल्कुल हॉट केक की तरह बिक रहे हैं। अगर जो अभी तक आपने अपने टिकट्स नहीं लिए हैं, जल्द से जल्द events.tickets.co.nz से अपने टिकट्स को परचेस कर लीजिए। और जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए स्वप्निल को 02243947360224394736 पर आप कॉल कर सकते हैं। और ये सभी कुछ है आपके पास में मौका, जबकि एक और एक प्रमोशन चल रहा है विनर डबल पास हमारे साथियों के साथ में। जब भी आप लेटेस्ट RG अपने नाम के साथ में 5599 पर टेक्स्ट करेंगे, आपके नाम को एक ड्रॉ में शामिल किया जाएगा, जहां पर डबल पास आपके हाथ लग सकते हैं।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है नाइट कैफे और लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वियर्ड न्यूज लेकिन बिल्कुल फैक्चुअल। एक ऑस्ट्रेलियन मैन ने एक ऑस्ट्रेलियन पर्सन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया फॉर द लाउडेस्ट एवर शाउट। जोसेफ मैकग्रेल बेटअप एक एयर कंडीशनिंग क्लीनर है और इन्होंने येल किया है शब्द नाउ नाउ को इन्होंने येल किया है एट एन ईयर स्प्लिटिंग 122.4 डेसिबल्स और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अगर जो इसको कंपेयर करे इसके वॉल्यूम को जितने डेसिबल्स पे इन्होंने येल किया है तो इट्स अबाउट द सेम एज अ थंडरस्टॉर्म और या फिर एक चेनसो और या फिर जैसे कि एक ड्रिल आवाज़ करता है। ये जो 58 ईयर ओल्ड ये जोसेफ मैकग्रेल बेटअप है इन्होंने बताया कि इनको कुछ रिकॉर्ड ब्रेक करने में 7 अटेम्प्ट्स लगे लेकिन उसके बाद में इनकी आवाज़ गई थी फॉर अ फ्यू डेज। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं कि कुछ अलग अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश करते रहते हैं।

0: मैं हूं अभी आपके साथ में ऑन नाइट कैफे और एक कम्युनिटी न्यूज है जिसे आपके साथ में शेयर कर लेते हैं। फिजी गिरमिट फाउंडेशन एनजेड इन एसोसिएशन विद एन्स फ्यूनरल होम एंड ऑन साइट क्रीमेशंस आपके लिए लेकर आए हैं हेल्थ वेलबींग एक्सपो 2026। ये बिल्कुल फ्री है, फ्री एंट्री है यहाँ पर सभी के लिए और ये रहेगी संडे 26 जुलाई को, यानी कि इसी संडे को आप जाकर A1 इवेंट सेंटर में जो कि सिचुएटेड है 731 ग्रेट साथ रोड पापाटोई में, यहाँ पर जाकर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक इस वेलबींग एक्सपो में पार्ट ले सकते हैं, जहां पर आपके लिए फ्री स्क्रीनिंग रहेगी, आपके ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, साथ में किडनी फंक्शन और साथ में आई टेस्ट को किया जाएगा और इसके साथ में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कैंसर स्क्रीनिंग के लिए। और उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल लर्निंग सिखाया जाएगा, CPR, ये सभी कुछ आपके लिए है। और याद रहे दिन और तारीख संडे 26 जुलाई 10 AM से लेकर 3 PM तक आपको सिर्फ जाना होगा A1 इवेंट सेंटर 731 ग्रेट साथ रोड पापाटोई और यहां जाकर आप इस प्रोग्राम में अपने लिए कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं।
1: हाँ

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: SF Rovapa.
1: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
2: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki. All together Auckland.
3: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.
4: The beat of Bollywood.
5: World's best, hamari koi branch nahi hai.
4: Night Cafe.
6: हम पर आप सुन रहे हैं नाइट कैफ़े और नाइट कैफ़े में मैं हूं आपका साथी अभी। लाइफ में कभी कभी हमको एक सहारे की ज़रूरत होती है या फिर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। जबकि आप सुन सकते हैं शनि लाल को और ये बातें कर रहे हैं LGBTQ और उनके राइट्स के बारे में। ये सभी कुछ इन्होंने डिस्कस किया है ओपनली सेंडी और रुजबे के साथ में उनके नए पॉडकास्ट अनफिल्टर्ड में, और इसके बारे में और भी जानकारी उन्होंने दी है कि कैसे उनको टारगेट किया जाता है और किस कॉन्फिडेंस की तरह वो आज भी आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं कम्युनिटी में, और कैसे और लोगों के लिए ये एक सिंबल ऑफ एनकरेजमेंट बन रहे हैं। तो ये सभी कुछ जानने के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट करना होगा ड्राइव ऑन 5599। यहाँ से आपको पूरा का पूरा ऑडियो मिलेगा, जिसके बाद में आप शनील की ज़ुबानी आप सुन सकेंगे, उनकी आप बीती। ये सभी कुछ आप भेज सकते हैं ड्राइव लिखकर ऑन 5599। इसके अलावा अगर जो आप ब्रेकफास्ट कैचअप मिस कर देते हैं तो BF लिखकर 5599 पर भेजिए। और इसके साथ में केतन का जो नया गाना है सफाया 2.0, इसको भी आप प्यार दीजिएगा और जाकर चेकआउट कीजिएगा YouTube पर, जहां पर बहुत ही अच्छी तरीके से केतन ने म्यूज़िक वीडियो को शूट किया है। इन्होंने गाया तो बहुत अच्छा ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक बढ़िया म्यूज़िक वीडियो भी आपके साथ में क्रिएट किया है। जबकि गाने के लिरिक्स लिखे हैं मनप्रीत ने, जिन्होंने वायरल ट्रैक पपटोई को बनाया था। इसी तरह से केतन के साथ में मिलकर कोलैब करके इन्होंने ये गीत को तैयार किया है, लिखा है, और केतन ने इस गीत को अपनी आवाज़ दी है। न्यूजीलैंड की ब्यूटी को कैप्चर करते हुए एक ऐसा गाना जो बिल्कुल जस्टिफाई करेगा कि न्यूजीलैंड कितना खूबसूरत है, और साथ में केतन की आवाज़ भी कितनी अच्छी और तारीफ करने वाली है।

0: नाइट कैफे में अभी का साथ है एंड इट्स अबाउट टू बी 11। ऐसे में आपको बता दे कि आप रोवा पर हमें सुनते हैं और 104.2 एफएम पर हमें सुनते हैं, लेकिन एक और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जाकर हमें चेकआउट कर सकते हैं। हम 104.2 एफएम का फेसबुक पेज, इससे भी आप जुड़े रहे क्योंकि यहां पर भी आपके लिए इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अपडेट हम करते रहते हैं।
1: पैसों की झिलमिल झिलमिल गड़बड़ गड़बड़।

0: Coffee on Hum. You're listening to Avineet.
1: नाइट कैफे नो लॉजिक मंडे का ये फाइनल आवा है. अभी का साथ है 104.2 एफएम, साथ में रोवा पर आप हमें सुन रहे हैं. इस फाइनल आवा में भी आपका स्वागत करते हैं और जैसा कि आपने 8 बजे से हमारा साथ दिया है, इसी तरह से 12 तक भी आपका साथ बना रहे, बस यही चाहेंगे, यही गुजारिश रहेगी. इस आवा पर भी एक से एक बढ़कर एक गीत आपके लिए प्रेजेंट करते रहेंगे, साथ देते रहिएगा.

हम पर यह है नाइट कैफे, और नाइट कैफे में आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से आपको रामलीला के बारे में बताते आ रहे हैं। कुछ और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे हाथ लगी है, किवी फिन इन एसोसिएशन विद न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट और हम मीडिया पार्टनर के साथ में मिलकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं रामलीला द सेलिब्रेशन ऑफ गुड ओवर एविल। और ऐसे में एक टाइमलेस स्टोरी जो है आप इसे देख सकते हैं, ड्रामेटाइज किए हुए हैं, और 8 अगस्त को आप जाकर वैदिक सेंटा में 32 ग्लेस्को एवेन्यू पपटोई में इस ड्रामा को आप देख सकते हैं, जिसे बड़े प्यार से बनाया गया है। रामलीला को प्रेजेंट किया जा रहा है। टिकट प्राइसेस है सिर्फ $10 पर पर्सन और बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। अंडर 5 अगर जो आपके बच्चे हैं तो उनके लिए बिल्कुल फ्री है, और अगर जो स्टॉल्स के लिए आप और जानकारी चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। स्टॉल्स के लिए आप कॉल करें मास्टर अशोक को 0211795459 पर, और ऐसा करके आप इस इवनिंग में जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बच्चों को एक नए तरीके से आप रामलीला के साथ में रामायण के लिए इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ श्री राम मंदिर जो कि 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन में है, आपके लिए लेकर आई है अखंड रामायण पाठ जो रहेगा 1st and 2nd अगस्त को। सैटरडे 1st अगस्त को सुबह 7 बजे रोड पूजा से ये शुरुआत होगी और साथ में ये समाप्त होगी संडे 10 AM रामायण पाठ के साथ में, और यहाँ पर हवन आरती भी रहेगी, महाप्रसाद थ्रू आउट द प्रोग्राम दिया जाएगा। और जानकारी के लिए 09836464 पर आप कॉल कर सकते हैं।

0: Cafe on Hum. March 2027. Ek kahani jo badlegi aapki zindagi.
1: Ruzbe, tickets book ho gaye.
2: To phir der kis baat ki? Bali bula raha hai.
1: Sunset, beach club aur thoda sa sukoon bhi.
2: Lekin kahani yahi khatam nahi hoti.
1: Fatiha.
2: बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी
3: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड
4: हेलो एवरीबॉडी
0: दो शहर एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा
5: थोड़ा घूमे आओ अच्छा लगेगा आपको मन बहल जाएगा आपका भी
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टोल प्राइस क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे ओनली ऑन हम
6: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
7: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
6: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
7: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
8: Tori and Ben didn't think they needed a DVS system.
9: We've got double glazing.
8: Have you still got that cold, damp feeling?
10: Yeah, we do.
8: So Tori and Ben got DVS home ventilation and its fresh air in, stale air out technology went to work, making their rooms drier and healthier. Say no to that cold, damp feeling. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.
11: अपने सपनों की दुनिया बनाने we all came here and we work hard to protect them but when something goes wrong like a cancer diagnosis an accident or a heart attack your insurance claims only succeed if your application was done right from the start at Assure One Nitesh Sheeta works with you to make sure details are captured nothing is missed nothing forgotten because the right advisor knows the application process the policy wording and knows exactly what it takes for a claim to be successful Assure One plan for tomorrow today call 0800-77-HEETA North Henvale Advisory Limited trading as Assure One is a licensed financial advisor
12: For 30 years, Avara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyangya full body massage. Normally $149, now just

0: Night Cafe on Hum.
1: आप सुन रहे हैं नाइट कैफे और थोड़ी देर तक और हमारा और आपका साथ रहेगा। आपको बता दें कि आपके पास में ऑप्शन है रोवा पर, जहां पर हम म्यूजिक स्टेशंस में आप हम रिवाइन के नीचे बॉलीवुड के गोल्डन ईरा 60s और 70s के गाने सुन सकते हैं। इसके साथ साथ हम 80s जुक बॉक्स भी है, जहां पर 80s के ऐसे ऐसे नगमे हैं जो आपके लिए स्टोर किए गए हैं। फिजी भजन्स का भी एक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप फिजी में जो भजन आर्टिस्ट गाते हैं उनके आवाज़ों में फिजी भजन आप सुन सकते हैं। इसके साथ में चढ़ती कला पंजाबी हिट्स है आपके लिए, फॉर ऑल द पंपिंग पंजाबी नंबर्स ये आप सुन सकते हैं। फिजी कीर्तन संग्रह में फिजी के प्रमुख कलाकारों की आवाज़ में कीर्तन भी स्टोर किया गया है आपके लिए फिजी कीर्तन संग्रह में। इसके साथ साथ राहत फतेह अली खान की अलग फैन फॉलोइंग है, जहां पर इनके गाए हुए सूफी और कवालियों को भी स्टोर किया गया है। ये सभी कुछ आपके पसंद को ध्यान में रखते हुए

आज के लिए मंडे नो लॉजिक नाइट कैफे में हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। 8 बजे रात से आपने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही वादा किए जा रहे हैं कल एक बार फिर आपके लिए नाइट कैफे की महफिल लगाएंगे और आपका साथ ज़रूर देंगे कल भी, लेकिन अभी के लिए आपसे रुख्सत लेते हैं। डू टेक केयर, फिर मुलाकात होगी। बाय।

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।

के लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: सिर्फ रोवा पर. For 30 years, Avaara Cosmetic and Laser Clinic has helped Kiwis look and feel their best. Now they are celebrating with the timeless healing power of Ayurveda from Shankara Naturals USA. Discover luxurious Kansa facials, He Sutra and Kumkumati oil facials and indulge in a 60-minute Abhyanga full body massage. Normally $149, now just $69. But hurry, the special offer is limited to the first 10 clients only. Book now at avaara.co.nz. क्रेविंग हो रही है उस थिक और क्रीमी दही की जैसे घर पर मिलती थी, तो मिलवाते हैं आपको कशिश नेचुरल योगर्ट से, जिसका हर स्पून है एकदम डिलाइटफुल. 100% वेजिटेरियन, जेलेटिन एंड ग्लूटेन फ्री. परफेक्ट है स्मूदीज बनाने के लिए, टैंगी डिप्स बनाने के लिए, पनीर या चिकन मैरिनेट करने के लिए, या बस सीधा टब से खाने के लिए, क्योंकि ये है नेचुरली डिलीशियस, ऑलवेज देसी. अवेलेबल नाउ एट योर फेवरेट इंडियन सुपरमार्केट अक्रॉस न्यूजीलैंड. ब्रिंग होम द टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन. कशिश नेचुरल योगर्ट.
1: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
2: Night Flight.

0: 2027, एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी।
1: रुजबी, टिकट्स बुक हो गए।
2: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है।
1: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी।
2: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन।
1: टुक टुक स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी।
3: एक बार तो जाने चाहिए थाईलैंड।
4: हेलो एवरीबॉडी।
0: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा।
5: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी।
0: टेक्स्ट ड्राइव ऑन 5599 फॉर दी ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस, क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी। बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुजबे, ओनली ऑन हम।
6: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
7: Branchy Group 3 Event New Zealand and Aroha Autos Sathe Mali ne prastut kare chhe Raj Gadvi live in Auckland.
8: Hey, hello, bhai, hello, hello.
7: તૈયાર થઈ જાઓ એક યાદગાર સાંજ માટે, જ્યાં હશે મ્યુઝિક, મસ્તી અને નોન સ્ટોપ ગરબા. સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ, ધ મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર, રાજ ઘડવી સાથે મનાવ એક શાનદાર ગરબા નાઇટ. ગરબા વિથ રાજ ઘડવી, સેટરડે નાઇટ 1st ઓગસ્ટ. ટિકિટ્સ માટે જાઓ eventstickets.co.nz.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey,

0: स्ट्रीमिंग ऑन रोवा।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Transform your home with Flooring Extra. Expert advice, seamless install, all backed by warranties. Visit your local Flooring Extra or book your free in-home consultation today.
3: Flooring Extra. Adore your floor.
4: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.

लो पसीना पोछ लो। आंखों में शरारत है, होठों पे शिकायत है, बेचैन तबीयत है, बेताब सी हालत है, कुछ कहूँ इज

0: की भाग दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके, लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे, नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस, हर डील बनाए परफेक्ट राइट।
2: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स, लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक,
1: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो, सब कुछ मिलेगा यही, अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए।
2: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी। कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL, T's and C's, लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई।
3: Being fussy is just knowing what you want. So, be more fussy.
4: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches. Because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love. Delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough. Serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
5: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
6: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
5: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
7: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर।

0: जोड़ी करते शिद्दत के साथ करते हैं। हम
1: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: Ladies and gentlemen,
1: unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
2: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
1: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
3: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
4: Indelible Homes, your building expert.
5: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एनवेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस provider.
6: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है
7: हाँ. अच्छा
6: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
7: मिसेस सिंह
8: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने
9: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन फोकस किचन यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.in
10: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
11: Sorry about that.
10: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
12: अरे बबीता, thank you so much for giving me Guru's number, यार.
13: क्यों? क्या हुआ?
12: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था. $20,000 चाहिए थे. बैंक गई, तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, no response. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
14: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G. That's 0800-564-424.
15: Night Flight.

0: ऑफ बॉलीवुड
1: वर्ल्ड्स बेस्ट हमारी कोई ब्रांच नहीं है
2: जब कमरिया सारा जिला ही लो।

0: चाहे आप हमके दिन चैट 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian.
2: Sorry about that.
1: But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true. Because it is true.
2: Kogan Mobile. True Aussie value.
1: Terms and conditions apply.
3: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
4: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
5: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेज, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279-9439 और विजिट legalassociates.co.nz।
6: The moment that matters, when you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At AssureOne, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. AssureOne, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as AssureOne, is licensed financial advice provider.
7: Everyday burn hazards are hotter than they look. Act fast. Cool burns under running water for 20 minutes. And for serious or large burns, always call 111. Brought to you by the Burn Support Group and the MediaWorks Foundation.
8: Continuous Group continuously make our gutters last longer, featuring 33% more protective coating. And now, FlowMate Leaf Protection, absolutely free. Contact your local Continuous Group at continuous.co.nz.
9: Playing Bollywood's biggest hit.

0: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
1: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
0: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
1: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
0: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
2: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 इयर्स।
3: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and on-site cremations. 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
4: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura JQ. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected JQ J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months. With a 10% deposit, it's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura JQ in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions, and lending criteria apply.
5: Time check. Brought to you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
6: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 6. Britain's 7th Prime Minister in a decade has begun picking his own people for Cabinet. In his first speech as leader, Andy Burnham said it was time for politicians to raise their game.
7: We have not been good enough and we need to be better. We will be.
6: It's hoped a new Green Party policy could even the playing field for tenants wanting solar. Landlords and body corps would be stopped from unreasonably blocking safe and certified plug-in panels. Consumer NZ's John Duffy says the current system is unfair.
8: Renters really are at the mercy of decisions that landlords make about what type of equipment gets put into rental properties.
6: Auckland's newest sewage pipe aims to prevent any code browns during heavy rainfall. The tunnel's been a decade in the making and will handle wastewater overflows. Watercare's James Sinclair says it was a challenging build.
9: Construction took 7 years and it spanned a period of COVID, and then there were some significant weather events thrown in there as well. So even with all of that, we've come in ahead of schedule actually.
6: The government inquiry into the deadly Tauranga landslides wants to hear from members of the public. 8 people died in the January slips, 2 in Papamoa and 6 in Mount Maunganui. The inquiry will examine whether relevant agencies took appropriate steps to warn and evacuate people. In sport, Rugby League with Machinery House in a league of their own, Kiwis hooker Brandon Smith is over 300 days sober. The 30-year-old NRL star has opened up on his addiction journey on Channel 9's 100% Footy Show.
10: I guess I want to try and inspire other people. Like, I've had a great career and had a lot of fun, but sometimes that fun can get away from you.
6: And England football legend Kevin Keegan has died aged 75 after being diagnosed with stage 4 cancer in January.
5: Sports news brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. Non-stop Bollywood. Hum. Playing Bollywood's biggest hits. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
11: Good morning, 6:03 hue hai and feels like 8 degrees, 9.8 actual temperature. Sunrise hoga 7:27 AM pe. Thode bahut heavy showers ho sakte hai north of Fangapurwa. Otherwise clear in the afternoon.
5: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
4: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
5: Breakfast Catch Up.
11: गुड मॉर्निंग, 21st जुलाई आज का दिन एंड आपका स्वागत है ट्यूसडे के ब्रेकफास्ट शो में. हाय, मेरा नाम है रुजबे एंड मैं हूँ आपके साथ यहाँ पे बिकॉज विजय एंड पूजा आर अवे. दे आर अवे ऑन हॉलीडे बट दे विल बी बैक टुमारो. सो या, दिस इज़ आवर फाइनल डे ऑफ ब्रेकफास्ट शो विद मी. और मैं आपके लिए यहाँ पे गाने तो लेकर ही आऊँगा, लेकिन इसके साथ साथ इधर उधर की बातें, क्या चल रहा है अराउंड टाउन, अराउंड द वर्ल्ड, इसके सारे अपडेट्स भी आपके लिए लेकर आऊँगा. क्या है आपका ट्यूसडे का प्लान? आर यू ऑफ टू वर्क ऑलरेडी? या अभी अभी आपकी सिर्फ सुबह हुई है और आज थोड़ा चिलैक्स वाला दिन है आपका? जो भी हो, एंटरटेनमेंट यहाँ पे आपको भरपूर मिलेगा, तो बस ट्यून इन रहिए और सुनते रहिए हम

0: Sunnyside Up.
1: गुड मॉर्निंग सनी साइड अप में आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे शेयर करते हैं जो आपके अंदर एक अलग ही जज्बा जगा दे। आज की पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया में एक रिसर्च एक स्टडी हुआ था अराउंड 4 days वर्किंग वीक, बट अब ये 4 days वर्किंग वीक इज़ नॉट लाइक जो आप सोच रहे हैं, बट दिस इज़ मोर लाइक रिड्यूस्ड आवर्स बट सेम आउटपुट। तो 80% आवर्स तुमने काम करके 100% आउटपुट प्रोड्यूस करना है, और ये एक चीज़ इन्होंने ट्राई की थी। सो इट्स नॉट लाइक वर्क 4 days बट लॉन्गर आवर्स, नहीं, 4 days आप सेम आवर्स काम करो बट जो आउटपुट है उसको आप 5 दिन काम करने में जितना निकालो। और मुझे लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि हर काम तो गलत बोलूँगा मैं, लेकिन काफ़ी कामों में थोड़ा वेस्टेज टाइम वाला काफ़ी टाइम होता है, जहाँ पे वेस्टेज होता है, जहाँ पे हम लोग गॉसिप कर रहे हैं बॉस के बारे में, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फिर क्रिप कर रहे हैं कि यार क्या यार 3 दिन आना पड़ रहा है काम पे, ये जो टाइम है ये अगर हमने सेव कर लिया तो शायद मुझे लग रहा है 4 दिन काम करके हम 5 दिन वाला आउटपुट तो डेफिनेटली जनरेट कर पाएंगे करंट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। ये ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सफल रहा और काफ़ी कंपनीज ने इसमें पार्ट लिया एंड आई थिंक दे वर ऑल वेरी सेटिस्फाइड अबाउट इट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो एम्प्लॉई रिटेंशन है वो ज़्यादा बेटर था उसमें, एंड जो आउटपुट था वो भी बहुत बढ़िया था, और जो सेटिस्फैक्शन होता है एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन वो पीक पे था बाय जस्ट गिविंग देम 4 days वर्किंग वीक। नाउ डू यू थिंक समथिंग लाइक दैट इज़ गोइंग टू बी पॉसिबल इन न्यूजीलैंड, क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे हम लोग 2 दिन काम पे जा रहे थे उससे दिक्कतें होने लग गई, और फिर 3 दिन और फिर 4 दिन, अब कुछ लोगों को रोज़ जाना पड़ रहा है काम पे। सो डू यू थिंक इन दिस एनवायरमेंट जहाँ पे हमें काम पे जाने पड़ रहा है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, सिटी को बूस्ट करने के लिए, डू यू थिंक 4 day वर्किंग वीक इज़ समथिंग दैट वुड बी इम्प्लीमेंटेड इन न्यूजीलैंड, क्या लगता है आपको? शेयर कीजिएगा आप 5599 पे BF कीवर्ड के साथ।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Hey, देखो हम आ गए।
4: 80s के रेट्रो गाने।

0: Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. 1921 से इंडियन फैमिलीज ने मॉरिसन्स फ्यूनरल्स पर भरोसा किया है क्योंकि वो आपके ट्रेडिशंस को अच्छी तरह से समझते हैं पंडित जी के साथ मिलकर हर सेरेमनी आपके तरीके से ऑर्गेनाइज करना बड़े ग्रुप्स के लिए फ्लेक्सिबल स्पेसेस ऑनसाइट कैटरिंग विद वेजिटेरियन और एग फ्री ऑप्शंस और आपकी परंपराओं का सम्मान करने के लिए ऑनसाइट क्रेमेटोरियम और जब भी जरूरत हो दिन हो या रात हमेशा फोन के दूसरी तरफ कोई ना कोई मदद के लिए तैयार रहेगा मॉरिसन्स फ्यूनरल्स को कॉल कीजिए
2: Rebel's end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now. Only at Rebel Sport. See your life T's and C's.
3: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz
4: Right now, your team could be winning. Sprinting. Pitching. Kicking. Sinbinning. And you need to know about it.
5: Join our tribe!
4: The Tribe app brings you live scores, real-time updates, and text commentary as it happens. It's the world of sport in your pocket on one app. Tribe. Your destination for sport. Download the app now and...
5: Join our tribe!
6: The beat of Bollywood.
7: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
6: The breakfast show with Vijay and Pooja.
8: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
6: Bollywood's most wanted.
9: Kundi ghar do. Ya seedha andar aao.
10: मैं लाऊं अपना A game.
6: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: headlines.
1: You're listening to Humpling, Bollywood's biggest hits. Good morning, 6:22 a.m. right now. Or global headlines mein, US-Iran regional tensions badhte hi ja rahe hain. Middle East mein, US military bases aur ongoing conflict ke dauran. Missile aur drone attacks tez ho gaye hain, jisme American servicemen ke casualty hone ki khabar bhi hai. FIFA World Cup final ho gaya, jisme Spain ki jeet ho gayi. Aur Spain actually kafi strong bhi lag rahi thi kal khel mein. And they definitely deserve to win. UK leadership में shift हो गया है Prime Minister Keir Starmer का resignation के बाद Greater Manchester के Mayor Andy Burnham ने UK के अभी PM का post ले लिया है और उसके बाद Donald Trump से बात भी की है. इंडिया में देखें तो एक ग्लोबल माइलस्टोन हिट हुआ है UPI के लिए. इंडिया का डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म UPI अब 12 देशों में अडॉप्ट और इंटीग्रेट हो चुका है, जिससे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन और आसान हो गए हैं. And then there has been CJP protests in New Delhi, जो एक education reform के around एक protest चल रहा है, जिसमें काफी लोगों पर youth के ऊपर tear gas, फिर लाठी charge और बहुत ही भयानक हरकतें की गई, जिसके ऊपर surprisingly कोई भी Indian news channel ने कुछ report नहीं किया है. सुबह मैं देखने वाला था कि कुछ article होंगे, कुछ होंगे, but yeah, there are some articles in RNZ and stuff. New Zealand Herald में भी कुछ नहीं दिखा है मेरे को, surprisingly. But yeah, anyway, these were the global headlines for this morning.

0: accurate traffic.
1: Mega toy sale ends today.
2: A high of 15, quite cloudy today, but some sunshine at times as well. Into the city, northern slow Constellation to Milford and slowing down back at Silverdale as well. 38 minutes into town from Silverdale, 20 from Constellation Drive. Northwestern, 20 in from Massey, we're slow at Tagatatu and slowing close to the city. Southern, almost half an hour in from Manukau now, and 54 in from Drury. Slow on and off Papakura through to about Ellerslie.
1: Don't miss 20% off selected Lego themes. Ends today at the warehouse.
3: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
4: हाँ मॉर्गेज बनना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
3: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
4: पर डेवलपमेंट के पैसे
3: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
5: TradeDepot.co.nz. Trade Depot Home Appliances are built to last. Certified over 10 years of daily use. My Dear heat pump dryers, just $499. Big 10kg washing machines, just $499. Shop online or in store at Trade Depot Nielsen Street, Onehunga. With minimum spends, you can get free home delivery anywhere in Auckland. T's and C's apply. TradeDepot.co.nz.
6: अरे बबीता थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार
7: क्यों क्या हुआ
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था $20,000 चाहिए थे बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत एक हफ्ता हो गया नो रिस्पांस फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है
8: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री कॉल 0800 लॉजिक जी दैट्स 0800-564-424
9: When your car needs a service, bringing it into Midas instead of the dealer you bought it from stops your brain going down rabbit holes like, what else are they going to find in there?
10: Lots.
9: Will their word salad me into fixing stuff that doesn't need fixing?
10: Probably.
9: Am I paying for this free coffee?
10: Definitely.
9: Will they talk me into an upgrade?
10: Oh.
9: Ditch the dealer, bring it into Midas. Same great service and mates rates prices. Midas, the peace of mind motoring.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win. Big or small, bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Munco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: You're listening to the Breakfast Show. Good morning. 6:30 बज चुके हैं, 6:31 to be precise. और आपके लिए 7 बजे के बाद यहाँ पे हम राशि फल भी लेकर आएंगे. और अगर आज आपका बर्थडे है 21st of July, if today is a special day for you, तो वो भी बताइए हमें यहाँ पे, ताकि हम आपके लिए बर्थडे विशेस भी यहाँ पे लेकर आए. बॉलीवुड में क्या हो रहा है, बॉलीवुड में क्या ही हो रहा है यार. अमिताभ बच्चन ने लियोनल मेसी को एक फेयरवेल वाला एक मैसेज लिखा, उसके लिए लोग एकदम ही दीवाने हो गए. तो उसके बारे में अपडेट दे देता हूँ आपको. एकदम इमोशनल नोट उन्होंने लिखा उनके ब्लॉग पे. उन्होंने लिखा कि द डे कम्स फॉर एवरी चैम्पियन, और उनको कहा कि आप एंजॉय कीजिए ये लव जो आपको मिल रहा है और ये लेगेसी जो आपने कमाई है, और इतना स्ट्रेस मत लीजिए हारने का. इट्स ओके, लास्ट टाइम तो जीता ही था ना आपने. बट इसके अलावा और भी कुछ बातें हो रही है. लॉर्ड्स में जो क्रिकेट मैच हुआ वहाँ पे बहुत चर्चे हुए. कृति सैनन को भी वहाँ पे पाया गया, थर्ड ODI खेला गया वहाँ पे. बातें हो रही थी पहले कि रोहित शर्मा शायद से रिटायरमेंट लेंगे ODI से, बट ऐसी कोई न्यूज़ बाहर आई नहीं. इनफैक्ट मैच काफ़ी बढ़िया रहा, इंग्लैंड की जीत हुई, लेकिन काफ़ी बॉलीवुड सेलेब्स को वहाँ पे स्पॉट किया गया. आई थिंक UK इज़ द ओनली प्लेस लेफ्ट नाउ फॉर अ लॉट ऑफ सेलेब्स इन इंडिया. विराट कोहली तो मूव हो ही गए फॉर सर्टन रीजन्स, फॉर द रीजन्स दैट वी आर हियर. एंड अब काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड सेलेब्स भी दिख रहे हैं UK के चक्कर काटते हुए. वेल आई थिंक फॉर द राइट रीजन्स.

0: You're listening to Humbling, Bollywood's biggest hits. Atif Aslam ki awaaz mein aap sun rahe the ye bahut hi badhiya sa gana. Waise ek news haath lagi jo hai wo kaafi sad news ye hai. Agar aap bhi wo scooter use karte ho, e-scooter agar use karte ho, it's very important ki main ek reminder aapko de dun ki helmet pehenna compulsory hai aur bahut zaruri hai. 2019 mein actually ek 23 year old the us time pe jinki टोबिन हंट की डेथ हो गई थी. बस ये वन ऑफ द स्कूटर्स चलाते हुए, वो एक स्कूटर चला रहे थे सिटी में और अराउंड 25 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे होंगे. हेलमेट नहीं पहना था उन्होंने और उसके कारण वो ट्रिप हुए और उनके हेड पे इंजरी हुई एंड चार दिन बाद उनकी मौत हो गई. जो करोनर है एलेक्स हो, उनका रिपोर्ट अभी रिलीज़ हुआ है अराउंड 7 ईयर्स के बाद और उन्होंने उस रिपोर्ट में मेंशन किया है कि कैसे और क्या हुआ था. बट या इट इज़ वेरी सैड. प्लीज़ मेक श्योर अगर आप ई स्कूटर्स चला रहे हैं, बाइक्स चला रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ चला रहे हैं जहाँ पे यू नो गिरकर आपको इंजरी हो सकती है, मेक श्योर योर हेड इज़ ऑलवेज कवर्ड, क्योंकि हेड कवर करना सबसे क्रिटिकल होता है. हमारा ब्रेन में अगर कुछ भी लग जाता है या कुछ होता है, कंकशन हो जाता है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर उसके बाद यू नो टू स्पेंड योर डे टू डे लाइफ एनी वे. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू टेक प्रिकॉशंस. और काफ़ी बार ऐसे होता है कि जवानी के जोश में हमें ऐसा लगता है कि यार अरे क्या ही होगा यार, कुछ नहीं होगा, यू नो कुछ नहीं होता, डर के आगे जीत है. ऐसी सारी चीज़ें बहुत देखी हमने बचपन में, इसलिए हम लोग थोड़े अतरंगी है शायद. बट या मेक श्योर दैट यू आर बीइंग सेफ एंड यू आर वेयरिंग अ हेलमेट एट ऑल टाइम्स इफ यू आर ड्राइविंग एन ई बाइक, स्कूटर, साइकिल या बाइक, मोटर बाइक, जो भी, यू नो प्लीज़ मेक श्योर यू आर वेयरिंग अ हेलमेट एंड गियर, एडिक्वेट गियर ऑलवेज. वेल, सैंडी और मैं जाने वाले हैं बाली और बैंकॉक इन ईस्टर 2027. वहाँ पे भी शायद हम टुक टुक में ट्रैवल करेंगे. होपफुली हेलमेट की ज़रूरत ना पड़े वहाँ पे. लेकिन एनीवे, पॉइंट ये है कि अगर आपको भी चलना है हमारे साथ तो ड्राइव लिखकर भेजिए 5599 पे एंड वी विल सेंड यू अ लिंक टू रजिस्टर एंड देन वी विल सेंड यू ऑल द डिटेल्स कि क्या इन्वॉल्व है उसमें. बढ़िया, बाली एंड बैंकॉक ईस्टर 2027 हमारे साथ चलिए. ड्राइव लिखकर भेजिए ऑन 5599.
1: 2027 एक कहानी जो बदलेगी आपकी जिंदगी.
2: रुस्बे, टिकट्स बुक हो गए.
3: तो फिर देर किस बात की? बाली बुला रहा है.
2: सनसेट, बीच क्लब और थोड़ा सा सुकून भी.
3: लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती. बैंकॉक में होगा हमारा असली तशन.
2: टुक टुक, स्ट्रीट फूड और रातों की रंगीन दुनिया भी.
4: एक बार तो जाना ही चाहिए थाईलैंड.
5: हेलो एवरीबॉडी.
1: दो शहर, एक सफर और यादें जो रहेंगी हमेशा.
6: थोड़ा घूमे आओ, अच्छा लगेगा आपको, मन बहल जाएगा आपका भी.
1: टेक्स ड्राइव ऑन 5599 फॉर द ऑल इंक्लूसिव टूर प्राइस. क्योंकि ये कहानी अब आपके साथ लिखी जाएगी. बाली एंड बैंकॉक गेटअवे विद सैंडी एंड रुस्बे, ओनली ऑन हम. Accurate traffic.
7: Kappa Court and Curtin Studios 3-day sale starts Thursday.
8: Bit of sun, quite cloudy at times today. 15 hour high into the city, starting to slow down northern. Slow at Silverdale, Greville to Milford and at Esmond. 22 minutes in from Constellation Drive to the city. 42 from Silverdale. Northwestern, 25 in from Massey. We're slow there to Te Aratu and close to the city. Southern, 32 Mataco to town. Slow on and off Papakura through to the city. Little heavy at Papakura already.
7: Massive savings on carpet, hard floor, curtains and blinds. 3 days only starts.

बताइए समझ में आया कौन सा गाना है ये? इट इज़ आई थिंक अ लिटिल ट्रिकी वन, लेकिन ये जो गाना है, ये गाना जिस मूवी का है, इस मूवी को देखकर हम बहुत लोटपोट हंसे हैं. लाइक लिटरली दिस मूवी हैज़ बीन अ वेरी फनी मूवी. या आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई कैन से. और दो बहुत ही फनी एक्टर्स इसमें थे. दो एक्टर्स वाली मूवी थी ये. एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स थे इसमें, बट दो मेन लीड, ये तीन मेन लीड पकड़ सकते हो आप. तीन मेन लीड थे. ओह या एक्चुअली तीन मेन लीड. अगर आपको समझ में आ रहा है तो बी एफ लिख कर भेजिए 5599 पे. अगर आपको हिंट चाहते हैं 0800-004-866 इज द नंबर, यू कैन गिव मी अ कॉल. तो ये है गाना. आज एक भी मैसेज नहीं आया अब तक यार. ओ माय गॉड, व्हाट्स हैपनिंग.

You're listening to Humbling, Bollywood's biggest hits. आपके लिए यहाँ पे गाने भी एक से एक रहेंगे और 7 बजे के बाद यहाँ पे आपके लिए टॉप ऑफ द आवर न्यूज होगा. उसके बाद थोड़ी देर में हम आपके लिए राशि वाइब्स ले आएंगे एंड देन देयर इज गोइंग टू बी बर्थडे ग्रीटिंग्स फॉर यू. तो अगर आज आप आपका बर्थडे एनिवर्सरी कोई खास दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा सो दैट वी कैन पास ऑन द विशेज टू योर लव्ड वंस एंड मेक इट स्पेशल फॉर देम.

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: Feels like 8 degrees, 9.6 है actual temperature, और during the day आप experience करेंगे around 14 degrees तक का high. 727 पे होगा sunrise and possibly heavy showers होंगे north of Fangapurwa.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
0: Good morning. Morning Madness.
1: Good morning, welcome to Morning Madness. 7:02 हुए हैं and a very good morning to you. Tuesday का दिन, 21st July. मैं हूँ रुज़बे और आपके साथ मैं हूँ यहाँ पे 10 बजे तक. सुना रहा हूँ आपको एक से गाने और इस घंटे को special final राशि फल, I think राशि vibes. मैं बहुत excited होता हूँ यार ये राशि vibes के लिए. But anyway, आज final वाला रहेगा क्योंकि कल से विजय और पूजा are going to be back. और आपको ढंग से आपकी राशि सुनने मिलेगी, लेकिन आज मेरे को सहन कर लेना. एनीवे, इम्पॉर्टेंट चीज़, एक ओवरसीज़ एक्सपीरियंस की बात हमेशा होती है और मेरे को लगता है कि एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी लोगों ने एक्सपीरियंस करनी चाहिए. बट एक व्यक्ति के लिए ये ओवरसीज़ एक्सपीरियंस हैज़ टर्न इनटू अ नाइटमेयर इवन फॉर हिम एंड हिज पेरेंट्स, क्योंकि टोरंगा के ये टीनेजर है, पहली बार अपनी फैमिली के बिना ये गए थाईलैंड और वापस आने के टाइम पे इनको अरेस्ट कर दिया गया और थाई प्रिजन में डाल दिया गया था. उनको अरेस्ट किया फॉर पिकिंग अप अ वॉच एंड पुटिंग इट इन हिज पॉकेट ड्यूरिंग अ सिक्योरिटी बैग चेक, और उसके कारण उनको जेल में डाल दिया, थेफ्ट इन एन एयरपोर्ट इसमें कन्विक्ट करके. It's quite scary, yeah, for someone like a young person, 18 year old, एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे इंग्लिश इज प्रॉब्ली नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, डिफिकल्ट टू सर्वाइव या इन सच सिचुएशन, और वो भी जेल में. जेल में हमें पता ही है कि क्या क्या, मतलब हमें नहीं पता लेकिन सुना है हमने कि क्या क्या होता है, और थाईलैंड के जेल में तो इमेजिन भी कर सकते हैं कि कैसे क्या होगा. बट या इसके बारे में अभी न्यूज़ आया है बाहर. It's a very sad thing, but we hope that the kid is fine now and the parents are also okay. But all the details iske share karenge hum aapke sath. Abhi gana sunte hain aur uske baad lekar aayenge aapke liye Rashi Vibes.

0: राशि वाइब्स।
1: गुड मॉर्निंग, राशि वाइब्स का टाइम आ गया है और देखते हैं आज 21 जुलाई के लिए आपकी राशि आपके लिए क्या कह रही है। शुरुआत करेंगे एरीज यानी कि मेष राशि के साथ। एरीज, आपके पास सॉलिड क्लैरिटी आने वाली है कि कहाँ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। नए इनकम अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं, बस अचानक किसी हीरो बनने के चक्कर में बिना सोचे कमिटमेंट मत कर देना। आज हीरो नहीं बनना है। टॉरस आपके लिए कहा है वृषभ राशि, बिजनेस या काम में इंस्टेंट गेन्स के योग है। किसी के बारे में सच सामने आएगा पर सीन क्रिएट करने की जगह बस चिल मारो और आई न्यू इट वाला स्माइल पास कर दो। यार ये तो सैंडी करती है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जेमिनी मिथुन राशि, थोड़ा बर्नट आउट फील हो सकता है पर दिमाग की बत्ती जलने वाली है। पुरानी गलतियों से सीखो और थोड़ा रेस्ट लो, दुनिया आपके बिना एक दिन चल लेगी। तो आज आपको सिक डे कहने के लिए लेने के लिए बोल रहे हैं। कैंसर यानी कि कर्क राशि, आज बिना किसी गिल्ट के अपने ऊपर खर्चा या पैम्परिंग करने का दिन है। फाइनेंशियल विन्स मिलने के चांसेस है, बस पुराने रिग्रेट्स वाले घोस्ट के दिमाग से बाहर निकलो। तो पुराने रिग्रेट्स आप आज भूल जाओ। लियो सिंह राशि, कल से लियो सीजन स्टार्ट हो रहा है तो आज घर के पेंडिंग काम और मेस को निपटा लो। पर्सनल लाइफ में लव और अटेंशन मिलेगी, बस अपना रॉयल एटीट्यूड थोड़ा कंट्रोल में रखना। आज धरती पर रहो, थोड़ा उड़ो मत, ऐसा ये कह रहे हैं। वर्गो कन्या राशि, ज्ञान और इंट्यूशन दोनों पीक पर चल रहे हैं, हार्ड वर्क का फल मिलने वाला है। बस हर छोटी बात को ओवर एनालाइज करके अपना सर मत दर्द कर लेना। लीब्रा तुला राशि आपके लिए कहा है, मून आपकी राशि की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो चार्म और लक दोनों फुल ऑन एक्टिवेशन मोड में है। बैलेंस बनाकर चलो और थोड़ा दोस्तों के साथ चिलिंग प्लान करो। चिल मारने का टाइम है आपका लीब्रा। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए कहा है, स्कॉर्पियो मून एक्टिव है, आज आपकी सीआईडी वाली आंखें सबके सीक्रेट पकड़ लेगी। डीप इंट्यूशन काम आएगी, बस ड्रामा में खुद जंप मत मारना। क्या बात है, ड्रामा के बिना कैसे रहेंगे स्कॉर्पियो। लेकिन सेजिटेरियस धनु राशि आपके लिए कहा है, जुपिटर की कृपा से एडवेंचर और लक आपके साथ है। किसी क्लोज फ्रेंड या पार्टनर के साथ मस्त बॉन्डिंग होगी, बस पॉकेट पर थोड़ा कंट्रोल रखना। कैप्रिकॉन मकर राशि, पुराना टेंशन खेत में गया, अब आगे की प्लानिंग करो। रिसर्च और क्रिएटिव थिंकिंग के लिए टॉप दिन है, बस थोड़ा सोशल ब्रेक ले लो। वैसे भी सोशल मीडिया पे आजकल कचरा ही दिख रहा है। एनीवे एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए कहा है, पैसा और लॉजिक दोनों पर ध्यान दो। इमोशंस में आकर कोई बड़ा खर्चा मत कर देना और थोड़ी नींद पूरी कर लो वरना दिमाग का फ्यूज उड़ जाएगा। तो आपको भी कह रहे हैं शायद सिकली भी ले लो आप भी। पाइसिस मीन राशि आपके लिए कह रहे हैं, आपकी गट फीलिंग बिल्कुल सही प्रूव होने वाली है। फैमिली और होम स्पेस में सुकून मिलेगा, बस फालतू की ओवरथिंकिंग से खुद को दूर रखो। इम्पॉसिबल। वेल दिस वाज योर राशि फॉर द डे। अगर आपने इसको सुनकर ऐसे सोचा कि अरे यार ये तो सही है, तो फिर इम्प्लीमेंट कीजिए उस हिसाब से। ऐसे मत कीजिए कि मैंने बोला है सिक लीव लेने को तो आपने सिक लीव लिया, ऐसे मत कीजिए। प्लीज़ गो टू वर्क, वर्क हार्ड, इकोनॉमी स्ट्रगलिंग।
0: बॉलीवुड का असली ब्लॉकबस्टर,
2: पूरे शहर पे कब्जा होगा, राज होगा,
0: प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
3: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स।
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं? नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो, स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz।
5: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
6: क्यों, क्या हुआ?
5: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
7: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
8: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं जैसे खुद कोई गूगल हो,
9: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
10: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 0927994 39 और विजिट legalassociates.co.nz।
11: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
12: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
11: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
12: Available at selected branches. T's and C's apply.
13: Whatever your morning looks like, own it with Up and Go Liquid Breakfast. Braving the bus or carving a wave, battling rush hour or feeling the rush of your favourite trail. Fueled with the protein, fibre and vitamins you need to get up and go.
14: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
15: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: Bollywood's most wanted.
16: Kundi ghar dao, ya seedha andar aao.
17: Main laun apna A-game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.
1: You are listening to Humpling Bollywood's Biggest Hits. वैसे आज भी एक रिपीट का रिक्वेस्ट आया है, लियो आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ मैं। ऐश आपका मैसेज आया है, कल से लियो सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो आपको कह रहे हैं कि आज घर के पेंडिंग काम और मेस को निपटा लो, पर्सनल लाइफ में लव और अटेंशन मिलने वाली है आपको, बस अपना रॉयल एटीट्यूड जो है उसको आप कंट्रोल में रखो। तो मतलब आज थोड़ा ज़मीन पर रहो, आसमान में मत उड़ो, ऐसा ये कह रहे हैं आपके लिए।
18: Thank you.

0: सेलिब्रिटी अलार्म में आपके लिए एक डायलॉग आपको यहाँ पे सुनाऊंगा और आपको यहाँ पे गेस करना है मैसेज करके 5599 पे कि ये कौन से सेलिब्रिटी है। अब आज की सुबह यार मेरे को ऑनेस्टली लग रहा है कि थोड़ा सा फन करना चाहिए हमने। आप यहाँ पे 0800-004-866 पे कॉल करके मुझे इस सेलिब्रिटी के अराउंड अलग अलग क्रिएटिव हिंट्स दे सकते हो और बाकियों को मदद कर सकते हो कि यार ये कौन है सेलिब्रिटी, उनको गेस करने में मदद करने के लिए। सो 0800-004-866 इज़ द नंबर। यू कैन गिव अस अ कॉल एंड यू कैन गिव मी सम हिंट्स, लाइक ना गिव आर लिसनर सम हिंट्स। अभी आज की जो सेलिब्रिटी है वो ये है।
1: मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं।
0: बताइए कौन सा सेलिब्रिटी है ये, किसकी आवाज़ का ये डायलॉग है। आई नो मैंने बहुत कम प्ले किया है बट ये बहुत आइकॉनिक डायलॉग है यार, इट्स एन आइकॉनिक डायलॉग। सो इफ यू नो यू नो। आपने बस यहाँ पे कॉल करके हिंट देने हैं ताकि हिंट के थ्रू जिनको अभी वॉइस से नहीं पता चल रहा है वो हिंट के थ्रू एटलीस्ट गेस कर पाए। तो
1: मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं।
0: चलो देखते हैं क्या हिंट्स आ रहे हैं। हाय, कोई हिंट आप देना चाहेंगे सुबह सुबह?
2: इनका शूटिंग वेलिंगटन में हुआ था।
0: इनका शूटिंग वेलिंगटन में हुआ था?
2: हाँ।
0: अच्छा, मेरे को नहीं आइडिया यार ये वेलिंगटन में शूट हुआ है कि नहीं, मतलब अच्छा है अगर ये हुआ होगा तो सही है। क्या नाम है आपका?
2: स्काई टावर पे इनका।
0: स्काई टावर पे बोल रहे हो? नहीं यार ये स्काई टावर वाला नहीं है। मैं मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या सोच रहे हो। आप सोच रहे हो प्लेयर्स का कोई प्लेयर्स का डायलॉग है क्या आप सोच रहे हो? नहीं प्लेयर्स नहीं है ये। जी थैंक यू, बट काफ़ी प्लेयर्स के से काफ़ी क्लोज है ये। प्लेयर्स के साथ इनका काफ़ी दोस्ताना था। ये मेरा हिंट है वैसे आज का। बट आप यहाँ पे कॉल करके हिंट दे सकते हो या फिर आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। BF स्पेस, आपको क्या लगता है कौन है आज की हमारी ये सेलिब्रिटी?
1: मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता।
0: अच्छा कॉल आ रहा है अभी हमारे पास, देखते हैं। हाय गुड मॉर्निंग।
3: मॉर्निंग, ही इज अ पारसी लाइक यू, हिज मॉम नेम इज फिरोजा।
0: क्या बात है, हाफ पारसी है वो, हाफ पारसी।
3: पारसी अरबी, इसने गाड़ी ली है महिंद्रा थार जिसमें उसके इनिशियल्स इंग्रेव हुए।
0: अच्छा क्या, ओ भाई साहब आप तो फुल अपडेट है, मेरे को लग रहा है आप भी बहुत बड़े फैन लग रहे हो इनके।
3: नहीं वो तो यूट्यूब पे आ गया था तो दिख गया।
0: अच्छा चलो अच्छा है। थैंक यू सो मच यार रजत, थैंक्स फॉर योर कॉल मैन। राहुल पांडे ने भी सही गेस किया यहाँ पे। राहुल थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आप भी यहाँ पे मैसेज कर सकते हो BF ऑन 5599। विधि आपका भी आंसर यहाँ पे आ गया है। एंड यस कुतुब, आपने मूवी का नाम लिखा है। यस मैं एक्टर का नाम पूछ रहा हूँ किस एक्टर ने ये डायलॉग बोला है। आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो 5599 पे BF कीवर्ड के साथ। अगर कोई और हिंट देना चाहता है तो कोई और भी हिंट दे सकते हैं। कुछ काफ़ी हिंट्स है यार इस एक्टर के।
1: मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं।
0: या सो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रोल्स, ये काफी पॉपुलर रोल भी था इनका। अच्छा सोम ने भी एक आंसर भेजा है। सोम ने बोला है सिद्धार्थ मल्होत्रा। अच्छा सोम, नहीं यार थोड़ा और सोचना पड़ेगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस टाइम तक उन्होंने लॉन्च भी नहीं हुए थे, ये उससे पहले की मूवी है। वेल कोशिश करूंगा मैं, अगर आपने यहाँ पे सही गेसेस भेजे तो आज इस मूवी का एक गाना भी आपको सुनाऊंगा मैं इन वाइल। अच्छा मनिया सुरवे। अच्छा ऑलराइट ओके, लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग।

0: News Headlines.
1: आज 21 जुलाई और आज सुबह की न्यूज पे ध्यान अगर दे तो गल्फ ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 3 रेज हो चुकी है। एमफेड ने यूएई, कतार, ओमान और समिट गल्फ देशों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 3 कर दिया है, जिससे ट्रैवल इंश्योरेंस कॉन्फ्लिक्ट एक्सक्लूजन्स एक्टिवेट हो गए हैं। नया प्लानिंग बिल प्रोग्रेस हो रहा है। गवर्नमेंट ने रिसोर्स मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट से जुड़ी नई प्लानिंग बिल को पार्लियामेंट में आगे रिपोर्ट कर दिया है। इंडिया में काफ़ी कुछ हुआ। नई दिल्ली में प्रोटेस्ट क्लैश हुआ पार्लियामेंट मार्च के दौरान। सीजेपी प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने टियर गैस और बेटन्स का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट सीजेपी प्रोटेस्टर्स ने इन्हें यूथ हम कह सकते हैं यूथ को लाठीचार्ज से ट्रीट किया। और भी बात हो रही थी पेपर लीक और एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने मूवमेंट लीडर्स से पहली बार फॉर्मल टॉक्स किए हैं। फिजी में नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट टारगेट कर रहे हैं। एक्टिंग एजी सिरोमी तुरागा ने बताया कि सीआरसी नई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1 सितंबर 2026 से पहले तैयार कर सकती है। अरेस्ट ओवर वायलेंस थ्रेट भी हुआ है। कैपिटल सिटी को जलाने और कॉन्स्टिट्यूशन हटाने की ऑनलाइन धमकी देने वाले व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और स्ट्रिक्ट एक्शन की वार्निंग दी है। ऑस्ट्रेलिया में वुडसाइड गैस एक्सटेंशन कोर्ट केस। फेडरल कोर्ट में वुडसाइड के 40 ईयर गैस प्रोजेक्ट एक्सटेंशन के खिलाफ एनवायरमेंटल ग्रुप्स की लीगल हियरिंग शुरू हुई है। यूएस और ईरान में टेंशन अभी भी काफ़ी कायम है। जॉर्डन में अमेरिकन सोल्जर्स की मौत के बाद यूएस ने ईरान पर नए मिलिट्री स्ट्राइक्स किए हैं और ईरान के रिटेलिट्री मिसाइल अटैक्स ईरान ने भी रिटेलिट्री मिसाइल अटैक्स किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज और एनर्जी क्राइसिस कायम है। काफ़ी डिस्ट्रप्शन होने वाले हैं शिपिंग में और रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक्स की वजह से। क्रूड ऑयल प्राइस $90 पर बैरल पर जाकर पहुंच गए हैं। सो या एक्सपेक्ट फ्यूल प्राइसेस टू गो अप अगेन।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living. Hum. Accurate traffic.
4: BYD South Auckland now open.
5: Quite cloudy for us today. Bit of sun, a high of 15. At Northwestern Motorway, we're heavy upper harbour to the causeway. A crash at the Te Aritu on-ramp sorted, but it's still heavy there. Find a Greyland, then it's slow to the city from Greyland. 42 minutes in from Massey. Southern 47 from Monaco to town. Slow all the way from Papakura. Quite heavy there and at Monaco. Northern slow from Greville. 30 in from Constellation. Southwestern but heavy both ways.
4: Discover the full BYD electric and hybrid range at the new Monaco Supersite on Great South Road.
6: Kya baat hai us khane mein jo pure ghar ko dining table par le aaye. Wo khushbu aur wo asli masalon ka swaad. Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes. Bombay biryani ho ya butter chicken, korma या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
7: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
8: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
9: And award goes to Indelible Homes.
8: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
10: Kahani of Indelible Homes.
11: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
12: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें।
11: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए। अब रेंट भी आ रहा है।
12: पर डेवलपमेंट के पैसे
11: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट NZPMI.co.nz या कॉल 0800 4NZPMI।
13: Thank you.
0: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो।
13: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
14: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
2: The beat of Bollywood.
15: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।
2: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Monaco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
2: Birthday greetings.
16: इसका बर्थडे भाई?
17: मेरा भी बर्थडे है, चलो लाइन में आ जाओ।
16: Happy birthday to you.
1: आज है 21st of July, आज का दिन खास है आपके लिए, तो आपको आज के दिन की ढेर सारी बधाई। आज पंकज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। डियर पंकज, हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट अमेजिंग हस्बैंड एंड द बेस्ट डैडी, विशिंग यू अ डे फिल्ड विद लव, लाफ्टर एंड हैप्पीनेस। आर टू लिटिल वंस एंड आई आर सो ग्रेटफुल टू हैव यू इन आवर लाइव्स। यू आर आवर बेस्ट फ्रेंड, आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड द वन हु मेक्स अस हार्ट फील एट होम। We love you more than words can say and wish you a year of blessings and beautiful memories. Happy birthday, my love. Sneha, Riyansh and Ansh ki taraf se aapke liye ye message aaya hai Pankaj. Happy birthday to you. Hope aapka ye jo saal hai wo bahut hi badhiya guzre. Aaj ek aur important vyakti apna birthday celebrate kar rahi hai, jinko hum yahan pe call lagane ki koshish karenge. And let's see if they answer the call. Hopefully answer kare.

0: वेल ये आंसर नहीं कर रहे. वेल दे आर ऑन अ हॉलिडे फॉर अ रीजन. वो बिजी है इसलिए शायद शो नहीं कर रहे. अगर
1: हाय दिस इज पूजा, सॉरी आई मिस्ड योर कॉल, प्लीज लीव योर नेम एंड नंबर एंड आई विल गेट बैक टू यू.
0: हाय पूजा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड होप आपका ये जो साल है बहुत ही बढ़िया गुजरे. एंड या वी मिस यू ऑन द ब्रेकफास्ट शो या सो वील कम सून. बहुत इंतज़ार है लिसनर्स को आपका और बहुत ज़्यादा प्यार आपको सभी दे रहे हैं यहाँ पे आज आपकी बर्थडे के मौके पे. सो पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आप भी आपके मैसेजेस यहाँ पे हमें भेज सकते हैं BF on 5599 और पूजा के लिए अगर कोई विशेस हो तो यहाँ पे जरूर भेजिएगा.

0: You're listening to Humpling Bollywood's biggest hits. Junoon का ये गाना था और आपके लिए यहाँ पे एक से गाने तो यहाँ पे लेकर आते हैं, लेकिन एक यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए लाया था मैं सेलिब्रिटी अलार्म में. आज आपको मैंने ये क्लिप सुनाया.
1: मेरे रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता, मैं भी नहीं.
0: And yes, the right answer is John Abraham. ये जो डायलॉग है ये है फ्रॉम द मूवी धूम और जॉन अब्राहम. काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही गेस किया. मोरिन आपका भी सही आंसर आया यहाँ पे. एंड एक हिंट आया यहाँ पे, हिज नेम इज फ्रॉम वन ऑफ द एनिमल नेम जॉन. अच्छा ये नहीं पता मुझे. एनी वे काफ़ी लोगों ने यहाँ पे सही गेस किया, कुछ लोग यहाँ पे नहीं गेस कर पाए सही, बट नो वरीज. और भी बातें आपके साथ करेंगे. 8 बजे के बाद एक टॉपिक लेकर आऊँगा जिसके ऊपर आपसे चर्चा करने की उम्मीद है. लेट्स सी इफ वी कैन हैव अ चैट दिस मॉर्निंग.
2: Accurate traffic.
3: Burgers are better at BK.
4: Fine and cloudy today, a high of 15. Coming into the city on the northern motorway, 35 minutes from Constellation Drive, heavy most of the way in from there. Northwestern, 42 in from Massey. A crash at Te Aratu, on ramp sorted, but heavy upper harbour to the causeway. Fine to Point Chev, then heavy again from there. Southern at 52 minutes in from Monaco, we're heavy on and off all the way from Papakura, and quite slow both ways on the southwestern.
3: From flame grilled whoppers to crispy chicken, the burgers are better at Burger King.
5: Rebel's end of season sale is still on. Score up to 50% off the big brands like selected Nike, Adidas, New Balance and more. Plus score a free Rebel Sport bag when you spend $50 or more. End of season sale is on now. Only at Rebel Sport. See you live at T's and C's.
6: Please use your imagination for the following ad.
7: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
8: imagine winning $35 million this Wednesday. Play in store or online.
9: Professional by Ninjas has

0: पैसे?
1: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, your local development expert. Free site assessment के लिए visit nzpmi.co.nz या call 0800 4 NZPMI.

थ्रोबैक में आपके लिए एक मस्त गाना लेकर आ रहा हूँ मोनाली ठाकुर की आवाज में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बॉलीवुड की थोड़ी खबर भी दे दूँ। बटवारा 1947 ये अगस्त में रिलीज होने वाली है एंड अराउंड इंडिपेंडेंस डे ये रिलीज होगी, दैट्स अराउंड 15th अगस्त। बट उससे पहले अब आज 21 जुलाई को इसका जो पहला गाना है ये रिलीज होने वाला है एंड लेट्स सी how the song is going to be. वैसे बटवारा 1947 is around again it's the reunion of Rajkumar Santoshi along with Sunny Deol. इस movie के around अब तक कोई ज़्यादा controversy आई नहीं है, लेकिन देखो ये मेरा guess है और ये मेरा assumption है, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस movie के around कोई ना कोई controversy आएगी थोड़े time में, और वो इसलिए आएगी क्योंकि इसकी कास्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। बटवारा 1947 में है सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फजल, अभिमन्यु सिंह। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शबाना आज़मी भी है इसमें, और शबाना आज़मी को रिसेंटली स्पॉट किया गया था प्रोटेस्ट में जो कल हुआ, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसमें शबाना आज़मी को देखा है। अब मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ कोई सीन प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है जिसके कारण बैन तो नहीं होगी ये मूवी वैसे, बट लेट्स सी। फिल्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय आमिर खान एंड अपर्णा पुरोहित, लेकिन कोई ना कोई तो ये चीज़ होने वाली है वैसे। हाँ, 14 अगस्त को ये रिलीज़ होने वाली है मूवी, पार्टिशन डे के दिन। सो या लेट्स सी हाउ द मूवी डज। बटवारा 1947, सनी देओल इज़ बैक, आई थिंक उनके बेटे के साथ इस बार।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: 8:02 हुए हैं. सुबह थोड़ी क्लाउडी रहने वाली है, लेकिन ड्यूरिंग आफ्टरनून थोड़े बहुत सन आपको दिखने वाला है. इट्स गोइंग टू गेट अ लिटिल ब्यूटीफुल. 7:27 को सनराइज हो गया है. 5:28 को आज होगा सनसेट. देयर विल बी सम हेवी शावर्स नॉर्थ ऑफ फंगापुरवा.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzara Smugco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Trend Patrol.
1: What's trending में अगर मैं आपको बोलूँ मेरे सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर रहा है तो इट विल गेट क्वाइट बोरिंग फॉर यू, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पे एक ही चीज़ दिख रही है भाई मेरे को, भाई टीयर गैस और बेटन्स और प्रोटेस्ट, बस यही है मेरे सोशल मीडिया पे. आई डोंट नो इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग द सेम थिंग, बट एनी वे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ आपको, कुछ अलग बताता हूँ और न्यूजीलैंड के अराउंड कुछ चीज़ बताता हूँ. तो सेंट्रल हॉक्स बे में एक सिंगल वन एंड ओनली एनिमल रेस्क्यू था जो अब क्लोजर फेस कर रहा है, क्योंकि लोकल काउंसिल इविक्ट कर रहा है इस चैरिटी को फ्रॉम द प्रीमाइस. सो या इट्स क्वाइट अ सैड थिंग. रुहाइने एनिमल रेस्क्यू, ये बेस्ड है वाइपू कुराओ में, और यहाँ पे एसपीसीए लोकेटेड था फॉर 30 ईयर्स, बट अभी क्लोज डाउन के बाद बेसिकली क्या हो गया, लैंड वॉज सोल्ड टू अ काउंसिल when the SPCA closed down in 2022, और उसके कारण अब ये जो एनिमल रेस्क्यू एरिया है वहाँ पे वो भी चला जाने वाला है. इट्स गोना बी वेरी टफ यार, एनिमल रेस्क्यू के बिना आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी बार काफ़ी जगहों पे अभी आजकल इनफैक्ट डॉग एंड कैट्स रस्ते पर घूम रहे हैं वाइल्ड, एंड देन वी सी एनिमल रेस्क्यू कार्स कमिंग इन एंड यू नो हेल्पिंग दम आउट, बट yeah, it's going to be difficult if there's going to be no animal rescue in Central Hawke's Bay. Because one and only animal rescue center tha wo. But anyway, thodi der mein aapke liye ek topic lekar aaunga. Us topic ke upar aapke saath main charcha karna chahunga. And this topic is going to be around the news that I read last hour. It was about travel insurance. Kafi jagah pe level 3 travel insurance ke warnings lag gaye hain, jahan pe kuch exclusions ho jate hain. To let's say agar aap Middle East travel kar rahe hain, to shayad aapka travel insurance will not be valid anymore. Well, it's always better for you to check and then travel. But my topic today is going to be around travel insurance. तैयार रहिए, रहिए. 0800 004866, इस नंबर को आपको कॉल करना है और आपकी स्टोरी शेयर करनी है. टॉपिक बताऊंगा आपको बस थोड़ी देर में.
3: Wow. Yeah.

0: आप सुन रहे हैं हम ब्रेकफास्ट शो जारी आपके लिए 104.2 FM और सिटी के अराउंड अगर आप है तो 87.7 FM पे भी आप हमें सुन सकते हैं या फिर रोवा ऐप के जरिए फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वेल यूजुअली हम कभी भी कोई चीज़ अगर खरीदते हैं मतलब कोई चीज़ जिसके लिए हमने पैसे दिए हैं हम उसको वसूल करना चाहते हैं, बट एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम वसूल नहीं करना चाहते और वो होती है इंश्योरेंस. आपको कभी नहीं चाहिए कि आप इंश्योरेंस लो और फिर आप बोलो कि अरे यार मेरे साथ ना ये हो जाए बुरा ताकि मैं उसको क्लेम कर सकूँ. आई डोंट थिंक वी शुड एवर प्रे फॉर दैट और होप फॉर दैट एज वेल, क्योंकि मेरे को लगता है बहुत टीडियस प्रोसेस होता है. मेरे को तो आज तक ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस तो मैंने कभी क्लेम किया ही नहीं है टचवुड, और मुझे कभी करने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है. बट एनीवे मैं आज आपसे स्टोरीज सुनना चाहता हूँ कि आपकी कोई स्टोरीज अराउंड ट्रैवल इंश्योरेंस आपने कब क्लेम किया है या फिर आपको क्या आपने एक्सपीरियंस किया है अराउंड आपने ट्रैवल इंश्योरेंस निकाला और फिर शायद आपकी फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई या कुछ हो गया आपने कैसे नेविगेट किया उसके अराउंड. 0800-004-866. आज इसके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ कंट्रीज़ पे लेवल 3 की वार्निंग आ गई है, मतलब लेवल 3 इंप्लीमेंट हो गया है, जिसका मतलब यह है कि ट्रैवल इंश्योरेंस माइट नॉट बी वैलिड इफ़ यू ट्रैवलिंग टू दोज कंट्रीज़. और अक्सर ये होता है व्हेन यू ट्रैवलिंग टू अ वॉर इन्फ्लिक्टेड एरिया, और अब मिडल ईस्ट में काफ़ी टेंस सिचुएशन हो गया है. सो 0800-004-866 इज़ द नंबर, गिव मी अ कॉल ओवर हियर एंड शेयर योर ट्रैवल इंश्योरेंस हॉरर स्टोरी. मेरे को लग रहा है आई एम वेरी श्योर कोविड के टाइम पे काफ़ी लोगों के साथ ये ट्रैवल इंश्योरेंस का कुछ तो ड्रामा हुआ रहेगा, बट अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो 0800-004-866 इज़ द नंबर, गिव मी अ कॉल हियर दिस मॉर्निंग एंड शेयर योर स्टोरी. वैसे अगर आप इस टॉपिक पे नहीं बात करोगे तो मैं एक और टॉपिक लेकर आऊँगा, लेकिन मैं आज बात तो करूँगा आपके साथ. मैं मेरा फाइनल डे है आज यार ब्रेकफास्ट शो में, आज आपसे बात किए बिना जाओ ऐसा हो नहीं सकता, तो इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ एक चलो अभी कॉल आ गया है. हाय आपका स्वागत है.
1: Hi, Rizbe, how are you?
0: I'm good, how are you doing?
1: Good. मैं वैसे usually call नहीं करती हूँ, but I have a very good story and it relates to our Indian community as well. So
0: sure.
1: I just wanted to share. So 5-6 years back, not COVID, I just took a travel insurance because I was going, me and my husband and my 1-year-old were going for his first birthday to Fiji. And humne travel insurance proper book karaya, everything. And then my mom unfortunately was diagnosed with cancer. So I had to go to India. And I couldn't go to that trip. And when I proceed with the claim, I got to know because I went to India and it was not any, like overseas was not Australia, they do not consider as an emergency. So meko thoda dicey laga ki aise kaise tum jab overseas covered hota hai for a family emergency, if you have to cancel your travel, it is covered, why they are putting a condition that main India gayi meri mom ke liye, but all the because I have given and everything, it is not valid. It is only valid if you travel to Australia.
0: Wow.
1: So this was, New Zealand, one of the very good AIA companies. And then they were like, no, we will not consider it. So maine phir review kiya usko, and maine likha ki, you are saying that you only cater to people who are in New Zealand and whose family is in Australia. And what about so many people who are immigrants, not only Indians, but anybody leaving, excluding Australian and New Zealander, you don't cater them. So why don't you tell your travel agent not to sell the policy to us? Because hamari residency back home hi hogi, kisi bhi nationality, jo bhi immigrant hai, okay. And then they agreed because mera argument sahi tha, and I'm like, this is like misleading. And you should train your staff not to sell us. You should ask us what is your nationality and where is your family before even selling this policy.
0: Point.
1: So, and they agreed, and then they paid me out for that travel. So, and it was not a little bit, it was like $5,000. So I was like, no, I have to fight for it. And also not even fight for my own money, but just that condition is not...
0: अगर आप यहाँ पे वो मेंशन होना चाहिए ना कि ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू ऑस्ट्रेलिया, मतलब
1: and then फिर वो किसी को भेज सकेंगे, जाएंगे ना, तो एट द एंड ऑफ द डे कि तुम जो पॉलिसी बेच रहे हो अगर तुम वो बोल दोगे तो तुम कितनों को बेच सकते हो.
0: एग्जैक्टली.
1: सो दैट वाज, या दैट वाज अ थिंग एंड आई होप दे हैव चेंज्ड द पॉलिसी वर्डिंग. I come from insurance background, so for me I knew how to review.
0: But generally,
1: like even I didn't read it, to be honest, because I didn't even think दूर दूर तक कि ऐसा हो सकता है.
0: That's
1: so
0: right.
1: It is, you know, हम यही सोचेंगे ना, generally if it is a family emergency, travel insurance हम इसीलिए लेते हैं कि cancellation हो due to a family emergency, so we will get paid. And it was all genuine. So yeah, but yeah, after a fight.
0: क्या नाम है आपका? शीना. थैंक सो मच फॉर शेयरिंग. थैंक यू. हाय, गुड मॉर्निंग. आपका भी स्वागत है.
2: गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू?
0: गुड गुड. हाउ आर यू डूइंग?
2: Good, good, very good. Yeah, I had a similar experience with the previous, similar to previous caller, but itna bura nahi tha mera.
0: Acha.
2: Itna mujhe zyada kuch nahi karna pada. Long time back, similar situation thi. Long time back, before COVID, maine plan kiya December mein India jana, travel insurance liya, aur unfortunately my father jo hai hospitalized ho gaye. October mujhe emergency jana pada. So I got cancelled all my plan in December, jo main jisme maine insurance liya tha. तो इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को बोला पहले आप दिखाओ कि आपका आपको पैसे नहीं मिले एयरलाइन से. और वो मैंने टिकट की थी किसी ट्रेवल एजेंट के थ्रू, उस वो नॉन कैंसिलेबल थी, नॉन चेंजेबल, नॉन कैंसिलेबल और नॉन रिफंडेबल एज वेल. तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे से बोला आपके फादर हॉस्पिटलाइज है उसका प्रूफ तो, और आपकी ये नॉन कैंसिलेबल नॉन रिफंडेबल है ये तो. मैंने दोनों प्रूफ दिए, आई गॉट माई मनी बैक. सिमिलर एक्सपीरियंस, माई ब्रदर केम फ्रॉम यूके 2 साल पहले और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी एलए से, एयर न्यूजीलैंड की स्टार लाइन, ब्रिटिश एयर लाइन इनसे बीच में थी, और अनफॉर्चुनेटली उनके बैग्स लंदन में ही रह गए थे ड्यू टू हैवी प्लेन हैवी हो रहा था समथिंग, और उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी मिस हो गई थी बिकॉज की एलए में आपको सारा बैग लेना पड़ता है फिर दोबारा चेकिंग करना पड़ता है.
0: ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जब ऑस्ट्रेलिया से भी ट्रेवल करते तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि बैग्स लगेज रह जाता है काफी बार. फिर क्या हुआ?
2: वो पीछे रह रहे, वेट करते रहे, वो वेट करते रहे लगेज ही, लगेज आए नहीं, ये फ्लाइट भी मिस हो गई उनकी. तो खैर फ्लाइट के पैसे और रहने का तो एयरलाइंस ने दिया, एयर न्यूजीलैंड ने दिया, बट जो बैगेज उनके यहाँ आके नहीं मिले उसके बेस पे उन्होंने काफी अच्छा क्लेम लिया, सारा शॉपिंग करी. जो भी उनका लिमिट था दे डिड अ शॉपिंग, क्योंकि 24 आवर्स से ज्यादा फ्लाइट डिले, वो बैगेज डिले हो गए थे. और दे गॉट अ क्लेम ऑफ जो भी उन्होंने यहाँ से फिर दोबारा जो भी खरीदे शॉपिंग करी जितना उनकी लिमिट थी, एंड विदाउट एनी प्रॉब्लम वो विद इन अ वीक उनके अकाउंट में आ गए थे.
0: इसको कहते हैं वसूल करना, ये सही है.
2: हाँ, लेकिन हमारे 2 दिन वेस्ट हो गए ना, हम कभी सिविया काम जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, उनका पूरा एक दिन उनका यहाँ आए वो 3 वीक.
0: नहीं, डेफिनेटली इनकन्वीनियंस है यार, डेफिनेटली इट इज डेफिनेटली इनकन्वीनियंट एंड इट इज
2: इनकन्वीनियंस को ही पेन करता है. दैट करेक्ट.
0: या नो दैट्स परफेक्ट. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. या थैंक्स.
2: नो प्रॉब्लम.
0: हाय, गुड मॉर्निंग.
3: Hi, morning, Rasbay. How are you?
0: I'm good. How are you?
3: Very well, thank you.
0: That's good.
3: हमारे साथ तो मतलब funny तो नहीं, but हमारी किस्मत थोड़ी अच्छी निकली. हमारा हम जैसे आप duty free India में shopping करते हैं ना, तो alcohol के साथ they give you those trolley bags. तो हमने एक flight से वो check in कराया था लेकर हम वापस जा रहे थे. तो हमने चेक इन कराया और जब हमें बैग वापस मिला तो उसके 2 व्हील्स टूटे हुए थे.
0: ओ, नए बैग के?
3: नए बैग के. मतलब हमने, हाँ, तो हमने क्लेम डाल दिया कि देखते हैं चलो क्या होता है ना. तो बैग डाला, मतलब क्लेम डाल दिया. उसके बाद उन्होंने पूछा कंटेंट्स क्या है, तो हमने उनको बता दिया कि भाई इसके अंदर टॉयज है, बैग्स और बुक्स है एंड ऑल दैट स्टफ. तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो हम क्लेम डाल देते हैं, बट आई डोंट नो वेदर पास हो गया तो ठीक है, और अगर हो गया तो कितने का होगा, वी डोंट नो. वी लाइक दैट्स ओके, दैट्स फाइन. सो द प्रोसेस वाज इजी. लेकिन जब हमें क्लेम मिला वापस, हमें डबल द अमाउंट ऑफ जो हमने पे भी नहीं करा था, हमें उतना क्लेम मिला.
0: ओह वाओ यार.
3: क्योंकि हमने अल्कोहल तो खरीदी थी इंडिया के एयरपोर्ट से, बैग हमें फ्री मिला था उसके बाद.
0: हाँ.
3: लेकिन जब उसके अंदर हमने बैग खोला तो उसमें ठीक है थोड़ा एक दो बॉक्सेस डैमेज भी थे, मतलब इतना नहीं था कि अंदर का चीज खराब है, ओनली तो बॉक्स वाज डैमेज जो हमने वैसे भी फेंक देना था, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर हमें बैग के भी पैसे मिले जिसका हमने कुछ नहीं दिया था।
0: क्या बात है।
3: कंटेंट के भी पैसे मिले विच वॉज वेरी, मतलब इंडियन रुपीज में इट्स वेरी मिनिमल, आई थिंक हमें ऑलमोस्ट 700 to 800 डॉलर का क्लेम पास हुआ।
0: दैट इज गुड यार, मतलब
3: जो हमने जम के शॉपिंग करी एकदम पहले कॉलर के उससे जो जम के शॉपिंग करी, इट वाज सो फन।
0: That's so cool, yeah.
3: Not a horror story, but a very funny story.
0: Funny nahi, vasool story. This is vasool story. This just motivates others to get a travel insurance. But don't make false claims, kyunki wo problem ho sakta hai usme. Aapka nahi tha wo.
3: Correct. No, absolutely. Hamara nahi tha. Aur humne to claim, humne socha bhi nahi tha ki humne kuch milega, to be honest.
0: Yeah.
3: We were very like thinking ki, arre iska kya hi denge. Wo zyada se zyada ek $50 ka voucher de denge. बोलेंगे इतना ही वर्थ है, अब क्या ही कर सकते हो।
0: पर
3: हमें बहुत सारा, यू नो, वी गॉट अ बिगर क्लेम बैक।
0: ऑसम यार,
3: सो थैंक यू टू दैट इंश्योरेंस कंपनी।
0: दैट्स गुड, सम गुड पॉजिटिव स्टोरी है टू स्टार्ट द मॉर्निंग। थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू। हाय, आपका भी स्वागत है।
4: हाय, गुड मॉर्निंग रुस्ते।
0: गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप?
4: मैं ठीक हूँ, आप अच्छे हो?
0: हाँ, मतलब बेटर हूँ अभी थोड़ा। हाँ बताइए।
4: मैंने एक मैं हमेशा इंश्योरेंस लेती हूँ। तो एक बार मैं आई वॉज गोइंग फॉर अ वेडिंग। तो दैट टाइम मे बी अभी से 15 ईयर्स बैक, तो वहाँ पे पहले वेयर हाउस इंश्योरेंस बेचती थी, वेयर हाउस ग्रुप, एंड इट वॉज लाइक बेसिकली अभी जो करते हैं बैंक ना, यू कैन यू हैव अ मास्टर कार्ड, यू कैन पुट इट ऑन दैट। तो I had taken the insurance which was only like $23, and then I went, and then I think 3-4 days before coming back, I went for a wedding, so itna jewelry lekar nahi gayi thi, but took some.
0: Yeah.
4: So I took my hired a taxi, and jaise wahan pe bol sakte hai ki can you wait, I need to buy something from this shop and I'm coming back. So the taxi driver said theek hai. So jab main gayi, फिर आई तो टैक्सी था ही नहीं वहाँ।
0: ओह नो, भाग गया वो।
4: भाग गया।
0: ओह नो।
4: तो द थिंग वो इतना ऐसे नहीं था कि बहुत महंगी चीजें थी, बट देयर वाज वन गोल्ड चेन एंड देयर वाज माय जैसे छोटी छोटी कैमरा, उस वक्त पहले जो कैमरा होता था वो था, ये सब थी क्योंकि आई वेंट फॉर अ वेडिंग। तो इंश्योरेंस था, मैंने कॉल्ड, व्हेन आई केम बैक आई कॉल्ड बैक, आई वेंट टू द, आई हैड अ पुलिस रिपोर्ट एज वेल। तो आई केम बैक, तो आई यहाँ पे, and they at that time it was I think underwritten by the IIG or AIG.
0: आप नाम क्यों ले रहे हो, सारे नाम लेकर मेरे को फंसा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है।
4: नहीं नहीं नहीं, मैं 15-20 साल की बात बता रही हूँ,
0: लेकिन आज फंसूंगा ना मैं।
4: अच्छा अच्छा,
0: हाँ
4: अच्छा, सॉरी।
0: हाँ नहीं नहीं,
4: अच्छा किसी
0: नाम मत लो कोई भी चीज के। हाँ बोलो।
4: हाँ, तो मैंने वहाँ पे कॉल किया एंड देन दे स्टार्टेड प्रोसेसिंग द इंश्योरेंस। तो फिर मुझे याद आया कि मेरा स्ट्रेटनर, आई डिडंट हैव माय स्ट्रेटनर बैग मेरा व्हेन आई केम बैक फ्रॉम हॉलिडे। तो फिर मैंने, मेरा भी अप्रूव हो गया है, उन्होंने बोला इतने का, मेरा भी कम ही था, बट दे रियली दैट टाइम थोड़ा लीनियंट भी थे।
0: हाँ, वो टाइम पे बहुत लीनियंट थे।
4: हाँ, एंड दे वर गिविंग, मुझे आई गॉट मोर देन व्हाट आई वाज इंश्योर्ड फॉर।
0: ओह वाओ,
4: सो दैट वाज रियली गुड। एंड हाँ, I got $5,000 उस वक्त, और मेरी चीजें इतनी उतनी की थी नहीं। तो फिर बाद में फिर मुझे याद आया, अभी पैसे मिले नहीं थे, मैंने कॉल के मैंने कहा मेरा स्ट्रेटनर नहीं है, आई थिंक माई स्ट्रेटनर वाज़न्ट देयर, आई कांट फाइंड इट। दे सेड कितने का था, एंड आई हैड अ रेमिंगटन स्ट्रेटनर 129, दो साल यूज करने के बाद। दे सेड टू मी गो टू वन ऑफ द शॉप्स जहां से लिया था रिसीट, बिकॉज दैट टाइम द कंपनी सेड द रिसीट इन द सिस्टम एज वेल, एंड दे अप्रूव मी दैट एज वेल। तो ये हो गया, तो यू नो इट वाज सो स्मूथ, इतना अच्छा था। मैंने अपनी कॉल मॉम एंड आई सेड ऐसा ऐसा हो गया, मेरी बहन बगल में थी, बोलती है हाँ गुड, बिकॉज आई हैव गॉट योर स्ट्रेटनर, मैंने निकाल लिया था।
0: ओह क्या बात है यार। क्या बात
4: है, वो छोटी है ना मुझसे, तो देखता है अभी फीजी में, अभी आप सोचो 16 to 17 ईयर्स बैक सभी बार स्ट्रेट कर रहे हैं। तो बोली बोली कि दीदी मैंने निकाल लिया था, आई डिडंट टेल यू दैट टाइम, बट अब बता सकती हूँ।
0: That's good, that's good. Awesome. थैंक्स चल, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच गाइस, मजा आया आज आपसे बात करके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। अभी आपको कुछ मैसेजेस सुनाता हूं एंड देन उसके बाद वी विल हैव बॉलीवुड्स मोस्ट वांटेड फॉर यू।
5: G'day Kiwis, Kogan Mobile here. I'll be honest, we're Australian. Sorry about that. But it's about time you got a taste of Aussie-style pricing. Right now, get a yearly prepay plan from just $160. Crikey! I know what you're thinking. And no, I'm not joking. And no, it's not too good to be true, because it is true. Kogan Mobile, true Aussie value. Terms and conditions apply.
6: Feed the faith with the 1NZ Warriors range, exclusively at Wendy's. Try the new signature burgers, salted caramel frosty and cookie dough bites. Order on the Wendy's NZ app to win weekly prizes and lunch with the players. Only at Wendy's. T's and C's apply.
7: आजकल लीगल इन्फॉर्मेशन पर सब ज्ञान देते हैं, जैसे खुद कोई गूगल हो,
8: मगर सही गाइडेंस विद करेक्ट लीगल प्रोसेसेस तो एक ही है, सुपर जोड़ी ऑफ राजन आशिमा फ्रॉम लीगल एसोसिएट्स, नोटरी पब्लिक, बैरिस्टर्स एंड सॉलिसिटर्स।
9: लीगल एसोसिएट्स लॉ फर्म बेस्ड इन साउथ ऑकलैंड डील्स इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस एंड प्रॉपर्टी, लीजेस, सब डिविजन, इमिग्रेशन एंड क्रिमिनल लॉ, नोटरी सर्विसेज एंड पावर ऑफ अटर्नी। फॉर अपॉइंटमेंट्स विद राजा आशिमा कॉल ऑन 09279439 और विजिट legalassociates.co.nz।
10: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
11: क्यों, क्या हुआ?
10: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
12: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800 564 424।
13: Sorry to interrupt, but we know someone who's perfect for you. They're kind and warm, interesting and fun. They've got so much going for them. Can we set you up with Auckland?
14: Neighbourly News, local stories for you to love where you live. Search Neighbourly News today.
15: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
16: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
17: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton. Hollywood's most wanted.
18: Kundi khad rao, ya seedha andar aao.
19: Main laao apna A game.
17: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू हंपलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है। और आज मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस के अराउंड टॉपिक छेड़ा था और बोला था कि कोई अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस के अराउंड कोई स्टोरीज है तो वो शेयर कीजिए। एंड काफी बढ़िया कॉल्स आए यहाँ पे, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल्स। मैं बस आपको याद दिला दूं कि गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर लिया है ट्रैवल वार्निंग्स फॉर पॉपुलर कीवी स्टॉप ओवर डेस्टिनेशंस, क्योंकि टेंशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में वो रैम्प अप हो रहे हैं अगेन। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड एमफैट, इन्होंने कहा है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड कतार के लिए एज वेल एज बहरीन, कुवैत और ओमान के लिए लेवल 3 उन्होंने कर दिया है। तो प्लीज़ अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल, तो ये नोटिफिकेशन जो है ये बाहर आ गई है, अवॉइड नॉन एसेंशियल ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल इंश्योरेंस भी उस पर अफेक्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग टुडे। थोड़ी देर में आपके लिए और भी बातें, क्या हो रहा है बॉलीवुड में इसकी बातें भी करेंगे।

0: आप सुन रहे हैं हम्बलिंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स, लेजेंडरी राहत फतेह अली खान आ रहे हैं हमारे सुपर सिटी में बहुत जल्द। उनका स्वागत नहीं करोगे आप? वेल, पहुंच जाइएगा ट्रस्ट अरीना 25 जुलाई, dryticketscom पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइफ, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस एंड शहजादा प्रोडक्शन। आप ट्रस्ट अरीना में विटनेस कीजिएगा द लेजेंडरी राहत फतेह अली खान को परफॉर्म करते हुए इसी वीकेंड पे 25 जुलाई को। ही इज गोइंग टू बी फैबुलस। पिछले साल उन्होंने जो शो किया था, आई थिंक इट वॉज जस्ट आउटस्टैंडिंग, और इस साल मुझे लग रहा है और भी ज़्यादा प्यार उन्हें मिलने वाला है। तो पहुँचिएगा ज़रूर सैटरडे को 25 जुलाई ट्रस्ट अरीना में। dryticketscom पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे।
1: Accurate traffic.
2: Spend a day in Mission Bay. Food, flicks, fun.
3: A little sun today. Got a high of 15 degrees. Coming into the city, northwestern, 40 minutes from Massey to town. Slow from Upper Harbour. Heavy there and the causeway to Point Chev. Not too bad through Te Aratu. Southern, 50 minutes in from Manukau. Slow from Takanini. Heavy from Manukau. Got a crash southbound just before Drury. Northern, 32 from Constellation Drive. Slow at Silverdale. Heavy patches, Greville to the bridge.
2: New arrivals, familiar favourites. Iconic waterfront location. missionbay.co.nz.
4: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा। न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काउ घी। जब खाने में होगी इतनी शुद्धता, इतना स्वाद, तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा।
5: मुझे भी।
4: कशिश प्योर देसी घी, अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड। खुशियाँ पकाए, खुशियाँ खिलाए।
6: Being fussy is just knowing what you want. So, be more fussy.
7: Celebrate the fussiness of every individual cat. Share in the unspoken language of leg rubs and scratches. Because your cat deserves meals created just for them. Meow. Fussy Cat is made with the meaty taste cats love. Delivering quality nutrition with delicious variety across every meal. Available at your local supermarket. Well, if they're fussy enough. Serve up the meaty taste cats crave. Fussy Cat. Be more fussy.
8: Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard.
9: Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Tāmaki Tūriki, all together Auckland.
10: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations, 11 Boulderwood Place, Wiri. Call 24/7 on 0927-88600.
11: Please use your imagination for the following ad.
12: If I won Powerball, the first person I'd tell would be and would surprise all our friends by
11: Imagine winning $35 million this Wednesday. Play in store or online.
13: The Breakfast Show with Weejay and Pooja.
14: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
15: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.
0: आप सुन रहे हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। वैसे एक क्रेजी आर्टिकल हाथ लगा है एंड दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ब्रिस्बेन में एक वुमन ने नेचुरली कंसीव किया है आइडेंटिकल क्वाड्रुप्लेट्स, और ये वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्थ्स इन द वर्ल्ड रहा है। इन्होंने डिलीवर किया एट 28 वीक्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या एट 28 वीक्स एंड 4 डेज। और उसके बाद मतलब ये चार बच्चे जो है ये बेसिकली दे ऑल शेयरिंग द वन प्लेसेंटा एंड स्प्लिट फ्रॉम अ सिंगुलर फर्टिलाइज्ड एग इन वन ऑफ द फ्यू नोन केसेस ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, या मैं जब पढ़ रहा हूँ तभी मेरे को तो ऐसा कुछ तो हो रहा है, लेकिन या चार बच्चे क्वाड्रुप्लेट्स रेयरेस्ट बर्थ्स हुए हैं, वन ऑफ द रेयरेस्ट बर्थ्स। तो या वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्राइटनिंग एज वेल। बट यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।

0: Unfiltered with Sandy and Rizvi. क्योंकि दुनिया में already बहुत सारे perfect, polished, Instagram-friendly stories हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं. यहाँ कहानियाँ होती हैं raw, emotions होते हैं real और conversations होते हैं बिना mask के.
1: राजा, मंत्री, चोर, सिपाही सब यहाँ आते हैं.
0: Unfiltered with Sandy and Rizvi on Rowa, Spotify or anywhere you get your podcast.
2: Hum, accurate traffic.
3: Shower dome, shower tops.
4: A little sun today, got a high of 15 degrees. Coming into the city, northwestern, 40 minutes from Massey to town. Slow from Upper Harbour, heavy there and the causeway to Point Chev. Not too bad through Te Aritu. Southern, 50 minutes in from Manukau. Slow from Takanini, heavy from Manukau. Got a crash southbound just before Drury. Northern, 32 from Constellation Drive. Slow at Silverdale, heavy patches, Greville to the bridge.
3: Eliminate shower steam by simply fitting a shower dome. Showerdome.co.nz.
5: Auckland, taiyar ho jao ek sufi raat ke liye. Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shah Zaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.
6: बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन कोरमा या चना मसाला रेसिपीज चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए शान फूड्स असली स्वाद हर घर के लिए
7: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77 हीरा नॉर्थ एंड वेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइस provider.
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras, Manukau. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
0: The Rush Hour. Brought to you by Rajan Ashima of Legal Associates, Barristers and Solicitors, Papatoy and Hamilton.

0: गुड मॉर्निंग, यू आर लिसनिंग टू हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स। ब्रेकफास्ट शो आपके लिए जारी है, गानों का सिलसिला तो एक से एक। वैसे 9 बजे के बाद आपके लिए यहाँ पे एक न्यूज आइटम भी शेयर करूंगा और प्लस कम्युनिटी में जो इवेंट्स हो रहे हैं इसके डिटेल्स भी आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा मैं, और बाकी गाने तो आपको सुनाऊंगा ही। तो या वी आर गेटिंग इन टू द फाइनल आवर ऑफ द शो। उसके बाद कल से मुझे ड्राइव शो में आप जरूर सुनना, याद रखना। ड्राइव शो में सैंडी के साथ मैं आता हूँ 4 बजे से लेकर 7 बजे तक, आपका मनोरंजन करता हूँ वाइल योर ट्रैवल बैक होम। बट इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, गरबा नाइट विद राज गढ़वी अगर आपको सेलिब्रेट करनी है तो ऑकलैंड में आ रहे हैं राज गढ़वी लाइव परफॉर्म करने के लिए ऑन सैटरडे 1st of August एट महात्मा गांधी सेंटर। eventstickets.co.nz पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे, या आप स्वप्निल शाह को कांटेक्ट कर सकते हो 0224394739 पे। अगर आपको डबल पास यहाँ पे जीतना है तो RG स्पेस आपका नाम लिखकर भेजिए ऑन 5599 एंड यू विल बी इन द ड्रॉ टू विन अ डबल पास फॉर दिस शो, गरबा विद द सेंसेशनल राज गढ़वी एट महात्मा गांधी सेंटर। इसको लेकर आ रहे हैं आपके लिए लोटस प्रोडक्शंस, श्री इवेंट न्यूजीलैंड, विनय मेहता और प्रांची ग्रुप, और ये आपके साथ ये कल्चरल सेलिब्रेशन ऑफ द ईयर सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रूर पहुँचिएगा एट द महात्मा गांधी सेंटर। eventstickets.co.nz पे टिकट्स बुक कीजिए आज ही।
1: ओ वेलकम है जी, अपना ही गैराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: ਲੱਗੀ ਲੱਗੀ
1: ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪਵਾਏ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗੁੱਡਵੈਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ
2: Accurate traffic.
3: Simplicity means lower KiwiSaver fees.
4: Fine spells, a lot of cloud today, high of 15. Motorways starting to ease northern, under half an hour in from Constellation Drive. Now we've got heavy patches from Greville to the bridge. Northwestern at 35 minutes in from Massey. Slow from Massey. Heavy spots on and off, but not too bad through Te Aratu. Southern at 45, Manukau to town. Slow from Takanini. Heavy patches, Manukau to Ellerslie. Southwestern, slow northbound at Whitty.
3: Keep more of your money with Simplicity, the low fee, non profit KiwiSaver provider.
5: जब कशिश देसी घी से खाना बनेगा तो यही तो होगा न्यूजीलैंड में मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी से बना ग्रास फेड दानेदार काऊ घी जब खाने में होगी इतनी शुद्धता इतना स्वाद तो आपको भी किचन में कुछ ऐसा सुनाई देगा
6: मुझे भी।
5: कशिश प्योर देसी घी अवेलेबल एट ऑल लीडिंग स्टोर्स इन न्यूजीलैंड खुशियाँ पकाए खुशियाँ खिलाए
7: अपने सपनों की दुनिया बनाने वी ऑल केम हियर एंड वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट देम बट व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग लाइक अ कैंसर डायग्नोसिस एन एक्सीडेंट और अ हार्ट अटैक योर इंश्योरेंस क्लेम्स ओनली सक्सीड इफ योर एप्लीकेशन वाज डन राइट फ्रॉम द स्टार्ट एट अश्योर वन नितेश शीरा वर्क्स विद यू टू मेक श्योर डिटेल्स आर कैप्चर्ड नथिंग इज मिस्ड नथिंग फॉरगॉटन बिकॉज द राइट एडवाइजर नोज द एप्लीकेशन प्रोसेस द पॉलिसी वर्डिंग एंड नोज एग्जैक्टली व्हाट इट टेक्स फॉर अ क्लेम टू बी सक्सेसफुल अश्योर वन प्लान फॉर टुमारो टुडे कॉल 0800-77-HEERA नॉर्थ एनवेल एडवाइजरी लिमिटेड ट्रेडिंग एज अश्योर वन इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइस
8: सुनो बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी
9: हाँ मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा घर ले लें
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉलिसी बात कीजिए मेरे दोस्त ने भी की थी अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए अब रेंट भी आ रहा है
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने NZPMI सब संभाल लेगा NZPMI योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI
10: The Bedzara's birthday sale is on now with amazing savings like the chiropractic HD Radiate bed now half price queen size from 2799 find more birthday deals in store and online Bedzara's Medical and Poke Coke celebrating 36 years of great sleep
11: Hum time check Hum news brought to you by Logic Finance Limited changing lives with logic
12: Morning, I'm Grace Cocker with the latest at 9. Rental demand remains strong despite prices staying largely steady. Data from Trade Me shows the national weekly median held at $620 in June. Spokesperson Casey Wild says this does not mean renters can easily pick and choose.
13: Demand is incredibly resilient. We've seen a 15% surge in search activity compared to last year, meaning the competition for good properties is still very much there.
12: There are delays following a three-vehicle crash on Auckland's southern motorway at Drury. It happened near the Papakura on-ramp, with southbound traffic down to one lane. The Green Party's call for a new publicly owned power company has drawn criticism. James Ross from the Taxpayers Union doubts it would achieve much.
14: We already have three majority state-owned power companies. What is creating a fourth scale to really shake up? And when it costs $1 billion, I think we have to very seriously ask the question, what is this actually going to change?
12: The Tate brothers will remain in custody as they fight extradition to the UK. The controversial influencers appeared in a US court today. Their lawyer, Joseph McBride, says they're innocent of the rape and sex trafficking charges.
15: It's garbage. It's a stitch-up job. They're after us. Keir Starmer just retired. I'm sure he's mad that Andrew and Tristan Tate had a lot to do with his fall.
12: To motorsport with Megan Turbo's 80,000k tyre warranty and this morning's IndyCar race in Nashville.
16: On board with Scott Dixon, right into the back of Alexander Rossi. Looked like Rossi just slowed down out of absolutely nowhere.
12: Sir Scott Dixon's crashed out on Sky Sport while fellow Kiwi Scott McLaughlin's dropped to 10th, approaching the end of the 225-lap race. And a career-high golf ranking for Ryan Fox, who's up to 22nd in the world following his victory at the Open Championship.
11: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papa Toy and Mount Roskill. The beat of Bollywood.
17: World's best, hamari good brands nahi hai.
11: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800-462626.
18: Weather ka hal theek hai, thodi bahut showers ho sakte hai subah ke time, but feels like 10 degrees, 10.3 actual temperature, 2 layers of clothing is recommended, and during the day temperature is going to go as high as 14 degrees today. 5:28 pe aaj hoga sunset.
11: The breakfast show.
0: Show with Vijay and Pooja.
2: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage inspired furniture for everyday luxury living.
19: What's going on?
18: गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे ब्रेकफास्ट शो. 9 बज चुके हैं, मैं हूं रुजबे आपके साथ यहां पे 10 बजे तक, और आज का मेरा फाइनल डे है ब्रेकफास्ट शो में. तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड लिसनिंग इन. मैं ड्राइव शो में रहूंगा कल से आपके साथ 4 बजे से 7 बजे के बीच, तो ज़रूर वहां पे भी ध्यान से सुनना हमें. अब आज मैं आपके साथ एक बहुत ही वियर्ड स्टोरी शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये सेगमेंट ही है क्या बकते हो. एकदम ही मेरे को देखकर ये सेगमेंट शायद रखा है, क्योंकि मैं बकते रहता हूँ एनीवे. लेकिन ये जो स्टोरी है ये है 1518 की, सन 1518, जहाँ पे ये केस हुआ था ऑफ डांसिंग प्लेग. तो बेसिकली ये फ्रांस में हुआ था इन मिडल ऑफ समर. एक वुमन थी, उनका नाम था फ्रॉ ट्रॉफी, और ये रास्ते के बीच में ऐसे ही गई रैंडमली एक दिन, और डांस करना उन्होंने शुरू कर लिया. और उन्होंने डांस करना रोका ही नहीं अपने आप को, बस डांस करती गई करती गई. आवर्स देन डेज, एक हफ्ते में 34 और लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया, एक महीने में 400 लोगों ने और ज्वाइन किया, एंड दे ऑल वर जस्ट डांसिंग ऑन द स्ट्रीट्स अनकंट्रोलेबली. पार्टी नहीं थी ये, ना ही ये कोई ऐसा नाइटमेयर कोई ऐसा कुछ था, बट डांसर्स इतना डांस कर रहे थे कि उनको वहाँ पे डांस करते करते एग्जॉशन हुआ, हार्ट अटैक हुआ, स्ट्रोक्स भी आए, येट वो कभी रुके ही नहीं. वो तब तक नाचते गए जब तक उनके फीट से खून आया, उनके कपड़े फट गए. काफ़ी लोग तो वहाँ पे कोलैप्स हुए, काफ़ी लोगों की मौत भी हुई वहाँ पे. लेकिन आज भी काफ़ी हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट कंफ्यूज्ड है कि भाई ये एक्चुअली में हुआ क्या था, क्यों लोग ऐसे नाच रहे थे. कुछ कह रहे हैं कि एक कोई एर्गोट पॉइजनिंग हो गया था, एक मोल्ड है जो ग्रो होता है ब्रेड के ऊपर, जिसके कारण हेलुसिनेशंस होते हैं या स्पैजम्स होते हैं. कुछ कह रहे हैं कि ये कुछ और ब्रेकडाउन था, क्योंकि एक फैमिन था उस टाइम पे, और उस फैमिन के टाइम पे उस स्ट्रेस के कारण आई थिंक देयर वाज सम अदर रिएक्शन दैट टुक प्लेस, जिसके कारण पीपल कुडंट स्टॉप मूविंग. लेकिन आज भी ये दिन जो है हिस्ट्री में मोस्ट अनबिलीवेबल एंड चिलिंग मिस्ट्रीज माना जाता है, व्हेन पीपल स्टार्टेड जस्ट डांसिंग रैंडमली ऑन द स्ट्रीट्स. वेल, मे बी डांसिंग इज़ बेटर देन, अभी जो प्रोटेस्ट का हाल हो रहा है इंडिया में, उससे बेटर मुझे लग रहा है कि डांस इंडिया में नहीं हो सकता ये वैसे, क्योंकि वहाँ पे वो अगर कोई ऐसा नाचने लगेगा तो उसको पहले डंडे मारेंगे. खड़े रहने के लिए डंडे मार रहे तो भी नाचने के लिए तो 100% मारेंगे ना. एनीवे, वी विल कीप यू पोस्टेड ऑन व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड एज वेल. लेकिन हमारे यहाँ पे कम्युनिटी में क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूँगा मैं बस थोड़ी देर में. सुनते रहिए हम

0: What's going on?
1: What's up?
2: What's up, Auckland?
3: आप सुन रहे हैं हम बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स आपके लिए यहाँ पे एक से एक गाने लेकर आते हैं लेकिन कम्युनिटी में काफी सारे इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी डिटेल्स आपके साथ हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। रामलीला अ डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस ये हो रहा है 8 अगस्त को, डेट सेव कर लीजिए। न्यूजीलैंड आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट ये आपके लिए लेकर आ रहे हैं। मोर डिटेल्स कमिंग सून। अखंड रामायण पाठ हो रहा है श्री राम मंदिर में 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन सैटरडे 1st एंड संडे 2nd अगस्त को। वह हेल्थ एंड वेलबींग एक्सपो इसी वीकेंड संडे 26 जुलाई को होने वाला है A1 इवेंट सेंटर में सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। यहाँ पे भी आप पहुँच सकते हैं फॉर प्रॉपर स्क्रीनिंग्स। कुछ इन्फॉर्मेशन सेशंस होने वाले हैं वहाँ पे, अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वहाँ पे, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के ऊपर बातें होगी, तो ज़रूर आप इसका हिस्सा बनिएगा। और न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन आपको इनवाइट कर रहे हैं 4th न्यूजीलैंड कैरम टूर्नामेंट के लिए, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। पंकज मोंगा को आप कॉल कीजिए 0210905067 अगर आपको रजिस्टर करना है इस टूर्नामेंट के लिए। 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट 22nd और 23rd अगस्त को बर्कनहेड स्काउट्स हॉल में होगा एंड यू कुड बी वन पार्टिसिपेटिंग इन इट एज वेल।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद विजय एंड पूजा। Driving you home. The drive show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला।
4: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ भी किसने बनाया, वो एक लड़की थी वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
5: अच्छा आप दिलजीत हो?
4: आए आए बताओगे यार।
0: Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us. Sleep easy for less at Beds R Us Manukau and Pukekohe. Sleepyhead Sleep Easy Queen Beds from only $7.99 on sale now. And Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
6: At Specsavers Winter Sale, get 50% off lens options when you get two pairs from the $169 range or above. So you could get your hands on our smudge resistant lenses. Or for a change, try Light Reactive with 50% off. Hurry, sale ends August 1st at Specsavers. Savers. Conditions apply.
7: Sorry, officer. I'm running late for work and I didn't realize I was speeding. I can't have been that much over, though. I mean, everyone's going that fast. And I'm the one that gets pulled
8: over the center lane and crashed into an oncoming vehicle. She was going too fast, lost control. The fire team's attempting to remove the driver. We've heard it all. We've seen it all. Slow down.
0: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jaiku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jaiku J7 models and choose between $2,000 cash back or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jaiku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
9: The moment that matters. When you make a claim, it's too late to fix your insurance application at that time. At Assure One, we work with you to make sure every detail is captured upfront, even the things you think don't matter. Because the right advisor knows exactly what the insurers need to know and make sure nothing is missed to ensure claims get paid. That is how trust is built. Assure One, Nitesh Hira, your insurance advisor in Auckland. Call 0800-77-HIRA. North Invale Advisory Limited, trading as Assure One, is licensed financial advice provider.
10: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार।
11: क्यों, क्या हुआ?
10: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे। बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत। एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स। फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में। गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है।
0: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
12: Get ready for massive savings at Carpet Court and Curtain Studio. Save on carpet, hard floor, rugs, curtains and blinds. Don't miss these unbeatable deals. Only at Carpet Court and Curtain Studio. 3 days only, starts Thursday.

0: Breakfast Show with Vijay and Pooja.
1: Brought to you by Fortune. With whole grains and essential vitamins, Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune. And Harrington Living at Bedzaras Manco. English heritage-inspired furniture for everyday luxury living.
2: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स. वैसे आपके लिए यहाँ पे ब्रेकफास्ट शो जारी है अभी, और आपको मैं बता दूँ राहत फतेह अली खान आ रहे हैं हमारे सुपर सिटी में ऑन द 25th of July. dryTickets.com पे आपको इसके टिकट्स मिल जाएंगे. आप इसके टिकट्स फटाफट बुक कीजिए और बाय कर लीजिए. एंड मुझे एक सवाल है आज आपके लिए. देखो, मैं एक हफ्ते से आपके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ. आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. आपको क्या लगता है कि जब मैं ब्रेकफास्ट शो करता हूँ तो आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है या क्या नहीं पसंद आता है सबसे ज़्यादा? ठीक है, 5599 पर BF कीवर्ड के साथ आप यहाँ पे लिख कर भेजिए. जब मैं करता हूँ तब आपको क्या पसंद आता है या क्या नहीं पसंद आता है ब्रेकफास्ट शो में, ये आप ज़रूर लिख कर भेजिए 5599 पर. प्लीज़, आई वुड रियली वॉन्ट दिस फीडबैक. देखो, हम हर जगह जाते हैं, हम फीडबैक मांगते हैं और फीडबैक देते हैं, तो यहाँ पे मैं भी आपको एक फीडबैक मांग रहा हूँ, तो ज़रूर दीजिएगा यार, अच्छा रहेगा मेरे लिए. सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं बहुत बिलीफ रखता हूँ, तो बताइएगा मुझे ज़रूर 5599 पर BF कीवर्ड के साथ कि क्या ऐसी चीज़ है जो मैं को मेरी आपको ब्रेकफास्ट शो में अच्छी लगती है या नहीं अच्छी लगती है. दोनों चीज़ आप बता सकते हो यहाँ पे, तो फटाफट बताइएगा. ठीक है,
3: अपना A-game.
0: Brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

0: आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड बिगेस्ट हिट्स एंड बॉलीवुड की खबर भी आपके साथ हम यहाँ पे शेयर करते हैं। अर्चना पूरन सिंह का रिसेंटली इंटरव्यू हुआ और उन्होंने बात की अबाउट हर फिल्म करियर। और एक्चुअली अर्चना पूरन सिंह बहुत बढ़िया एक्टर भी है, उन्होंने बहुत अच्छे रोल्स भी किए। बोल बच्चन में उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था, कॉमेडी वाले रोल्स बहुत अच्छा करती है वो। और उन्होंने शेयर किया यहाँ पे कि बोल बच्चन के बाद उन्हें कुछ ट्रेड एनालिस्ट ने कॉल किया था और कहा था कि भाई आपको ऑफर पे ऑफर आने वाले अभी रोल्स के लिए, सो आप तैयार रहिएगा। तो अर्चना पूरन सिंह ने कहा था उन्हें कि मैं जैसे ही मुझे कोई एक ऑफर आता है मैं आपको ज़रूर कॉल करूँगी और बताऊँगी। एंड 10 साल हो गए उन्हें कोई कॉल नहीं आया, कोई ऑफर नहीं आया। रिसेंटली उन्हें एक्चुअली हमने देखा था कुछ मूवीज़ में, वो फिर से आई थी एंड काफ़ी कमाल प्रदर्शन भी किया था उन्होंने उस मूवीज़ में, जैसे कि विक्की विद्या का वो वाला वीडियो, इसमें भी वो थी। एंड देन टोस्टर में भी उन्होंने एक रोल किया था, टोस्टर में भी काफ़ी बढ़िया रोल किया था एक्चुअली। बट या इसके अलावा आई थिंक बिकॉज ऑफ हर टीवी स्केड्यूल, टीवी पे वो ज़्यादा थी, उसके कारण उनको ज़्यादा अवेलेबिलिटी भी नहीं थी मूवीज़ करने की। बट नाउ आई थिंक शी इज़ ऑल सेट टू डू मूवीज़ अगेन, सो होपफुली वी गोना सी अर्चना पूरन सिंह इन अ फ्यू मूवीज़ फ्रॉम नाउ ऑन। वेल लेट्स सी, गुड लक टू हर। बट और भी बातें आपके साथ करूंगा, सुनते रहिए हम।
1: Mornings made better.
2: दो फ्राइंडा, चार टोस्ट, बटर जैम और एक स्पेशल चाय.
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja. The Breakfast Show with Vijay and Pooja.
3: बुरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
4: Those people who live around the Hunua area, वहाँ पर 1 degree है टेम्परेचर।
5: जितने भी लोग इस इलाके में हैं, enjoy करते रहे आप। West side है ना, west side of Auckland है ये। I have lots of fun basically with the cold weather.
4: कौन है?
5: Hunua और Waitakere।
4: अच्छा Hunua west में?
5: किधर है Hunua?
1: The Breakfast Show with Vijay and Pooja.

0: going on.
1: You're listening to Hum on 104.2 FM and Roa app. वैसे सिटी के अराउंड अगर आप है तो 87.7 FM पे भी आप ट्राई कर सकते हैं सुनना. वैसे हम पॉडकास्ट काफ़ी आपके लिए लेकर आ रहे हैं. हमने रिसेंटली अनफिल्टर्ड ड्राइव में ब्रेकिंग बैरियर्स के ऊपर बात की है शनील लाल के साथ ऑन LGBTQ+ राइट्स, रेसिज्म, रिप्रेजेंटेशन एंड द सर्च फॉर इक्वालिटी. शनील लाल इन्हें बेसिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ट्रांस नॉन बाइनरी वकासलेवा या फिर हिजरा एज दिस अ प्रोमिनेंट टर्म इन इंडिया एज वेल. ये आयतरोआ के न्यूजीलैंड जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, LGBTQ+ एक्टिविस्ट है और इनके साथ हमने ढेर सारी बातें की है. यंग न्यूजीलैंडर ऑफ द ईयर 2023 में इनको मिला था और ये ऑकलैंड प्राइड के एक वेटरन ट्रस्टी एंड बोर्ड मेंबर भी है. काफ़ी जगहों पे अपने आप को ये प्रेजेंट करते हैं और हमारे साथ अनफिल्टर्ड पे इन्होंने काफ़ी खुल के कुछ बातें की है. हमने काफ़ी सवाल भी इन्हें पूछे हैं अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स और हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है इस एपिसोड पे. अगर आपने अब तक नहीं सुना, ड्राइव लिख कर भेजिए 5599 पे एंड यू विल गेट द लिंक फॉर दिस एपिसोड. इसके साथ साथ ब्रेकफास्ट कैचअप भी आप सुन सकते हैं और ब्रेकफास्ट कैचअप सुनने के लिए आप BF लिखकर भेजिए 5599 पे एंड यू विल गेट द लिंक फॉर ऑल द शोज फॉर ब्रेकफास्ट शो जो आप कैचअप कर सकते हो. इसके साथ साथ हमारे केतन का एक नया गाना आया है सफ़ायर 2.0 जो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसने गाया है और उसको शूट भी किया है. इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पे या फिर हमारे फेसबुक पेज पे. तो सफ़ायर 2.0 को सर्च कीजिए एंड यू कैन गेट द लिंक फॉर दैट एज वेल.

आप सुन रहे हैं हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और देखते देखते मेरे जाने का वक्त यहाँ पे आ गया है। मैं दिल से अपोलोजाइज करना चाहूँगा यार कि मैं ब्रेकफास्ट शो करने आया लेकिन मेरी हालत बहुत पतली रही थी ये पूरे हफ्ते। आई वॉज जस्ट स्ट्रगलिंग विथ कफ एंड कोल्ड एंड आई एम सॉरी दैट यू हैड टू हियर टू दिस वॉइस या फॉर द होल मॉर्निंग, बट एनीवे मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ यहाँ पे बात करके और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ब्रेकफास्ट शो पे आऊँ तब फुल 100% हेल्थ के साथ आऊँ ताकि और भी मज़े कर पाऊँ यहाँ पे शो पे। बट बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस यहाँ पे आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। सारे मैसेजेस पढ़ने का टाइम नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगा आपके इन मैसेजेस को पढ़ के। काफ़ी फीडबैक भी है वहाँ पे तो इस फीडबैक को भी ले जा रहा हूँ मेरे साथ और ड्राइव शो में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूँगा, तो ड्राइव शो सुनिएगा ज़रूर कल से, मतलब आज भी सुनिएगा, सैंडी रहेगी बट हाँ कल से मैं वहाँ पे रहूँगा फिर से सैंडी के साथ 4 से 7 के बीच। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, एंजॉय एंड स्टे सेफ, बाय।

मोहब्बतों में जीने वाले खुश नसीब हैं, मोहब्बतों में मरने वाले भी अजीब हैं। अजीम है हमारी दास्तां जाने मन, फासलों पे रहते हैं।

0: सकते हैं जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफ एम के वाइब्स. मीडिया वर्क के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर डिजिटल हो या स्टैटिक वी've got the spotlight for your brand. Call me Kashika on 021-769-755. Media works. Media that works.
1: It's the truth. You know it. Your girl group do everything together. There's even a name for it. Dogetherness. Oh, cute. So why don't you do something new? Something that really matters. Something like giving blood or plasma together. This winter, with all the dreaded lurgies around, NZ Blood needs blood and plasma more than ever, and one donation could save lots of lives. Get your blood buddies together, then book a time to donate at nzblood.co.nz. Oh, and coffee is included. Give blood, give plasma, save lives.
2: Fiji is on sale now at Flight Centre. Enjoy the ultimate tropical escape with 5 nights plus flights from $1,999 per person. Book in store today. Departs Auckland, fees, T's and C's apply. Flight Centre, your centre for travel.
3: Cancer touches almost all of us in some way. This Feel Better Month at Farmers, buy a participating beauty product or make a donation in store. At a time when cancer can leave people feeling overwhelmed and uncertain, you're helping provide practical support. Support Feel Better Month at Farmers.
4: Time check. To you by Logic Finance Limited, changing lives with logic.
5: Morning, I'm Glenn Stewart with the latest at 10. MPs have been demanding answers from FENZ leaders over spending. The organisation spent $90,000 on external help to look into the state of their vehicle fleet. National's Melissa Lee says it's the CEO's job to know that.
6: It's all operational questions, and the fact that you had to hire outside help to actually find answers for yourself tells me that you really need to think about how your organisation is actually operating.
5: Trade Me expects rents to stay flat for the next few weeks. Their latest data shows the weekly median held steady in June despite strong demand. Spokesperson Casey Wilde says it's unlikely to change soon this season.
7: However, as the year-on-year demand is so strong and the weather warms up, we'll likely see a big influx of both new listings and an increase in renters.
5: Police in Northland have renewed calls for sightings or information on missing man Saxon Steedman. The 22-year-old was last seen in Dargaville at the end of June. He was believed to be wearing black pants, a black sweatshirt and red shoes. And overseas, a bus driver in the UK has made a shocking discovery after finding an abandoned monkey on board. The female marmoset named Oyster, after the London travel card, was inside a covered bird cage and was dehydrated. It's been moved to a sanctuary and officials are now combing CCTV footage. In motorsport with Magan Turbo's 80,000k tyre warranty, Scott McLaughlin has narrowly missed out on the IndyCar podium in Nashville. The Kiwi driver finished fourth today. Sir Scott Dixon crashed into the back of another car and there was engine trouble for Marcus Armstrong. And in cricket, Black Caps bowling all-rounder Nathan Smith has been named the ICC's Player of the Month for June. He took 16 wickets in the recent Test Series win in England.
4: Sports News. Brought to you by Sona Sansar, Papatoy and Mount Roskill. Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
8: The highs of 14, overnight temperature of 5. आज का forecast बताया जा रहा है. आसमान पे बादल हैं. शायद बारिश इधर उधर पड़ सकती है. Southerlies के साथ साथ इस समय अब 10 degrees temperature महसूस कर पा रहे हैं. 5:28 पर sunset बताया जा रहा है.
4: Non-stop Bollywood.
9: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
4: हम playing Bollywood's biggest hits. My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
10: Ladies and gentlemen, dil thaam ke baithiye, kyunki aa rahi hai
11: My Time with Kashika.
8: Sahi disha, sahi samay ka gyan na ho, तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है कि नहीं. और ऐसे में मैं चाहती हूँ कि आपकी स्माइल के साथ साथ ये सूरज स्माइल करने लग जाए. भई हमें ये ठंड आज 5 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है, तो वी नीड सम वार्म्थ, वी नीड दैट स्माइल ऑफ योर्स जिसके ज़रिए आप ये कंटेजियस स्माइल स्प्रेड करते हैं और फिर वो यू नो आपके हार्मोन्स जो होते हैं हैप्पी हार्मोन्स वो भी मुस्कुराने लगते हैं और दूसरे भी आपको जब देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं, तो एक वार्म्थ क्रिएट हो जाती है. तो लेट्स जस्ट क्रिएट द वार्म्थ. आ गई हूँ मैं आपके रिमाइंडर क्लॉक स्टूडियोज में आपका साथ निभाने के लिए 12 बजे तक कशिश फूड्स के सौजन्य से। भाई ये मुमकिन हो जाता है 10 से 12 मंडे टू फ्राइडे। और वैसे आज अगर आपका बर्थडे एनिवर्सरी है तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और हम हैप्पी बर्थडे कहना चाहते हैं टू नन अदर दैन आ गॉर्जियस पूजा कुमार, जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। ब्रेकफास्ट शो की होस्ट भी हैं और बहुत ही दमदार आवाज़ है इनकी और बहुत ही क्या कह सकते हैं लाइवली पर्सन है। जब ये जहाँ पे भी होती हैं बहुत ज़्यादा फुल ऑफ लाइफ एंड एडवेंचर इनकी आवाज़ के साथ साथ वो हमें करवाने लग जाती हैं। तो भाई अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा फ्रॉम ऑल द लिसनर्स ऑफ माई टाइम एज वेल। तो चलिए इस ट्रिप पर जहाँ पर मंडे टू फ्राइडे मैं आपके साथ बातचीत करती हूँ, लेकिन आज जिस बारे में मैं बात करती हूँ वो है हम लोग घर बदलते हैं, है ना। और किस तरह से हम जब घर बदलते हैं कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। बहुत से न्यूजीलैंड में ऐसे लोग हैं जो घर बदलते रहते हैं। ओके, आपको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? अरे मैं वेलकम ऑन माई टाइम।

0: एक्सपर्ट्स अड्डा।
1: तो आज एक्सपर्ट अड्डा में मैं आपके साथ ये बात करना चाहती हूँ, अगर हम नए घर को अगर खरीदते हैं या लेते हैं या किराए पे जाते हैं, इट्स नॉट जस्ट अ चेंज ऑफ एड्रेस। अगर ये में देखा जाए तो एक सुबह आप जब उठते हैं और आप कई सारी मेमोरीज अपनी पीछे छोड़ के जाते हैं, लेकिन कुछ नई कहानियाँ बनाने के लिए तो अपने घर में आप घुसने लगते हैं, आप लाइट ऑन करते हैं, कोई प्रेयर बोलते हैं एंड दैट लिटिल साइलेंट मोमेंट जो आप लोग गुजारते हैं, कुछ एक रिचुअल आप लोग ज़रूर करते ही होंगे जब घर में घुसते होंगे। लेकिन चलो ये सब चीज़ें एक तरफ छोड़ते हैं, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम प्रैक्टिकल अगर कुछ बातें करें तो उसमें जैसे ही आपका फर्नीचर आने लगता उसके पहले आपको सबसे पहले आपकी जो वॉल्स होती हैं घर की, जो नए घर की, वो उनको अलाउ कीजिए ब्रीद करने के लिए, घर को अलाउ कीजिए ब्रीद करने के लिए। सारी विंडोज डोर्स ये सब खोल दीजिए, घर में फ्रेश एयर सनलाइट आने दीजिए थ्रू द रूम्स थ्रू द विंडोज। कोई स्टैगनेंट एनर्जी अगर वहाँ पर होगी ना तो वो निकल जाती है। एक बड़ा सिम्बॉलिक तरीका है टू वेलकम अ फ्रेश स्टार्ट, और ये आपको एक रिमाइंडर देता है कि भाई एक जगह आप आ रहे हैं जहाँ आपको एक नई सांसें लेनी है, नई उमंगें जगानी है। एक दिया, एक कैंडल या अगरबत्ती या जो भी कुछ आपको लगता है आप करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कीजिए एक होप, एक क्लैरिटी और एक प्रोटेक्शन के लिए। ये जो एक लॉ होती है दिए की होती है या जो भी आप अगरबत्ती वगैरह कुछ भी जला रहे, टेक अ मोमेंट और जो वॉल्स हैं उनके आसपास से उसे गुजारिए। और ये छोटा सा एक इंटेंशन जो आपका है, दरअसल क्या होता है कि आपको एक लगता है कि आप घर के अंदर अपनी तरफ से एक पॉजिटिव एनर्जी ऐड कर रहे हैं। कई फैमिलीज मुझे पता है जो अपने घर में आने से पहले पानी से घर का एक कटका या मॉप या पोछा लगाते हैं, मॉपिंग करते हैं, और जब उसमें आप ये पोछा लगा रहे होते हैं या मॉपिंग कर रहे होते हैं तो रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट उसमें ऐड करते हैं। इसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि घर की एनर्जीज चेंज हो जाती हैं, बट ये एक इमोशनल मीनिंग रखता है। कहते हैं कि जो नज़र वगैरह होती है उससे हटाने के लिए नमक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, इसके साथ साथ एक एम्प्टी हाउस जो होता है, इट हैज़ इट्स ओन काइंड ऑफ चुप्पी या साइलेंस जो भी कह सकें। इससे पहले कि वहाँ शोर शराबा हो, कॉन्वर्सेशन, लाफ्टर, लोग आए, कुछ भी हो, कई लोग क्या करते हैं, कई लोग यू नो डिवोशनल म्यूज़िक ऐड करने लग जाते हैं, आपका टेक्स्ट आपने बताया, प्रेयर्स करने लगते हैं, आप कुछ इंस्ट्रूमेंटल कामिंग मेलोडीज़ आप घर में बजाने लग जाते हैं। ये साउंड जो है एक अनफेमिलियर प्लेस जो है, जहाँ आप नई जगह जा रहे हैं वहाँ पर एक फेमिलियर जगह बनाने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जो चार दीवारें हैं घर की, दरअसल उनको एक घर बनाना है आपने, और वो कैसे बनाएंगे, अपनी चीज़ें ऐड करके। और बाय द वे जब आप फर्नीचर के लिए, डेकोर के लिए बात करते हैं और इन्हें फिक्स करने की बात करते हैं तो स्लोली आप हर कमरे में से गुजरते हैं, कोई ना कोई आप अपनी प्रेयर या कुछ अपना फेथ, जो भी फेथ आप फॉलो करते हैं, वो आप डेफिनेटली वहाँ पूरे घर में चलते चलते आप कर सकते हैं। शो योर ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स एवरीथिंग अबाउट लाइफ, अबाउट द न्यू हाउस जो आपको एक एज अ ब्लेसिंग मिला है। ये जो एक चीज़ है अपनी लाइफ में जो आप क्रिएट कर रहे हैं एक नए घर में घुसने के बाद, वहाँ ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली मिस हो जाता है। सो ट्राई एंड फील थैंकफुल एंड ग्रेट, एंड परहैप्स दिस कुड बी द वे यू कैन स्टार्ट लिविंग इन अ न्यू होम। तो आपके पास भी कोई टिप है, कोई बात अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप 5599 पे शेयर कर सकते हैं। कमिंग अप नेक्स्ट इज ऑफिस शाउट आउट। तो कहाँ से सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, किसके जरिए सुन रहे हैं, रोवा के जरिए, 104.2 FM के जरिए, तो जरूर मुझे बताएं।
0: My time with Kashika.
2: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज़ में, आप ही तो नहीं।
3: वो दिन जब मोहब्बत खत्म होती थी।

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: रिवाइंड सिर्फ रोवा पर।
1: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए, वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद। ब्रिंग होम एवरीवन्स फेवरेट शान फूड्स रेसिपी मिक्सेस, बॉम्बे बिरयानी हो या बटर चिकन, कोरमा या चना मसाला रेसिपीज, चाहे वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, शान रेसिपी मिक्सेस हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती है। तो इंतजार किस बात का, आज ही अपने नजदीकी सुपर मार्केट से शान रेसिपी मिक्सेस खरीदिए। शान फूड्स, असली स्वाद हर घर के लिए।
2: Air New Zealand's Discover the World sale is on now, with flights to Aussie, the islands, Asia, USA and Canada. Sale ends midnight 24 July 2026. Travel periods and conditions apply. Book now at Air New Zealand or your preferred travel agent.
3: Right now, many of NZ Blood's regular donors can't donate due to sickness, school holidays and the short week. So please, come off the bench and give blood and help save up to 3 lives. Book now at nzblood.co.nz.
4: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
5: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
4: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
5: Available at selected branches. T's and C's apply.
6: अरे बबीता, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी गुरुज नंबर यार.
7: क्यों, क्या हुआ?
6: मुझे अर्जेंट काम से फीजी जाना था, $20,000 चाहिए थे. बैंक गई तो इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे कि बस पूछो ही मत. एक हफ्ता हो गया, नो रेस्पॉन्स. फिर तुमने गुरु का नंबर दिया और बस अगले दिन पैसे मेरे अकाउंट में. गुरु तो हो जा शुरू वाला काम है.
5: गुरु कैंडोला ऑफ लॉजिक फाइनेंस, अ हाउसहोल्ड नेम इन फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री. कॉल 0800 LOGIC G, दैट्स 0800-564-424.
8: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
9: Office shout out.
0: So, office shout out में आज मुझे आप तेजल सुन रहे हैं, all the way from West City Auto Group. आपने रेडियो लगा रखा है, and of course we all know that West City Auto Group drive show को भी sponsor करते हैं. तो भाई आप का a very very warm welcome इस ठंडे ठंडे दिन में. और साथ साथ एक warm welcome हम करना चाहेंगे of none other than legendary राहत फतेह अली खान जी. ये एक अपनी unforgettable night लेकर आने वाले हैं इस आने वाले Saturday के दिन. और ये आपके लिए जेके स्टार प्रोडक्शंस, गोट लाइव, ड्रीम्स एंटरटेनमेंट, सिमरन प्रोडक्शंस, शहजादा प्रोडक्शंस लेकर आ रहे हैं. टिकट्स आर गोइंग फास्ट, drytickets.com के जरिए आप फटाफट जाके टिकट्स भी खरीद सकते हैं.
8: टॉप हिट ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय इंडेलिबल होम्स, बिल्ड योर ड्रीम्स.

0: वैसे एक बात बता देती हूँ, जब आप अपने घर को अपना बनाने लग जाते हैं ना, तो मेरे पास एक रिस्पांस आया अभी, एंड उन्होंने कहा आप जाकर ज़रा ये न्यूज़ पढ़िए। तो एक रेंटर्स इन न्यूजीलैंड जो है, जो ऑफकोर्स ऑकलैंड में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं ऐसी, मतलब न्यूजीलैंड में माफ़ कीजिए, बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ है जहाँ पे रेंट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़े हैं, बट टेनेंट्स इन पार्ट्स ऑफ साउथ आइलैंड जो है वो बहुत हाई प्राइस पे कर रहे हैं। ट्रेड मी के अनुसार रेंटल प्राइस इंडेक्स में पता चल रहा है द रेंटल इज 620 इन द मंथ ऑफ जून पर वीक, दिस हैज़ नॉट चेंज फ्रॉम मे एंड जून। इससे क्या सजेस्ट होता है कि जो रेंटल मार्केट है वो ग्रेजुअली वहाँ पर ऐसा ही चलने वाला है। बट अगर मैं ऑकलैंड और वेलिंगटन की बात करती हूँ, इन्होंने मॉडेस्ट रेंट जो एनुअल रेंट है उसमें फॉल देखा है। साउथ आइलैंड के कुछ एरियाज में ग्रोथ देखी है प्राइस की फॉर रेंटल्स। ऑकलैंड का जो मीडियन है दिस हैज़ फॉलन टू 1.5% ऑन ईयर टू 660, जबकि वेलिंगटन में इज़ डाउन बाय 0.8% टू 595। अब ये इस तरह से कॉन्ट्रास्ट, अगर हम ओटागो के बारे में देखें तो इट्स 8% एनुअल इंक्रीज हुई है, और वीकली जो मीडियन है रेट जो रेंट का वो है $650। अब बे ऑफ प्लेंटी जो है जस्ट थोड़ा सा पीछे है ऑकलैंड के, एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रीजन्स टू रेंट, वन कैन से दैट। तो आप कितना रेंट पे कर रहे हैं? वैसे ये रेंट्स जो हैं बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन एक रीजन वाइज अगर हम 2026 वर्सेस 2025 जून को देखें तो ऑकलैंड का प्राइस रेंज वॉज 660 पर वीक, बे ऑफ प्लेंटी का 650, कैंटबरी का 580, गिस्बन का 640, हॉक्स बे का 630, फंगनुई का 550, मालब्रो का 570, नेल्सन एंड टैस्मन 610, नॉर्थलैंड 590, ओटागो 650, साउथलैंड 500, टारानाकी 590, वाइकाटो 595, वेलिंगटन 595। वेस्ट कोट की इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, काफी हाई है।
1: The beat of Bollywood. World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

0: ईट बेटर लिव बेटर, ऑफकोर्स ये बात तो सही है, लेकिन आपको एक बात बता देती हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ मूवी. इस फिल्म का नाम है बंटवारा 1947. ये लगता है वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म भी कही जाने वाली है, जहाँ पे एक ब्रांड न्यू टीज़र जो है ऐड कर दिया गया है, जहाँ एक इंटेंस हाई ऑक्टेन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आप डेफिनेटली देख सकते हैं. इसका पहला गाना आज रिलीज़ होने वाला है, और ये जो टीज़र है बंटवारा 1947 का, इज क्वाइट इंट्रीगिंग. इसका पहला गाना एकदम रिलीज़ होने पर है, और ऐसे में कहा जाता है कि इसमें गाने में काफ़ी जज्बात हैं. ओके, अब इस पर्टिकुलर मूवी में शबाना आज़मी, सनी देओल, प्रीति जिंटा, करण देओल, अली फाजल, अभिमन्यु सिंह जो है नज़र आने वाले हैं, राजकुमार संतोषी और सनी देओल की रियूनियन 30 साल के बाद हो रही है, और आमिर खान प्रोडक्शंस के तले ये बिल्कुल कमाल की मूवी जो है लगता है आने वाली है. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस वन, एंड आई एम श्योर आप भी डेफिनेटली इसको देख रहे होंगे. ओके, कोई ऐसी बात अगर आप चाहते हैं, कोई ड्रीम है जो आपको लगता है हमें बताना है आपने, तो डेफिनेटली आप हमें बता सकते हैं 5599 पे, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0800 हम पर. ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
1: 80s के रेट्रो गाने.

0: disco ho ya rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. When City Rail Link arrives soon, it's going to give us all more time. From the new Te Waihorotu station, you'll be able to go from a busy day at work in the city to the peaceful zen of home in Panmure in just 20 minutes. Auckland Transport and City Rail Link. More connections that'll take you from the city to your place.
2: किसी प्रियजन को खोना परिवार या मित्र के लिए कठिन समय हो सकता है। जीवन में मृत्यु को छोड़कर सभी चीजें अनिश्चित है। हम सभी को मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना पड़ता है और गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार सेवा के माध्यम से प्रियजन के जीवन की अंतिम यात्रा भी करना महत्वपूर्ण है। We are Auckland's one-stop funeral service provider where responsible options and prices are offered. Anne's Funeral Home and On-Site Cremations. 11 Boulderwood Place, Beery. Call 24/7 on 0927-88600.
3: क्या बात है उस खाने में जो पूरे घर को डाइनिंग टेबल पर ले आए वो खुशबू और वो असली मसालों का स्वाद Bring home everyone's favorite Shan Foods recipe mixes Bombay biryani हो या butter chicken korma या chana masala recipes चाहे vegetarian हो या non-vegetarian Shan recipe mixes हर डिश को बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं तो इंतजार किस बात का आज ही अपने नजदीकी सुपरमार्केट से Shan recipe mixes खरीदिए Shan Foods असली स्वाद हर घर के लिए
4: होम लोन के साथ थोड़ा कैश भी पाना चाहते हैं नया होम लोन लेना हो या मौजूदा लोन का रिव्यू करवाना हो स्क्विरल आपको दिलाएगा एक ऐसी जबरदस्त डील कि आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले जानिए पावर ऑफ द स्क्विरल इफेक्ट squirrel.co.nz
5: कॉफी द यूजुअल
6: हाउ अबाउट द अनयूजुअल
7: कांट वेट फॉर कॉफी देन डोंट Turn into Wild Bean Cafe at BP and try our new barista-made hojicha latte. Something a bit different at BP.
8: My Time with Kashika. Brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Dream Diary.
9: ड्रीम डायरी की तरफ मैं पहुंच चुकी हूं और भाई अब ये जो खतरनाक सपना देखा है आपने खतरनाक इसीलिए क्योंकि आपने एक बुचर नाइफ देखा है सपने में ओ माई गॉड टू ड्रीम ऑफ अ बुचर नाइफ ये रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्फ्लिक्ट जो काफ़ी इंसेंसिटिव हो सकता है और कभी कभी ऐसा होता है समथिंग इज़ वेरी नॉट वेरी केयरिंग समथिंग अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ जहाँ पे आप कोई डिसीशन जो है बनाना चाहते हैं वो पर्सनल लाइफ के साथ क्लैश कर रहा है कभी ऐसा हो सकता है एंड कभी कभी कुछ हार्श मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं टू अचीव अ गोल एंड टू मेंटेन एंड कंट्रोल थिंग्स ये एबिलिटी जो होती है टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस या लाइक अ नो नॉनसेंस अप्रोच हो सकता है ये आपका जो एक बुचर नाइफ है ये आप कह सकते हैं कि एक एक्सट्रीम में आप जाकर बिना किसी को हार्म पहुँचाए आप ये करना चाहते हैं लेकिन मन में आपके ये किसे काट डालूँ इसे बांट डालूँ ऐसा होता है लेकिन ये डेफिनेटली कह सकते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि सिचुएशन इन योर लाइफ टू डील जो है वो आप इमोशनल इम्पैक्ट के साथ ऐसा ना हो कि कुछ हेस्टी डिसीशन ले लें ठीक है और अगर आप इसके बारे में ड्रीम कर रहे हैं प्रॉबेबली देयर इज़ अ फियर दैट आपको कोई हर्ट कर सकता है और आप डिफेंसिव हो रहे हैं तो समथिंग लाइक दैट समथिंग ऑन दोज ग्राउंड्स कैन बी ऑल्सो पॉसिबल ओके तो ये बुचर नाइफ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आई डोंट नो व्हाट्स योर प्रोफेशन लाइक क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो मेडिकल फील्ड में होते हैं या वो डॉक्टर्स या सर्जन होते हैं उन्हें यूजली काटना पीटना नज़र आने लग जाता है बट आई एम नॉट टू श्योर कि व्हाट इज़ योर प्रोफेशन बट जो भी आपका प्रोफेशन है मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगी दैट मेक श्योर आप कुछ जो एलिमिनेट करना चाहते हैं जो आपको लगता है बहुत दिनों से आपने शायद नहीं किया आप एक ड्रास्टिक स्टेप उठाइए उस चीज़ को काट डालिए हटा डालिए अपनी ज़िंदगी से ऑलराइट

वैसे एक बात बताऊं, जिंदगी भी पटपट पटपट चलती रहती है, लेकिन ऐसे में हम पहुंच रहे हैं थ्रोबैक की तरफ। इससे पहले कि मैं थ्रोबैक की तरफ आपको लेके जाऊं, वैसे बर्किनहेड स्काउट्स हॉल में 22nd and 23rd of August के दिन 4th न्यूजीलैंड नेशनल कैरम टूर्नामेंट होने वाली है बाय द न्यूजीलैंड कैरम एसोसिएशन। सो आप 021-090-85067 पर संपर्क कर सकते हैं एंड NZCA के प्रेसिडेंट पंकज से भी बातें कर सकते हैं। फीजी गिरमिट फाउंडेशन आपके लिए एंड फ्यूनरल होम एंड ऑनसाइट क्रीमेशंस के साथ मिलकर हेल्थ एंड वेलबींग का एक्सपो लेकर आ रहे हैं। इट्स अ फ्री इवेंट जो A1 इवेंट सेंटर में होने वाला है एंड दिस इज हैपनिंग ऑन दिस संडे 10 से 3 बजे के बीच में। बहुत प्रैक्टिकल लर्निंग, इन्फो ऑन कैंसर स्क्रीनिंग, फ्री स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी, ECG, आई टेस्ट, मेंटल वेलबींग, यू नो, तरह तरह की चीज़ें जो है यहाँ पे। एक फन एंड फ्री फैमिली इवेंट भी हो जाएगा जहाँ हैम्पर्स, गिव अवेज, लाइट रिफ्रेशमेंट्स, फेस पेंटिंग, लाइव परफॉर्मेंसेस, सॉसेज सिजल, योगा, बहुत कुछ होने वाला है। आपको तो पहुँचना ही पहुँचना है। श्री राम मंदिर में 1st and 2nd of August के दिन जो अखंड रामायण पाठ है वो भी होने वाला है ठेंडरसन, और रामलीला डिवाइन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस 8 अगस्त के दिन ये भी होने वाला है। इसकी जानकारी के लिए आप मास्टर अशोक से संपर्क करें 021-7954559 पर। Throwback. इस पर्टिकुलर सॉन्ग को मैं बहुत पसंद करती हूँ। एक तो मुझे हरिहरन की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर्टिकुलर सॉन्ग के मैं बहुत ज़्यादा लाइक भी करती हूँ। कभी अभी ध्यान से अगर आप सुने इस गाने को तो यू विल रियलाइज द डेप्थ ऑफ द सॉन्ग एंड कितनी खूबसूरती के साथ इसे गाया गया है, इसके वर्ड्स।

0: Weather update brought to you by Go Bananas Childcare, where learning is fun. Call 0800 462626.
1: The highs of 14 overnight, temperature of 5. आज का forecast बताया जा रहा है. आसमान पे बादल थोड़े बहुत आते चले जा रहे हैं. कुछ isolated showers expected हैं जो clear होती चली जाएंगी. वैसे it feels like 11 degrees, 528 पे sunset बताया गया है.
0: My time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Mid morning maza.
3: Ladies and gentlemen, dil thaam ke
2: baithiye, kyunki aa rahi hai. My time with Kashika.
1: नमस्कार एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. हाउ आर यू? 21 जुलाई का दिन है, आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, तो वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. वैसे आप अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं विद नन अदर देन पूजा फ्रॉम द ब्रेकफास्ट शो, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा. एंड कल ये तो आ ही जाएंगी ब्रेकफास्ट शो में आपका साथ निभाने के लिए. प्रोग्राम की शुरुआत जब मैंने की थी तब मैंने एक ही बात कही थी कि सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है कि नहीं. जैसे कि ग्लास पानी का जो होता है, आप आधा भरा हुआ कह सकते हैं या आधा खाली, ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है. तो यही दिशा अगर आपकी और सही समय पर आप अपना ज्ञान आपको ना हो, उसे किस तरह से फ्रेज करना है, उस तरह से किस तरह से उसे प्रेजेंट करना है, तब वो बात का एक अलग ही रास्ता निकल आता है या अलग ही उसका एक मीनिंग निकलने लग जाता है. बट चलो ये तो बहुत ज़्यादा ये बातें हैं, लेकिन सिक्स वर्ड स्टोरी अरे भूलना नहीं प्लीज़, ठीक है. एंड रिसाइकल में रीयूज़ देखते हैं कि क्या आज आप रीयूज़ करना चाहते हैं, क्या रिसाइकल करना चाहते हैं. थोड़ी इधर उधर की खबरें भी हैं जो आपके साथ मुझे शेयर करनी है. एंड साथ आप हम करते जा रहे हैं, कहाँ से हम कर रहे हैं ये भी आप बता सकते हैं. एक पर्टिकुलर चीज़ जो है जो ट्रेंड कर रही है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो इनफैक्ट हमारे लिए काफी किफायती भी रह सकती है. पहले गाना सुनते हैं.
0: बचाओ क्या

0: ईट बेटर लिव बेटर, बट एक बात बताऊँ, मोस्ट ऑफ अस हैव रीच देयर, जहाँ बात करते हैं हमारे लैपटॉप की 12% बैटरी रह जाती है और पूरा दिन बचा होता है और कोई वॉल सॉकेट भी नज़र नहीं आता है. तो ऐसे में एक हम्बल पावर बैंक जो है वो एसेंशियल बन जाता है फॉर आर डिवाइसेस टू गेट चार्ज्ड. बट मार्केट इतना क्राउडेड है, इतना एक्सपेंसिव है, जहाँ पे आप कह ही नहीं सकते कि ये क्या, कौन सा ब्रांड लेना चाहिए, कौन सा बॉक्स खरीदना चाहिए. कोई कंपनी एक है, उसके पास इंस्टेंट चार्जिंग फिलॉसफी है. अब ये ब्रांड जो है लगभग 150 मिलियन पावर बैंक्स जो है ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करती है. आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इट इज़, विच ब्रांड इट इज़, बट अगर आपको पता हो तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इट्स क्वाइट एन अवॉर्डेड चार्ज काइंड जो आप चार्ज कर सकते हैं, एंड ये आपके लिए बहुत पावर पैक्ड रहती है. तो ये एक 210 किलोवाट्स के लगभग का पोर्ट, तीन पोर्ट्स है जिसमें दो USB-C होते हैं और एक USB-A होता है, और ये आपको इतने जल्दी चार्ज करता है, फुल स्पीड पे चार्ज करता है. आई वुड डेफिनेटली वॉन्ट टू हेयर अबाउट इट मोर. ये बैटरी जो है लगभग काफ़ी टाइम तक रहती है, और टिपिकली जैसे हमारे स्मार्टफोन जो है एक नहीं चार बार अगर हम यूज़ कर लें उतनी जितनी बैटरी जो होती है वो रहती है. इट इज़ इम्प्रेसिव हाउ क्विकली ये बैंक अब रिचार्ज कर देता है आपके खुद के लैपटॉप्स को. कहाँ आपकी बैटरी फ्लैट होने लगती है, तो ये चार्जिंग का एक प्रोटोकॉल जो होता है, मुझे टेक्निकलिटीज़ तो इसके नहीं पता, बट कहा यह जाता है कि ये अवेलेबल हैं एंड ये कुछ इंटरनेशनल डिज़ाइंस रखते हैं. बट इसका नाम क्या है, ओके, आई एम ट्राइंग टू सर्फ अराउंड टू फाइंड आउट एग्जैक्टली. लेकिन कहा जाता है कि फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, डेली कम्यूटर्स, रिमोट वर्कर्स जो कैफेज़ के बीच में या फिर को वर्किंग स्पेसेस में काम करते हैं, उनके लिए एक रिलायबल फास्ट पावर फॉर मल्टीपल डिवाइसेस कह सकते हैं, एक जगह एक ये चार्जिंग ब्रिक होती होगी शायद, आई डोंट नॉट नो कि पावर स्ट्रिप क्या है. ये मल्टीपोर्ट जो है प्रैक्टिकल लग रहा है मुझे, एंड आपके लैपटॉप, आपकी टैबलेट, आपके फ़ोन को एक सिंगल बैंक से ही चार्ज कर देता है. इज़न्ट द टेक्नोलॉजी गोइंग सो फास्ट? आई मीन, मैं तीन चार चीज़ें एक साथ कैरी करती थी, बट अगर फाइनल वर्डिक्ट मेरी तरफ से तो ये होगा कि द मैन्युफैक्चरर नोज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, और ये चार्जिंग की जो स्पीड्स है बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो सकती हैं एनीथिंग विच इज़ इन द मार्केट, क्योंकि ये मल्टी डिवाइस कैपेबिलिटी रखता है एंड यूज़फुल भी रहता है. लेट्स सी, अगर कोई भी ऐसा जो अभी सुन रहा है बता सकता है कौन सी ये चीज़ है, ये कौन सी चीज़ है जो ये मल्टी चार्जिंग एक साथ कर सकती है, हाईली रिकमेंडेड है, क्या है, कौन है, बताओ बताओ.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन. प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी. हम फिजी भजन्स, दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म. डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन्स.
2: What if your next holiday wasn't just a holiday,
3: but the adventure everyone talks about?
2: Imagine chasing waterfalls,
3: wandering lush rice terraces,
2: catching unforgettable sunsets,
3: and relaxing at iconic beach clubs.
2: Then racing through the buzzing streets in a tuk-tuk,
3: discovering incredible temples,
2: tasting world-famous street food.
3: Travel with Sandy and Rusby as they explore the best of Bali and Bangkok with an amazing group of listeners. Text DRIVE to 5599 for the all-inclusive tour price.
4: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे.
5: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
4: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है. शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो.
6: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो. सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड.
7: रेडियो पे गानों की फरमाइश की जा सकती है, अपनों के नाम संदेश भेजे जा सकते हैं, मगर रेडियो पे अपने ट्रेडिशन की खुशबू भेजनी हो तो नहीं भेज सकते ना. उसके लिए अपनों को खाने पे बुलाए, रिश्तों को और करीब लाए। कशिश प्रीमियम बासमती राइस। Eat better, live better. For more information, log in to www.kashishfood.co.nz. Available at all leading stores.
3: Looking for more ways to save on a new car? Choose the deal that suits you best at West City Omura Jeku. Drive away in a new Omura C5, Omura 9 or selected Jeku J7 models and choose between $2,000 cashback or 3.9% per annum finance for 36 months with a 10% deposit. It's your choice, your way, but only for a limited time. Visit West City Omura Jeku in Henderson today. Ask for more ways to save. Terms, conditions and lending criteria apply.
8: सुनो, बिल्स बढ़ते जा रहे हैं और महंगाई भी।
9: हाँ, मॉर्गेज भरना भी मुश्किल हो रहा है। सोच रहा हूँ घर बेच के छोटा कर ले लें।
8: घर बेचने से पहले NZPMI की पॉल से बात कीजिए। मेरे दोस्त ने भी की थी, अपनी जमीन पर नया घर और दो और घर बनवाए, अब रेंट भी आ रहा है।
9: पर डेवलपमेंट के पैसे
8: आपको नहीं लगाने, NZPMI सब संभाल लेगा। NZPMI, योर लोकल डेवलपमेंट एक्सपर्ट। फ्री साइट असेसमेंट के लिए विजिट nzpmi.co.nz या कॉल 0800-4NZPMI.
2: My Time with Kashika, brought to you by Kashish Foods. Eat better, live better. Six word story.
0: आज की six word story काफी अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी. In fact, believe your eyes, trust your heart. Believe your eyes, trust your heart. I think it goes beautifully well. अपने लाइफ में एक अगर हमें एडवाइस चाहिए तो बिलीव योर आइज, ट्रस्ट योर हार्ट. वी कैन ऑलवेज से दैट. चलिए, ये तो यहाँ तक की बात आ चली, लेकिन आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बिलीव इन गरबा. ओके, हियर कम्स राज गढ़वी. अब ये राज गढ़वी जो है 1 अगस्त के दिन महात्मा गांधी सेंटर में आने वाले हैं. स्वप्निल शाह से बातें करें. टिकट्स लेनी है तो 0224394736 के जरिए. एक डबल पास जीतने के लिए आपको क्या करना है, RG यानी कि आप लिख सकते हैं राज गढ़वी का नाम का शॉर्ट फॉर्म RG 5599 पे आपका नाम ड्रॉ में चला जाएगा टू विन अ डबल पास. जल्दी कीजिए, आप टेक्स्ट कर सकते हैं. और अगर टिकट्स खरीदनी है तो events.tickets.co.nz के जरिए आप ये टिकट भी खरीद सकते हैं. And your time starts now.
2: Top hit of the hour, brought to you by Indelible Homes. Build your dreams.

तो एक बात तो है दैट द बिगेस्ट गेन मार्केट जो है अभी फर्स्ट क्वार्टर में जो था, जहाँ पे 50 ml की जो बॉटल्स हैं वो एक सडनली एक स्टैंडर्ड शॉट बनकर रेडी हो चुका है एंड इट इज़ सेलिंग वेरी वेरी हाई. अब ये हाई एंड ब्रांड्स जो हैं उनके इंटरेस्ट में काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग हैज़ एक्चुअली इंक्रीज्ड. और लोग क्या करते हैं कि यू नो छोटी बॉटल्स लेते हैं, उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन फिर दे गो हैड टू बाय अनदर स्मॉल वन. तो ये जो 100 ml का फॉर्मेट था उसको हटा कर उससे छोटा कर दिया गया है. और कभी कभी जो बड़ी बड़ी बॉटल्स आती हैं, चाहे वो आप पानी की भी ले लें या छोटी पानी की ले लें या फिर आप सॉफ्ट ड्रिंक की ले लें, कुछ जो मिनी बॉटल्स हैं वो 50 ml के वर्जन्स जो हैं वो काफ़ी हद तक पहले US में भी बहुत चल रहे थे, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ बनता चला जा रहा है. और ये जो मिनी बॉटल्स हैं एक अप्रोच बन गई हैं फॉर बायर्स फॉर ओकेजनल गिफ्टिंग एज़ वेल, या फिर आप कोई बेवरेज है या कोई अल्कोहल है. कंज्यूमर्स आर ड्रॉन टू दिस कन्वीनियंस एंड दे आर फाइंडिंग इट परफेक्टली ग्रेट. और न्यूजीलैंड में भी इसको काफ़ी हद तक एक्सेप्ट किया जा रहा है.

0: time with Kashika.
1: Wow.
2: How?
1: I'm good.
3: Thank you so much and thanks for your compliment that आपको मेरी playlist पसंद आ रही है. A big thank you. वैसे अगर आपको भी कुछ गाने ऐसे सुनने हैं जो लगता है शायद यहाँ नहीं सुन पा रहे हमारे साथ, तो definitely आप 60s-70s के fan हैं तो रोवा पे चले जाएं और वहाँ पर number one हमारा music station जो है रोवा का, हम rewind आप definitely golden era के 60s-70s के tracks सुन सकते हैं. 80s के tracks के लिए jukebox जो है हम का आप वो definitely सुन सकते हैं. Fiji भजन जो है ये आप खूबसूरत ब्यूटीफुल आर्टिस्ट के ज़रिए ये भजन इन्जॉय कर सकते हैं. पंजाबी गाने सुनने हैं तो चढ़दी कला में बैक टू बैक पंजाबी हिट्स आप रोवा के ज़रिए सुन सकते हैं. फीजी कीर्तन संग्रह में नए पूल में आर्टिस्ट्स ने और आर्टिस्ट ऐड किए गए हैं, तो आप डेफिनेटली ये वर्ल्ड का फर्स्ट 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म कहीं पे भी सुन सकते हैं, कहीं ले जा सकते हैं. और राहत फतेह अली खान ये तो सैटरडे के दिन आ रहे हैं, अगर आप इनके फ़ैन हैं तो आप डेफिनेटली इनके कवाली इनके सूफी गाने डेफिनेटली सुन सकते हैं. लेकिन जब बात कर रही हूँ अबाउट आप पॉडकास्ट, हमारे पॉडकास्ट तो हमेशा इतने पसंद आते हैं लोगों को कि रेडियो अवार्ड्स तक ये जीत चुके हैं. तो ब्रेकिंग बैरियर शनील लाल जो हैं, इनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शनील लाल एक ऐसे शख्स हैं जो नॉन बाइनरी हैं और साथ साथ ये इनको हम वाका साले वाले लेवा, इफ़ आई हैव नॉट प्रोनाउंस्ड इट राइट माई अपोलोजीज, इट्स एट वाका साले वाले वा एंड हिजरा जो हम हिंदी में कहते हैं. तो ये एक न्यूजीलैंड के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और इनका ये एक कमाल का एक इंसाइट्स जो हैं वो सैंडी और उसबे ने उनके साथ बात की, उनके कॉन्वर्सेशन में जो हाईलाइट थी कल्चरल एंड कम्युनिटी, हाउ अ कॉमन मैन कैन हेल्प, इतनी सारी चीज़ें इन्होंने कवर की हैं, यू विल लव इट. ब्रेकफास्ट शो येस, ये कैचअप आप विजय पूजा के साथ कल सुबह 6 बजे कर सकते हैं जब ये वापस छुट्टियों से लौट कर आएंगे. एंड नॉट टू फॉरगेट सफायर जो है ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा ट्रैक, केतन जो थोड़ी देर में लंच बॉक्स लेकर आ रहे हैं इनका आप सुन सकते हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग, आई लव हिज सॉन्ग्स.
2: Keep calm because Punjabi swag is on.

0: You know, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वार्डरोब स्वॉप्स ये बहुत बहुत आजकल चल चुके हैं. और लास्ट ईयर मुझे याद है एक वार्डरोब स्वॉप हुआ था जहाँ पे आप कुछ अपने फ्रेंड्स को गैदर कर लेते हैं और अपने क्लोथ्स को ट्रेड कर देते हैं जो आप नहीं पहनना चाहते, एंड ट्राई एंड गेट सम न्यू आइटम्स इंस्टेड, जहाँ पे भी पैसे आपको खर्चने नहीं पड़ते और ये वेस्ट भी नहीं किए जाते. तो यू कैन डेफिनेटली गिव दैट अ शॉट, गिव दैट अ ट्राई, एंड आई एम श्योर बहुत लोग इस चीज़ को ट्राई भी करते हैं. कुछ आइटम्स ऐसे भी होते हैं जो आप चैरिटी में भी अच्छी कंडीशंस में हैं वो आप दे सकते हैं, और ये सेकेंड हैंड शॉप्स में भी दे सकते हैं. कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है ना कि सेल्वेशन आर्मी है या ऑकलैंड सिटी मिशन की जो शॉप्स होती हैं, तो ये शॉप्स में जो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पाते उन चीज़ों को डेफिनेटली ख़रीदने की कोशिश करते हैं एट रीज़नेबल प्राइसेस. आई एम श्योर वी कैन डू अ लिटल बिट मोर, जहाँ हम एक जेस्चर जब ये करेंगे तो इंटरेस्टिंग है कि किसी के मुंह पे हम एक स्माइल ज़रूर लेकर आए, है ना? ट्राई करेंगे ना. मुझे लगता है इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, टेक्सटाइल जो हम कभी कभी रीयूज़ करते हैं या रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं, वो रिटेल स्टोर्स में भी उनको श्रेड करके एक नए यान में इंडस्ट्रियल इंसुलेशन के बाद फिर इस्तेमाल भी किया जाता है. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दैट एज वेल.
1: You buy NZPMI. Unlock your property's true sale value with NZPMI, your local development experts. For a free site assessment, visit nzpmi.co.nz or call 0800 4NZPMI.

0: आजकल चल रहा है बहुत न्यूज में, आप ही तो नहीं।
1: इसके पहले कि मैं स्टूडियो से यहाँ से जाऊँ, तो मैं यहाँ पर एक स्पेशल विश जो है ये मेरे पास आई है जो मैं डेफिनेटली शेयर करना चाहती हूँ। शिवानी अरोड़ा जी फ्रॉम शिवानीज रेस्टोरेंट, आपके लिए बर्थडे ग्रीटिंग्स आई हैं फ्रॉम द टीम ऑफ गोपियो। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, इन्जॉय द रेस्ट ऑफ योर डे एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट डे। भाई पार्टी तो बनती है और ये पार्टी खाने के लिए हम सब तैयार हैं, कहीं पे भी खिला दीजिएगा पार्टी चलेगा। चलिए इसी के साथ साथ कीजिए स्वीकार काशिका का नमस्कार। आज का दिन कहलाता है आपके लिए मंगलवार, और इस मंगलवार के ब्यूटीफुल से डे में पूजा अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही हैं, कल आ जाएंगी आपका साथ निभाने के लिए। विजय के साथ इनके साथ रहिएगा, और ये अगला गाना मैं इन्हीं को डेडिकेट करना चाहती हूँ। तो चलिए हैप्पी बर्थडे टू यू पूजा वंस अगेन फ्रॉम योर माई टाइम लिसनर्स एज वेल। दिस इज काशिका साइनिंग ऑफ फ्रॉम दी हम स्टूडियोज। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अभी के लिए चलती हूँ, कल सुबह 10 बजे आपसे फिर मुलाकात करती हूँ।